कभी कभी खुशी किसी बड़ी वजह से नहीं आती, बस मन में इच्छा हो तो आप खुशी महसूस कर सकते हैं। तो आज अपने मन की सुनिए और एक छोटी सी खुशी चुनिए और उसे पूरे दिल से जी लीजिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वही है जिसे हम मुस्कुराकर जी लेते हैं।

दोस्तों, हमारी पहचान इस बात से नहीं बनती कि हमने जिंदगी में कितना पाया, बल्कि हमारी पहचान इस बात से बनती है कि हमने कितने दिलों को छुआ। इसलिए आज कुछ ऐसा कहिए, कुछ ऐसा करिए जिससे लोग कल भी आपको याद करें और प्यार करें, क्योंकि आवाज थम जाती है लेकिन अच्छे बोल बहुत दूर तक जाते हैं।

दोस्तों जानते हैं, कुछ रिश्ते जिंदगी में यूं ही नहीं आते। उनके पीछे कोई पुराना एहसास, कोई अनकहा रिश्ता और कोई खूबसूरत वजह जरूर होती है। इसलिए जो लोग दिल के करीब है ना, उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि हर मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं होती है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अर्पण कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:10 पर। श्री रामचरित मानस का समय रहेगा 6:45 पर। गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 7:10 पर। म्यूजिकल दिल्लगी कार्यक्रम का समय रहेगा 8:45 और 9:10। दिल का मेल बॉक्स रिक्वेस्ट बेस्ड ये कार्यक्रम होगा 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम मेरा वजूद का समय रहेगा 11:10। तस्वीर कार्यक्रम पेश किया जाएगा 11:25 पर। एक कदम बुजुर्गों की ओर स्पेशल प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन होगा 12:10 पर। कलाकार बेमिसाल, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता शम्मी कपूर पर 1:10 पर। मनभावन कार्यक्रम सुनिएगा 3:10 पर। संगीत.com ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 2:30 पर। फिल्म सॉन्ग सुनिएगा 4:10 पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का सैनिकों के नाम संदेश सुनिएगा 5:10 पर। फिल्म सॉन्ग्स पेश किए जाएंगे 5:30 पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश पेश किया जाएगा 7:00। मधुरिमा कार्यक्रम सुनिएगा 8:10 पर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
1: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत

और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भोर की इस वेला में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

साथियों, कभी कभी हम प्रभु से बहुत कुछ मांगते हैं, सुख मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, अपने लिए खुशियां मांगते हैं, लेकिन भक्ति का सबसे सुंदर पल वो है जब भक्त केवल इतना कह देता है कि ठाकुर

तुम शरणाई आया। तो आइए कुछ पल के लिए अपनी चिंताओं को किनारे रख दें, मन को शांत करें और अपने भीतर से बस एक आवाज उठने दें।

साथियों कहते हैं कि जीवन में बड़ा वही बन पाया है जिसने झुकना सीख लिया। अपने अहंकार में मग्न हम कुछ भी सोचें कुछ भी कहें, सच तो यही है कि जो हवा की गति को नियंत्रित

होती है जो वर्षा के वेग को संचालित करती है, जो हम सब में प्राण वायु का संचार करती है, वो अदृश्य परम शक्ति न केवल सर्वोच्च है बल्कि परम दयालु भी है। इसीलिए भक्ति का भाव हमेशा ये अनुनय करता है कि मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। 6:24 और 42 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

साथियों, कहा गया है कि भक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा से बड़ा कोई धन नहीं। 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। और 6:33 पर गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

साथियों, कहते हैं कि जिनकी सौम्य मुस्कान में बरसाने की रौनक है, जिनकी बांसुरी की तान में यमुना की लहरों की शीतलता है, नजर जहां तक जाए वो कृष्ण गिरधारी ही नजर आए, ऐसी चाह ही सच्ची साधना बन जाती है हर भक्त के लिए। 6:39 और 41 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण।

साथियों, अर्पण में अब समय हो रहा है रामचरितमानस की सुंदर संगीतमय पाठ का। आइए मिलकर एक साथ श्रवण करते हैं इस पाठ को।

वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं, तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें, तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खो, रीछ बाघ भेड़िए सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से ये सुंदर संगीतमय पाठ, और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, क्योंकि कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ चला है। लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे और समाचारों के उस पार 7:10 पर आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नयांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक बनेगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पश्चिमी यूरोप का एक बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं ब्रिटेन में इस असामान्य गर्मी की 5वीं लहर आने की आशंका है, जिसे अब तक की सबसे भीषण गर्मी माना जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में पारा 38 डिग्री सेल्सियस

नई सुबह है, नया दिन है और सबसे खूबसूरत बात आज का दिन अभी हमारा लिखा जाना बाकी है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर स्वागत है आपका आपके फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात में। 7:11 पर गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। तो सबसे पहले एक लंबी सी सांस लेकर अपनी वो 1000 वॉट वाली स्माइल दे दीजिए, क्योंकि हमने सुना है कि दिन की शुरुआत अगर आप स्माइल से करते हैं तो फिर परेशानियां आपसे 4 हाथ की दूरी पर ही रहती हैं जनाब। वेल, और कुछ हो या ना हो, अच्छा बहुत लगता है स्माइलिंग फेस हर किसी को। और अगर कल कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उसे आज की कहानी मत बनने दीजिए। आज एक नई शुरुआत कीजिए और फिर बढ़ते चलिए आगे ही आगे।

जनाब मुकेश की सदाबहार आवाज में ये गाना था 1960 में आई फिल्म हम हिंदुस्तानी से, और उनकी आवाज की ही तरह ये गाना भी सदाबहार है। जब भी सुनो ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर की बात हो रही है, और सिंगिंग, म्यूजिक, लिरिक्स या फिर प्रेजेंटेशन की बात करें, सब कुछ लाजवाब है और मिठास तो ऐसी लगता है कि जैसे कानों में घुल सी गई है। और अपने हिंदुस्तानी होने पर और अपने तिरंगे पर हम सभी को गर्व और अभिमान है। और आप जानते ही हैं कि 9 से 17 अगस्त 2026 के बीच मनाया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान, जिसमें हर भारतवासी पूरे जोश और उल्लास के साथ तिरंगे के प्रति अपना आदर और सम्मान व्यक्त कर रहा है। युवा वर्ग में तो और भी ज्यादा उत्साह है, कहीं तिरंगा बाइक रैलीज आयोजित की जा रही हैं, तो कहीं पेडल फॉर फ्रीडम टैगलाइन के साथ साइकिल यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। और हम जब ये सब बात करते हैं तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि तिरंगा अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है, मैला हो जाता है, फट जाता है या फिर किसी और वजह से खराब हो जाता है, उपयोग के योग्य नहीं रह जाता, तो उसे सम्मान पूर्वक हटाया जाना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगा जमीन पर न गिरा हो, पांवों तले न कुचला जाए या किसी और तरह से उसका निरादर न होने पाए। भारतीय ध्वज संहिता 2002 ये कहता है कि क्षतिग्रस्त तिरंगे को हमें सम्मान पूर्वक वैसे ही विदा करना चाहिए जैसे हम अपने किसी नियर एंड डियर वन को उसकी मृत्यु होने पर विदा करते हैं। और इसके लिए 2 उपायों का प्रावधान किया गया है। पहला उपाय है भू समाधि, यानी किसी साफ और पवित्र स्थान पर गड्ढा खोदकर तिरंगे को ससम्मान फोल्ड कर साफ कपड़े में लपेटकर आप उसे मिट्टी को समर्पित करें। और दूसरा उपाय है अग्नि संस्कार, स्वच्छ और एकांत स्थान पर पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर मौन और गरिमा के साथ तिरंगे को अग्नि को समर्पित करें। साथियों, जिस तिरंगे का ऊंचा लहराना हमारे लिए गौरव की बात है, उसे सम्मान पूर्वक विदा करना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस स्वतंत्रता दिवस हर घर तिरंगा शान और अभिमान से लहराएं, लेकिन सुनिश्चित कर लें कि तिरंगे का, हमारे उस राष्ट्रीय अभिमान का किसी भी सूरत में अपमान ना होने पाए। 7:18 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर यह है आपका अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात।

7:23 पर एक नया दिन बाहें खोल कर हमारा स्वागत कर रहा है और ये इन्विटेशन दे रहा है कि जो कल नहीं कर पाए वो आज करने की कोशिश तो करो, यकीनन सफलता मिलेगी। वैसे भी कहते हैं कि जिंदगी के किसी भी दिन को हमें कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अच्छा दिन है वो हमें यकीनन खुशी देता है, लेकिन जो बुरा दिन है वो अनुभव देकर जाता है। और एक सफल जिंदगी के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। 7:23 हो गए हैं, हमें समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते। आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गोल्ड सुप्रभात 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। और आज आप क्या क्या और सुन पाएंगे ये भी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मौसम का हाल जान लेते हैं, क्योंकि मौसम हमें लगातार सरप्राइज दे रहा है। कल जब कहीं से नहीं लग रहा था कि बारिश आएगी, हालांकि ह्यूमिडिटी हमें परेशान कर रही थी, तो फिर जमकर बरसे बादल यहाँ हमारे आसपास दिल्ली में भी और NCR में भी, और आज भी कुछ ऐसी ही संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। ह्यूमिडिटी आज भी 81% के आसपास रहेगी और हवा की गति रहेगी करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बारिश आज भी कहीं पर हम पर मेहरबान हो सकती है। और आज का जो दिन है ये आदि पूरम के तौर पर

अपनी एक विशेष पहचान रखता है, खास तौर से अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो। इसके बारे में हम जानेंगे 9:10 पर म्यूजिकल दिल्लगी में, और 8:45 पर म्यूजिकल दिल्लगी के पहले सेगमेंट में आपके साथ रहूंगी मैं। हम करेंगे बातें और सुनेंगे गाने, और 9:10 पर म्यूजिकल दिल्लगी के दूसरे सेगमेंट में आपके साथ होंगी रेखा, जो बहुत सी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगी। 10:30 आप सुनेंगे दिल का मेल बॉक्स, 11:10 पर आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मेरा वजूद, और 11:25 का समय रहेगा प्रोग्राम तस्वीर का, जिसमें आज हम आपको मध्य प्रदेश में ओरछा लेकर चलेंगे। शमी कपूर जी के बारे में बात करेंगे, कलाकार बेमिसाल में 1:10 पर, और 2:30 आप सुनेंगे प्रोग्राम संगीत.com, और 5:10 पर सैनिकों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। 6:30 आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा, और 7:00 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। 8:10 पर मधुरिमा, 10:30 हर सिंगार, और 11:40 का समय रहेगा गीत मेरे मन मीत का, और एक और खूबसूरत गाना लता जी और मुकेश साहब की आवाज में, यहाँ आपके लिए मेरी प्लेलिस्ट में शामिल है गोल्ड सुप्रभात में। 7:26 और 26 सेकेंड।

साथियों, इसी गाने के साथ आपसे विदा चाहूंगी प्रोग्राम गोल सुप्रभात से, लेकिन फिर मुलाकात होगी 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली में। स्टे ट्यून्ड, इसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सवेरे।

0: एक एक ही लिया आज।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: जीवन के कुसुमित उपवन में गुंजित मधुमय कणकण होगा, शैशव के कुछ सपने होंगे, मदमाता सा यौवन होगा, यौवन की उच्छृंखलता में पथ भूल ना जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरी वन पापी होंगी, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल ना जाना पथिक कहीं, हाहाकारों से आविष्टित तेरा मेरा जीवन होगा, होंगे विलीन ये मादक स्वर, मानवता का क्रंदन होगा, विस्मित हो उन चित्कारों में पथ भूल ना जाना पथिक कहीं, रणभेरी सुन कह विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जलकण ढुलक रहे होंगे, प्रणय की उलझन में पथ भूल ना जाना पथिक कहीं, वेदी पर बैठा महाकाल जब नरबलि चढ़ा रहा होगा, बलिदानी अपने ही कर सेना निज मस्तक बढ़ा रहा होगा, तब उस बलिदान प्रतिष्ठा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में, माँ मांग रही होगी आहुति जब स्वतंत्रता की ज्वाला में, पल भर भी पड़ असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। वीर रस के सौंदर्य रस से भरपूर इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जनमानस के भीतर कर्तव्य बोध का दीप प्रज्वलित करने के लिए कहते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। कुछ इसी तरह के प्रयास थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के भी, जिनके बल पर आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। ये जो आजादी हमें मिली है, ये माँ भारती के उन वीर सपूतों के ही अमिट बलिदानों का सरमाया है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि उनके बलिदानों को सदैव अपने हृदय में स्मरण रखा जाए और हर क्षण प्रतिपल उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए। इन्हीं सद्विचारों के साथ आज के दिन की इस खूबसूरत और सुहावनी प्रभात में आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। कार्यक्रम आज सवेरे के इस अंक में आपके साथ मैं हूँ आज मुकेश कुमार बल, और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। टुडे इज 14th ऑफ अगस्त 2026। वेल टुमारो इज 15th ऑफ अगस्त, अ वेरी स्पेशल डे। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस डे विद अ लॉट ऑफ फर्वर, प्राइड, एंड वी सल्यूट आवर मार्टर्स एज वेल। सो दिस इज our national news magazine program Aaj Savere, and we have a lot in store for all of you, and I'm sure you all are in the celebration mode of our Independence Day. This is our 80th Independence Day, and today is Friday, tomorrow is Saturday. Weekend is just here. Enjoy each and every moment of this day and every other day. Let's begin our program with the news headlines.
0: Ji bilkul, aaj Vibhajan Vibhishika Smriti Divas hai। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को

0: सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: Squadron leader Bhavna Kant has scripted history by becoming the first women officer of the Indian Air Force IAF to qualify as a fighter combat leader at the Tactics and Air Combat Development Establishment, Gwalior. In a social media post, the Indian Air Force said it is a landmark achievement reflecting professional excellence, combat acumen and the IAF's commitment to nurturing leaders in the air.
2: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि हथकरघा अनुभव केंद्र की भारत के हथकरघा प्रणाली के प्रदर्शन के लिए परिकल्पना की गई है, जहां पारंपरिक ज्ञान को न केवल संरक्षित किया जाता है बल्कि सक्रिय रूप से अभ्यास और अनुभव से आगे भी बढ़ाया जाता है।
1: The first India-Israel hackathon organized on the theme Restorative Healthcare has drawn a huge response from young innovators from both countries seeking to develop technology-driven solutions to challenges in healthcare and rehabilitation. The hackathon brought 1,300 students and individuals from both countries to address the 14 problem statements. And in Uttarakhand, 6 people died and 14 sustained injuries following landslide and water seepage in an under-construction tunnel at the hydroelectric project site in Chamoli district yesterday evening. According to preliminary information, 22 workers were trapped inside the tunnel. 20 people have been brought out of the tunnel. Of them, 6 were declared dead, while 14 others have sustained injuries and are undergoing treatment at a nearby hospital.
2: और श्रोताओं, खेलों में पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने कैनेडियन ओपन टेनिस महिला में सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। टोरंटो में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियातेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। स्वियातेक ने 6-2 6-3 की जीत के साथ इस सीजन का अपना पहला खिताब जीता। और ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। अब रुक करते हैं महानगरों की खबरों का, तो शुरुआत करते हैं इस कड़ी में दिल्ली से जुड़े समाचारों की। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं कल सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि कल नियमित सेवाएं शुरू होने तक मेट्रो ट्रेन 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। इसके अलावा भारत मंडपम में चल रहे भारतीय व्यापार महोत्सव के दूसरे दिन भी देश भर से आए व्यापारियों, उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स, उपभोक्ताओं और विदेशी प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने देश भर के व्यापारियों, उद्योगपतियों और इस महोत्सव में भाग ले रहे हितधारकों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में आएं और इसका लुत्फ लें।
1: And moving towards Chennai, airport police arrested a 73-year-old man for cheating job seekers by promising employment at Chennai airport. Investigators said the accused collected money from people claiming he could secure government jobs through his contacts. The accused, Sankaraya, a native of Andhra, stayed in Alandur and was arrested on a complaint from Ramamurthy of Tambaram. He collected 71,000 rupees in various installments, claiming it had to be paid to customs officials to complete the appointment process.
2: उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने के लिए एकीकृत जल योजना के अनुसार नदी जोड़ने की परियोजनाएं लागू की जाएंगी। मुंबई में कल महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरण के स्थापना दिवस समारोह में श्री फडणवीस ने कहा कि गोदावरी बेसिन के लिए एकीकृत जल योजना तैयार करने से शुरू हुई प्रक्रिया का विस्तार कृष्णा, तापी और नर्मदा बेसिन के साथ साथ कोंकण क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को शामिल करने के लिए किया गया है।
1: And moving towards Bangalore, researchers at the Indian Institute of Science, IISc Bangalore, have developed Shravani. Shravani, an open-source voice AI model capable of recognizing speech in 65 Indian languages and dialects. Developed by IISc's Spire Lab with Art Park and support from Google, the model can convert

0: speech into text across 10 scripts and automatically identify the language being spoken. It covers 20 scheduled languages and 45 regional languages and dialects, including Tulu, Garo, Kokborok, and Bundeli. IISc said the languages covered are spoken by around 25 crore people based on the 2011 census, with several not supported by existing speech recognition systems. And we have some more news from Bangalore itself. Tourism Secretary Dr. Ram Prasad Manohar has directed the Hampi Development Authority and Vijayanagar Deputy Commissioner to prepare an action plan for the Clean and Green Hampi campaign aimed at improving cleanliness, environmental conservation and visitor facilities at the World Heritage Site. The initiative will focus on active participation of tourists and the public in keeping Hampi clean and green.
1: Shyama Prasad Mukherjee ki 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल सरकार ने साल भर चलने वाली कई पहल शुरू की हैं। इनमें कोलकाता के इको पार्क में मुखर्जी जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण, पुस्तकालय का पुनर्निर्माण, संग्रहालय की स्थापना और उनके जीवन और कार्यों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करना शामिल है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल इन स्मारक योजनाओं की देखरेख के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता भी की है।
0: And moving towards Hyderabad, Chief Minister A. Revanth Reddy yesterday laid the foundation stone for Indira Amma Housing Towers at Kukatpally in Hyderabad, aimed at providing homes to the urban poor. The government has decided to build 1 lakh houses in the first phase under this scheme. The Chief Minister said the government is committed to fulfilling the dream of home ownership for every poor family. Speaking about land records, he assured people that no one holding land under Section 22A would lose ownership and appealed to citizens not to believe false propaganda circulating on social media regarding these lands.
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर मुकेश और तन्वी के साथ। अब जानते हैं आज महानगरों के मौसम का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान आज 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उधर कोलकाता की अगर बात करें तो शहर में आज बादल छाए रहने और बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु का हाल तन्वी से।
0: Let's talk about Chennai first. Chennai will have generally cloudy sky with light rain. Temperature will range from 27 degrees Celsius to 36 degrees Celsius. About Bangalore, it will have generally cloudy sky with light rain, just like Chennai, and the temperature will hover between 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. And about Hyderabad, there will be partly cloudy sky with the possibility of rain, thunderstorm or even dust storm. Temperature will range from 24 degrees Celsius to 33 degrees Celsius.
1: और श्रोताओं, समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाने का। आज 14 अगस्त है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आइए नजर डालते हैं आज के दिन की घटनाओं पर। 1862 में बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना आज की तारीख को की गई थी और 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प में ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी आज ही की तारीख को हुई थी।
0: Let me add something else to 1862. Bombay High Court was established for Maharashtra, Goa, Dadra and Nagar Haveli and even Daman and Diu territory. And this court has benches at Nagpur, Panaji and Aurangabad.
1: 1971 की अगर हम बात करें तो आज ही की तारीख को बहरीन को 110 वर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी।
0: Let's go a little back. In 1896, Gandhi ji published the Green Pamphlet at Rajkot and then toured to Bombay, Madras, Pune and Calcutta, educating Indians in regard to grievances of South African Indians.
1: 1968 में मुरारजी देसाई को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से भी आज ही की तारीख को सम्मानित किया गया था।
0: In the year 1942, Usha Mehta, a freedom fighter, started broadcasting from a secret transmitter.

0: on the wavelength of 42.84 meters. This channel was used for freedom movement telecasts. And if we talk about 1954, State Carom Association was established in Mumbai. In 1980, Center nationalized Maruti Company. And in 1987, Bharat Ratna India's highest award was given to Khan Abdul Ghaffar Khan, 1890 to 1988, Frontier Gandhi. He is the first non-Indian to receive this honor.
1: और अब समय है उन विभूतियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था। वे भारतीय निवेशक और व्यापारी थे। भारत के बिग बुल और वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार के बेहतरीन निवेशक थे। बचपन से ही इनकी रुचि निवेश और शेयर बाजार में थी, जिसकी वजह से अपने शुरुआती दौर में उन्होंने बिजनेस में 5,000 रुपये लगाकर उसको 18,000 करोड़ तक पहुंचा दिया और भारत के 48वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। राकेश झुनझुनवाला रेयर इंटरप्राइजेस के नाम से स्टॉक ट्रेडिंग फर्म चलाते थे, जहां से वे स्वयं कार्यभार संभालते थे।
0: एंड द नेक्स्ट पर्सनालिटी इन आवर लिस्ट इज Halle Berry. Today is her birthday, an American actress. I'm sure you must have seen her in multiple movies, be it The Flintstones or Introducing Dorothy Dandridge, Monsters Ball, X-Men film series, Swordfish, Gothica, and even Die Another Day. But the role that caught our attention was The Catwoman, that came in 2004. She was looking ravishing and she performed a wonderful, wonderful movie, and her performance was well appreciated. So let's just hear a wonderful speech of hers at the Oscars presenting an award.
2: This is what Oscar-winning lyricist Alan and Marilyn Bergman had to say about achievements in sound and sound editing. Sound is the sensation that is due to stimulation. It's transmitted by vibration to the centers of the brain. If that sounds scientific, oh, I can be more specific. With your kind indulgence, please allow me to explain. A smack, a whack, a quack, a creak, a squeak, a shriek, a punch, a crunch, a munch, a breeze, a wheeze, a sneeze, a thump, a bump, a thump, a snap, a tap, a clap, a splash, a smash, a crash, a peck, a whack, a shrek. The sound editor collects and perfects dialogue, music, and effects. To amuse, to amaze, to scare, to excite, it takes talent and time to get it all just right. They mix, they fix, they create, they record. That is why they deserve the Academy Award.
1: श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है शमी कपूर की। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था।

इनके बारे में बात की जाए, इनके गाने ही अपने आप में इनकी शख्सियत को बयां करते हैं। शमी हिंदी सिनेमा के 1950-60 के दशक में सदाबहार अभिनेता थे। शमी का वास्तविक नाम शमशेर राज कपूर था। अपनी विशिष्ट याहू शैली के कारण बेहद लोकप्रिय रहे हिंदी फिल्मों के पहले सिंगिंग डांसिंग स्टार शमी कपूर रंगमंच के जाने माने अदाकार और फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे बेटे थे। शमी कपूर ने वर्ष 1953 में फिल्म ज्योति जीवन से अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की। वर्ष 1957 में नासिर हुसैन की फिल्म तुमसा नहीं देखा में जहां अभिनेत्री अमिता के साथ उन्होंने काम किया, वहीं 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो में आशा पारेख के साथ भी वे नजर आई। उनकी मुख्य फिल्में हैं ब्रह्मचारी, प्रोफेसर, चार दिन चार राहें, रात के राही, चाइना टाउन, दिल तेरा दीवाना, कश्मीर की कली और ब्लफ मास्टर।

0: And it's also the birthday of Mila Kunis, an American actress. She began acting with minor television roles in the early 1990s, but she starred as Jackie on That 70s Show from 1998 to 2006, and she has also voiced Meg Griffin on Family Guy since 1999. And she is famous for multiple performances of hers, be it in Black Swan, Ted, and The Book of Ellie, Friends with Benefits, Oz, The Great and Powerful, Bad Moms, and A Bad Mom's Christmas, Wake Up Dead Man, A Knives, and many, many more. So let's hear an old interview of hers back from 1989, where she was doing That 70s Show.
1: Mila Kunis, M-I-L-A, last name K-U-N-I-S. I play Jackie. And you know, I just be myself and I hope it's good enough. I mean, I love this. I like to talk. And so I'll just talk on and on and on and on. And so for me, it's pretty simple. I just give him the answer that I think is correct. I hope it's going to happen. I mean, I'm looking out for the show to be a big hit. But, you know, if it doesn't, I just like this. I love this. Cameras and all this. I just like it. I just like this whole process. For me, it's exciting and it's awesome.
0: Today is also the birthday of Munish Behel, an Indian actor working in Indian film industry, and he is the only son of actress Nutan. He debuted in the film Bekarar, and the films Hum Aapke Hain Kaun and Hum Saath Saath Hain are considered landmarks films that transformed his career. He starred in over 100 films. Let's hear a dialogue from his film Hum Aapke Hain Kaun.
2: रूप रंग में गोरी हो चाहे काली हो, खुश नसीब वो जीजा है जिसकी साली हो। जिसकी साली हो वो डेढ़ गुना सुख पाए, नैन रखे साली पर पीवी संग बतियाए।
3: आगे
2: कहत कवि राजेश अमृत सुख रस की प्याली, साली होती है प्यारे आधी घरवाली।
4: पेट आदमी को तरह तरह के आदमियों में बांट देता है और फिर उनके साथ चस्पा हो जाती हैं तरह तरह की नैतिकताएं, कर्तव्य, देश, राष्ट्र, शांति व्यवस्था की विस्मयकारी कथाएं। आदमी के इस बंटवारे की एक खास पहचान है वर्दी, जो शुरू के दिनों में उत्तेजक लगते हुए भी अजीब लगती है। बेहद कष्टप्रद, एक जैसे मोटे खाकी कपड़ों को चढ़ाना, पट्टा कसना, नंबर चिपकाना, जैसे हवा को बोतल में बंद कर दे पहाड़ की चुप्पी। ये रचना है चंद्रकांत देवताले की। आज पुण्यतिथि है उनकी। उनका जन्म 7 नवंबर 1936 को जोलखेड़ा के बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ। वे प्रसिद्ध भारतीय कवि और साहित्यकार थे। वे देश की 24 भाषाओं में विशेष साहित्य के योगदान के लिए प्रख्यात साहित्यकारों में शामिल हैं। चंद्रकांत अपनी कविता की सघन बुनावट और उसमें निहित राजनीतिक संवेदना के लिए जाने जाते थे। वे दुनिया का सबसे गरीब आदमी से लेकर बुद्ध के देश में बुश तक पर कविताएं लिखते थे। अगर हम उनकी कृतियों के बारे में बात करें तो हड्डियों में छिपा ज्वार, दीवारों पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा है और माँ पर नहीं लिख सकता कविता उनकी रचनाओं में शामिल है।
0: And we are also talking about Steve Martin today. He is an American comedian, actor, writer, producer, and musician. Known for his work in comedy films, TV, and recording, he has received many accolades, be it 5 Grammy Awards, a Primetime Emmy Award, and a Screen Actors Guild Award, as well as multiple nominations. Let's hear one of his comedy gigs.
5: Hamburger.
6: Hamburger.
5: Hamburger.
6: Hamburger.
5: Hamburger.
6: Hamburger.
5: Ham.
6: Ham.
5: Burger.
6: Burger.
5: I would like to buy a hamburger.
6: I would like to buy a hamburger.
7: मैं अहमदाबाद से बजोड़िया सेठ बोल रहा हूँ, डब्बा बाल्टी टम्बलर वाला। आप कौन बोल रहे हैं?
8: मैं घर का एक्सीडेंट बाबूलाल बोल रहा हूँ।
7: तुम चोपड़ा साहब को फोन दियो।
8: एक मिनट। मोटो
9: क्या
8: चोपड़ा कौन है अपने यहाँ?
9: बाबू लाल चोपड़ा साहब हमारे मालिक हैं।
7: हेलो चोपड़ा साहब, एक मिनट ठहरिए, मैं भी ढूंढ के लाता हूँ।
4: उम्मीद है कि अब तक आप हंस हंस के लोटपोट हो गए होंगे और जरूर पहचान भी गए होंगे कि इस मशहूर अभिनेता को ये कौन है जी हाँ श्रोताओं, आज जन्मदिन है जॉनी लीवर का। उनका पूरा नाम जॉन प्रकाश राव है। अगर इनकी बात करें तो फिल्म अभिनेताओं की मिमिक्री करने में इनको महारत हासिल है। वो हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए प्रसिद्ध हैं।
0: And Johnny Lever, if you talk about, there are multiple roles that he has done in various movies and he has made us laugh out really hard. जी. Let's hear another dialogue of his.
4: बिल्कुल।
10: अरे खाली अंशुमन पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना।
11: अवार्ड अंशुमन?
10: हाँ, इसके पीछे कहानी है, सुना क्या?
11: नहीं नहीं।
10: घाट वालों में?
11: नहीं।
10: गिर गर्दन घाट? अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट,
11: हाँ।
10: उसमें बड़ा बड़ा मतलब,
11: हाँ।
10: तीन हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलन की ओर जा रहा था,
11: हाँ।
10: और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी इधर चले, कभी उधर चले, अन दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना, तेरे को लगेगा तू यौवन में बैठा है।
11: क्या बात कर रहे हो?
10: अरे बात मजे क्या है, सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते मालूम है?
11: नहीं।
0: And today is the birthday of Sunidhi Chauhan, an Indian playback singer known for her bold vocal range and versatility. She's recorded songs for films in several Indian languages and received accolades. She was born in Delhi and she began performing at local gatherings at the age of just 4 and made her career debut at the age of 13 with the film Shastra. During that year, she rose to prominence after recording the song Rookie Rookie Season the Ghee in 1999 when she was just 16 years old. So let's just hear this wonderful song.

और श्रोताओं, अगर आज आपका सेंट्रल दिल्ली या आसपास के इलाकों में जाने का कार्यक्रम हो तो आप द पार्टीशन म्यूजियम में सुबह 11 बजे से आजादी और विभाजन की स्मृतियों पर चर्चा का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा एनएसडी में आज दोपहर 3 बजे से तिरंगा रैली भी निकाली जाएगी और कमानी ऑडिटोरियम में दोपहर 2:30 बजे से फैसिलिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे राम नाटक का मंचन भी आज निर्धारित है। आप इन कार्यक्रमों में जाकर अपने दिन को और खुशनुमा बना सकते हैं।

0: और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आपसे अनुमति ली जाए, तो इन्हीं खूबसूरत गानों के साथ दीजिए अनुमति मुकेश और तन्वी को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: नमस्कार।

0: आयन। हर घर सूर्य
1: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
4: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में

0: कार्यकर्ताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लालकिला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
2: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता

0: मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
1: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी जीएसटी से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की

0: नसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सिरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकीना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का ये खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले ये खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और इसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का ये खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने साल 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिले तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तकसीम की हौलनाकी को याद करने के दिन के मौके पर कौमी राजधानी समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुल्क की तकसीम के सबब अपनी जान गंवाने वाले और अपने आबाई वतन से बेघर हुए लोगों को खराज अकीदत पेश करने और उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए हुकूमत ने साल 2021 में हर साल 14 अगस्त को यह दिन मनाने का फैसला किया था। यह दिन इस बात को यकीनी बनाता है कि आइंदा नस्लें आजाद भारत के वजूद में आने के वक्त हुए तशद्दुद के दौरान लोगों के दर्द और मुश्किलात को याद रखें। आज का दिन लोगों को माशरती तकसीम व इंतशार की लानत को खत्म करने और यकजहती समाजी हम आहंगी और लोगों को बाइख्तियार बनाने के जज्बे को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत की याद दिलाता है। मुल्क की तकसीम के सबब इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी हुई जिससे तकरीबन 20 मिलियन लोग मुतासिर हुए। आज़ादी का जश्न मनाकर मुल्क उन लोगों को भी सलाम पेश कर रहा है जिन्होंने तशद्दुद के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: तकसीम की हौलनाकियों को याद करने के दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन लोगों की हिम्मत और हौसले को याद किया जो मुल्क की तकसीम से मुतासिर हुए थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख का एक ऐसा लम्हा करार दिया जिससे लोगों की जिंदगियां बिखर गईं, खानदान उजड़ गए, लोगों ने अपने अजीजों को खो दिया और इंतहाई मुश्किलात का सामना किया। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इसके साथ ही लोगों ने इस मुश्किल को बर्दाश्त किया और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, सख्तियों को कामयाबी में बदला और मुल्क की तरक्की में बेपनाह तआवुन पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज भोपाल में एक बड़ी तिरंगा रैली का एहतमाम किया जा रहा है। ये रैली सुबह 10 बजे कोलार 6 लेन रोड से शुरू होगी और तकरीबन 32 किलोमीटर का फासला तय करते हुए संत नगर में खत्म होगी। इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वजीर आला डॉ मोहन यादव और बीजेपी के रियासती सदर हेमंत खंडेलवाल भी इस रैली में शिरकत करेंगे। बारिश के इम्कान के मद्देनजर रैली के ये इंतजाम किए गए हैं। चूना भट्टी समेत कई मकामात पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इन मकामात के जरिए मनुष्यात की लानत के खिलाफ नौजवानों में बेदारी पैदा करने के पैगामात की तशहीर की जाएगी। कल यौम आजादी पर दिल्ली मेट्रो की खिदमात पूरे नेटवर्क पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने कहा है कि यौम आजादी तकरीबात में शिरकत करने वाले खसूसी मेहमानों, मधु किए गए अफराद और आम लोगों की सहूलत की खातिर ये फैसला किया गया है। DMRC ने यह भी कहा है कि मामूल की खिदमात शुरू होने तक सभी लाइनों पर मेट्रो खिदमात आधे घंटे के वक्फे से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज के शोबे में फायर ऑपरेटर ओहदों और जेल के महकमे में वार्डन और मेट्रन ओहदों पर सीधे भर्ती में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन की मंजूरी दी है। उमूर दाखिला के महकमे के हुक्म में अहल उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में रियायत भी दी गई है। ये कदम साबिक अग्निवीरों की बाजाबादकारी की मरकजी सरकार की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। उमूर दाखिला की मरकजी वजारत ने साबिक अग्निवीरों के लिए पहले ही जनरल ड्यूटी पर काम करने वाले कांस्टेबल और सभी मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज नीज आसाम राइफल्स में राइफलमैन सतह पर 50% ओहदे रिजर्व कर दिए हैं। ग्वालियर में टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने फायर कॉम्बैट लीडर के तौर पर क्वालिफाई किया है। इस तरह उन्होंने भारतीय फजाइया की पहली खातून अफसर बनकर तारीख रकम की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फजाइया ने कहा कि ये एक तारीखी कामयाबी है जिससे पेशावराना महारत, जंगी समझबूझ और लीडर्स की हौसला अफजाई के तई फजाइया के अज़्म का इजहार होता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर जेरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। नजदीक के अस्पताल में जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि ये वाकया पीपल कोटी इलाके में टेहरी हाइड्रोजन डिवेलपमेंट कारपोरेशन प्रोजेक्ट मकाम पर पेश आया।
2: इस हादसे की इत्तला मिलते ही जिला इंतजामिया, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विसेज और तिब्बी महकमे की टीमें वहां पहुंच गईं। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने वहां बचाव कार्रवाई की निगरानी की। जख्मी कारकुनों को गोपेश्वर के जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इधर रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल रात देर गए देहरादून में रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशन मरकज में राहत और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया।
3: हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए एनडीआरएफ, एसटीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है।
2: इरफान,
0: हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा में लगातार बारिश होने से बड़े दरियाओं में तुगयानी आ गई है और शिमाली जिलों में बैतरनी और बूढ़ा बलंगा दरियाओं से फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भद्रक में बैतरनी दरिया खतरे के निशान को पार कर गया है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और भंडारी पोखरी में कई गांव पानी से घिर गए हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि हुक्काम सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने के अंदेशे के तनाजुर में जरूरी इकदामात कर रही हैं।
2: ओडिशा में कई मकामात पर लगातार बारिश होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर वहां बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। केंझार जिले में आनंदपुर के मकाम पर भी बैतरणी दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस तनाजुर में हुकाम ने आसपास के कस्बों और गांवों के लोगों को चौकस कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। इधर चंपुआ में सैलाब के पानी से एक पुल बह गया है जिससे सड़क राबते में रुकावट पड़ गई है। बूढ़ा बलंगा दरिया में पानी चढ़ने की वजह से मयूरभंज और बालासोर जिले के निचले इलाकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मगरबी बंगाल के साहिल पर हवा के गहरे दबाव का हल्का मगरब शिमाल मगरब में रफ्ता रफ्ता गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल की समत बढ़ रहा है। फिलहाल ये कोलकाता के तकरीबन 60 किलोमीटर मगरब और मिदनापुर के 50 किलोमीटर मशरक शिमाल मशरक में मरकूज है। इसके जेर असर आज कई जिलों में तेज बारिश होने का इम्कान है। मशरकी और मगरबी मिदनापुर, झारग्राम, जनूबी 24 परगना, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो कल तक समंदर में ना जाएं। इधर शिमाली बंगाल में भी आज जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार जिले में तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसमियात महकमे ने शिमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई की है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख

0: लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की गई है। उधर अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा और मुलाजमत के उम्मीदवारों का एहतजाज आज 21वें दिन भी जारी है। मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म करने से इनकार किया है और सीबीआई जांच और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे का इरादा किया। मुजाहिरीन ने 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है ताकि इस मुजाहिरे को मजीद मजबूत बनाया जा सके। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उम्मीदवारों का धरना जारी है। तलबा कल एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालेंगे जिसमें रियासत भर के हजारों नौजवानों के इकट्ठा होने की तवक्को है। यौम आज़ादी की तकरीबात और इस बड़े तलबा मुजाहिरे के पेश नज़र रांची जिला इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। तलबा की तिरंगा यात्रा के रास्ते पर और हसास मकामात पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। कैनेडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबकीना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। कल रात टोरंटो में खेले गए फाइनल में सातवें नंबर की ईगा श्यांटेक ने दूसरे नंबर की खिलाड़ी एलेना रिबकीना को 6-2 और 6-3 से हराकर सीजन का अपना पहला टाइटल हासिल किया। इस तरह वो अब पूरे इतमाद के साथ यूएस ओपन टेनिस में कदम रखेंगी। इधर अमरीका के बेन शेल्टन ने मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीता है। उन्होंने मॉन्ट्रियल में खेले गए फाइनल में अपने हमवतन ब्रेंडर नाकाशिमा को 6-3 और 7-6 से शिकस्त दी। भारत नाइजीरिया के लागोस में मुनाकिदा दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में शानदार 35 तमगे जीतकर मजमूई तौर पर चैंपियन बनकर उभरा है। भारतीय दस्ते ने अंडर 23 और सीनियर मुकाबलों में 13 सोने के, 8 चांदी के और 14 कांसे के तमगे हासिल किए हैं। भारत ने अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत विल्किंसन सोड ट्रॉफी भी जीत ली है, जो मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले मुल्क को कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन की जानिब से की जाती है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आखिरी दिन से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मानसून इजलास हंगामे की नजर, गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी, नीट पेपर लीक मामला छाया रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से मुल्क के मोजिज फनकारों को साल 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड तफवीज किए जाने से मुतालिक खबर को अखबारात ने अहमियत के साथ पहले सफे पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने इस दौरान दिए सदर जमहूरिया के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अवार्ड हासिल करने वाले फनकार मिलकर मुल्क का एक ऐसा सकाफती नक्शा पेश करते हैं जिसमें मुल्क की मिट्टी की कहानियां और गीत जुड़े हैं।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आज़ादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सेरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कनाडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर ख्वातीन सिंगल्स का टाइटल जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल्ली और 8:46 और 5 सेकंड पर गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

जी दोस्त, आपका और हमारा नाता तो हमेशा ही बहुत स्पेशल है हमारे लिए, तभी तो आपसे मिलने चले आते हैं हम हर रोज म्यूजिकल दिल्ली में। और नाता अगर म्यूजिक से हो तो फिर इंसान की पूरी शख्सियत बदल जाती है। साइंटिफिक रिसर्चेस के अनुसार संगीत किसी व्यक्ति के सोचने के तरीके, उसकी पर्सनालिटी और बिहेवियर को गहरे स्तर

आकार देता है। संगीत से प्रेम करने वाले लोग अक्सर खुश दिल खुश मिजाज होते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की बात करें तो फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हमारे फोकस और मेमोरी को तेज करता है। और जो बच्चे छोटी उम्र से ही कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, उनके ब्रेन के लेफ्ट और राइट हिस्से एक दूसरे से बेहतर तालमेल बनाते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेफिनेटली बेटर होती हैं। और संगीत सुनने से हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो लोगों में एक दूसरे के प्रति आपसी भरोसा, एम्पथी और जुड़ाव की भावना को प्रोत्साहित करता है, जिससे हम यकीनन सामाजिक रूप से भी बेहतर इंसान बनते हैं। तो देखा आपने म्यूजिक का कमाल, और म्यूजिक वो भी गोल्डन म्यूजिक रहता है आपके साथ 24 घंटे 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर 8:51 पर। ये है म्यूजिकल दिल्ली और गोल्ड स्टूडियो से आज आपका साथ दे रही हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह।

वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

8:55 और 58 सेकेंड। इतनी जल्दी वक्त निकल जाता है आपसे बात करते हुए कि पता ही नहीं चलता। 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल्ली और मेरे चलने का वक्त करीब आ रहा है। लेकिन चलते चलते दोस्त आपसे ये बात यहाँ पर ज़रूर साझा करना चाहूँगी कि स्वतंत्रता दिवस कल है, हम सभी जानते हैं, और पूरे एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से आपको एडवांस में शुभकामनाएं भी दे रहे हैं हम। लेकिन इस दौरान जो समारोह आयोजित किया जाता है लाल किले पर, तो उसको लेकर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस वहाँ उस इलाके में जारी रहते हैं। तो कल 10 बजे तक उस एरिया में, लाल किला के आसपास जो एरिया है, वहाँ पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। और जिन सड़कों पर ये आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी वो हैं नेताजी सुभाष मार्ग, लोटिया रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और राजघाट और आईएसबीटी के बीच रिंग रोड का जो हिस्सा है वो भी इस पर शामिल रहेगा। जिन वाहनों पर, जिन व्हीकल्स पर स्टिकर्स होंगे, सिर्फ वही वहां से निकल पाएंगे। और इसके अलावा हम सभी ये बात अब तक जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो कल 4 बजे से अपने ऑपरेशंस शुरू कर देगी, ताकि समारोह में जो लोग भाग लेने जाना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाए। तो फिर पूरी शान और अभिमान के साथ हर घर तिरंगा अभियान में भी शामिल हो जाएं और स्वतंत्रता दिवस जरूर पूरे शान, मान और अभिमान के साथ मनाएं। फिलहाल आपसे यही कहूंगी कि वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। फिर मिलती हूँ यही 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा कहती है बाय, टेक केयर। और एक और गाना आपकी नजर करते हुए, इसके बाद आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के उस पार रेखा एक बार आपके साथ जुड़ जाएंगी म्यूजिकल दिल्ली के दूसरे सेगमेंट में 9:10 पर। टिल देन कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक। बाय, टेक केयर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा।

0: आजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन को इतिहास का वो क्षण बताया जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 14 अगस्त 1947 का दिन इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक का गवाह है जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और अमानवीय पीड़ा सहनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। डीएमआरसी ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है और सीबीआई जांच तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग दोहराई है। प्रदर्शनकारियों ने कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपल कोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा में कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल स्वियाटेक ने एलेना रायबकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ स्वियाटेक इस सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashvani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashvani will broadcast the regional languages language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Prime Minister Narendra Modi has remembered the current

कहते हैं भरोसा अगर खुद पर हो तो वो आपकी ताकत बन जाता है और दूसरों पर हो तो वो आपकी कमजोरी बन जाता है। जो उम्मीदें आप दूसरों से करते हैं वही उम्मीदें आज खुद से करें और एक नई शुरुआत करें। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस और ये है म्यूजिकल दिल लगी।

0: दोस्तों, केंद्र सरकार कई सरकारी योजनाएं चलाती है जिनके जरिए पात्र लोगों को लाभ देने का काम किया जाता है। जैसे किसी योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को सीधे आर्थिक मदद देती है जिनसे उनके बैंक खाते में पैसे भेजे जाते हैं। ठीक ऐसी कई योजनाओं में सब्सिडी दी जाती है, जबकि कई योजनाओं के तहत कई और सुविधाएं देने का प्रावधान है। अलग अलग योजनाएं और अलग तरह के लाभ मिलते हैं, जैसे भारत सरकार की एक योजना जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। दरअसल अटल पेंशन योजना एक पेंशन योजना है जिसे सरकार केंद्र सरकार की ओर से चलाया जाता है, और इस योजना के तहत जो लोग इस योजना से जुड़ते हैं उन्हें 60 वर्ष के बाद पेंशन दी जाती है। इस योजना में पहले आपको आवेदन करना होता है और हर महीने अपनी उम्र के हिसाब से प्रीमियम देना होता है। कौन कर सकता है आवेदन और कितना होता है प्रीमियम, ये भी बता दूं आपको। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना में अगर आपको आवेदन करना है तो आपको अपनी उम्र के हिसाब से प्रीमियम देना होगा। और अगर मैं इसे समझाने की बात करूं तो इस योजना में, जैसे मान लीजिए कि आप 18 वर्ष की उम्र में जुड़ते हैं तो आपको हर महीने करीब 210 रुपए जमा करने होंगे, तो उसे 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपए आपको दिए जाएंगे उस योजना के बाद। इस योजना में आपको कम से कम 20 साल तक निवेश करना होता है। फायदे, जैसा कि मैंने कहा कि अटल पेंशन योजना से अगर आप जुड़ते हैं तो हर महीने पेंशन का लाभ मिलता है और ये लाभ 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलता है। इसमें आपको हर महीने 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। बस आपको आवेदन के समय वो प्लान चुनना है जितनी आपको पेंशन चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4 या 5 हजार रुपए की महीने वाली पेंशन प्लान। अगर आपको इस अटल पेंशन योजना से जुड़ना है तो आवेदन के लिए आपको अपने बैंक जाना है। यहाँ पर आपकी केवाईसी होती है और आपके पेंशन प्लान चुनने का आपको मौका मिलता है। इसके बाद आपके बैंक खाते को योजना से लिंक कर दिया जाता है और हर महीने आपके अकाउंट से प्रीमियम कट जाता है, फिर आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो अपने बैंक से संपर्क कीजिए और इस योजना के साथ जुड़ जाइए। फिलहाल एक और गीत है मेरे पास आपके लिए और बातें बहुत जारी हैं। गीतों के साथ साथ जुड़ रही है सफर में, जिसे कहते हैं हम म्यूजिकल दिल लगी।
1: अरे अरे ए,

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
7: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना।
8: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
9: आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:25 और 33 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आज रेखा क्रिस्टल वॉइस। ब्रेक के बाद मुझे पता है कि आपको इंतजार रहता है गीतों का, तो पहले ही गीत सुन लीजिए, उसके बाद काम की कुछ और बातें भी हैं मेरे पास, तो जाइएगा मत कहीं पे, और अगर जाए तो हमें साथ लेकर जाइएगा। सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़, आपका अपना FM गोल्ड।

दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में एक श्रृंखला जो आपके पसंदीदा चैनल की तरफ से चलाई गई आजादी के गुमनाम नायक, इसमें हम आज जिस नायक की बात करेंगे उन्हें हम जानते हैं तिरोत सिंह के नाम से। गुलाम राजा बनकर जीने से बेहतर है एक स्वतंत्र राजा के रूप में मर जाना, ऐसा मानना था यू तिरोत सिंह का। पूर्वोत्तर भारत के वो महान नायक जिनकी वीरता की गूंज से खासी पहाड़ियां आज भी गूंजती हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी और मेघालय के वीर योद्धा यू तिरोत सिंह को आज हम शत शत नमन करते हैं। उनके शौर्य की वो गाथा जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी, आज मैं आपको सुनाती हूँ। यू तिरोत सिंह पूर्वोत्तर भारत में मेघालय की खासी पहाड़ियों के एक महान आदिवासी राजा और स्वतंत्रता सेनानी थे। वो सीएम लिए कबीले से थे और खासी हिल्स के नौकलाव क्षेत्र के संवैधानिक प्रमुख थे। उन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियों और गुलामी को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया था। एंग्लो खासी युद्ध 19वीं सदी की शुरुआत में जब अंग्रेजों ने असम और सिलहट को जोड़ने के लिए खासी पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहा, तो नौकलाव के राजा यू तिरोत सिंह ने गुलामी स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने 1829 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें और बारूद था, जबकि तिरोत सिंह और उनकी खासी योद्धाओं के पास सिर्फ पारंपरिक तलवारें, ढाल और तीर धनुष थे। इसके बावजूद उन्होंने घने जंगलों की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ 4 साल तक भयंकर गोरिल्ला युद्ध लड़ा और उन्हें नाको चने चपवा दिए। अंग्रेज युद्ध के मैदान में तिरोत सिंह को कभी नहीं हरा पाए, लेकिन जनवरी 1833 में अपनों के ही विश्वासघात के कारण वो पकड़े गए। अंग्रेजों ने उन्हें ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में है, उसकी जेल में डाल दिया, जहां सिर्फ 33 वर्ष की उम्र में 17 जुलाई 1835 को उन्होंने अंतिम सांस ली। मेघालय सरकार हर साल 17 जुलाई को यू तिरोत सिंह दिवस के रूप में मनाती है। भारत सरकार ने उनकी याद में डाक टिकट भी जारी किया है। दोस्तों, ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी थी और हमें आजादी को संभाल कर कैसे रखना है। आज हम अपने देश का जितना सम्मान करेंगे, ये आजाद देश जो है, इसके जो योद्धा हैं, जो शहीद हैं, उन्हें हम उतनी ही श्रद्धा और नमन कर सकते हैं, उतने ही प्यार से अपने देशभक्ति को अगर हम कहीं ना कहीं प्रूव कर सकें किसी भी बहाने। अपने देश में हम कई बार कहीं पर भी कूड़ा फेंक देते हैं, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। थोड़ा सा सिविक सेंस हमें ज़रूर अपनाना चाहिए, अपने देश के लोगों से सद्भाव के साथ रहना चाहिए। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम ध्यान देते हैं इन बातों पर तो सचमुच हम इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुँचाती हूँ, पूरब और पश्चिम फिल्म से, ये रहा आपके लिए।

दोस्तों, आज तमिलनाडु में आदिपुरम का जो त्यौहार है, पर्व है, वो मनाया जा रहा है। एक पारंपरिक प्रसिद्ध धार्मिक त्यौहार है ये। दक्षिण भारत में आदिपुरम तमिल कैलेंडर के प्रमुख त्यौहार है। अगर ये कहूं, पूरम नक्षत्र, जिसे पूर्वा फागुनी नक्षत्र के नाम से जाना जाता है, वो 27 नक्षत्रों में से 11वां है। तमिल माह आषाढ़ी यानी आदि के दौरान जब ये नक्षत्र आता है, उस दिन को आदिपुरम कहा जाता है। ये महीना देवी शक्ति को समर्पित है। मान्यता है कि इस महीने में देवी पार्वती खुद पृथ्वी पर वास करती हैं और अपने भक्तों की पीड़ाएं, दुख, दर्द सभी दूर करती हैं। आज ये त्यौहार तमिलनाडु में पूरे हर्ष से मनाया जा रहा है। तमिलनाडु के ज्यादातर विष्णु मंदिरों में आदिपुरम के दौरान भव्य उत्सव होता है। श्री वल्लीपुत्तूर स्थित देवी अंडाल मंदिर में इस उत्सव की रौनक खास होती है, क्योंकि कहते हैं कि इसी जगह देवी अंडाल का जन्म हुआ था, जो लक्ष्मी स्वरूपा है। यहाँ 12 दिनों का उत्सव होता है। ऐसा माना जाता है कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है या जो योग्य वर की तलाश में है, इस दिन देवी अंडाल से शीघ्र विवाह और उत्तम जीवन साथी की प्रार्थना करती है प्राप्ति के लिए। और साथ ही इस दिन माता पार्वती की पूजा और उनकी पहनी चूड़ी पहनने से सुखी दाम्पत्य जीवन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आदिपुरम को लेकर मान्यता है कि इसी दिन देवी पार्वती ने स्त्रीत्व को प्राप्त किया था और इस शुभ अवसर को शक्ति मंदिरों में खास अनुष्ठान होते हैं। मंदिरों में पुजारी देवी की पूजा और आरती करते हैं, उन्हें कांच की चूड़ियां चढ़ाई जाती है। विष्णु मंदिरों में इस दिन को देवी अंडाल और भगवान रंगनाथ स्वामी यानी विष्णु के स्वरूप के विवाह के समारोह के रूप में मनाया जाता है, जिसे कल्याणम भी कहते हैं। इसे अंडाल जयंती के तौर पर भी जाना जाता है। तमिलनाडु में आदिपुरम का दिन वल्लैक्कप्पू, जो कि गोद भराई के रूप में जाना जाता है, इसे भी मनाते हैं और इसमें माता पार्वती को चूड़ियां अर्पित की जाती है और फिर इन्हें स्त्रियों को प्रसाद स्वरूप बांट दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए आशीर्वाद का प्रतीक होता है ये, तो वहीं विवाहितों के लिए ये अखंड सौभाग्य का आशीष होता है। तो आज तमिलनाडु वासी जो आज इस त्यौहार को मना रहे हैं, उन सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं, और जो किसी और सिटी में भी रहते हैं लेकिन तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, मुझे पता है कि आज वो भी इस उत्सव को मना रहे हैं, तो उन सभी को आज इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल ये खूबसूरत गीत आपके लिए है।

तो मैं चलिए आपको एक और काम की बात बता दूं, अगर आज आप खाली हैं, थोड़ा वक्त है आपके पास, तो कहाँ आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जा सकते हैं प्रदर्शनी देखने, नाटक देखने। कहाँ जाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। फायर एंड फार्म सिरेमिक स्टोनवेयर प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है त्रिवेणी कला संगम में सुबह 11 से शाम 7 बजे तक। अगर वक्त है और आप इस इलाके के आसपास हैं तो पहुंच जाइए। स्वराज प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है इंडिया हैबिटेट सेंटर में, ये भी सुबह 11 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक चलेगा, तो आप तो यहां भी जा सकते हैं। वेब द फ्यूचर प्रदर्शनी हैंडलूम हाट में लगी है, शाम 5 बजे से 7 बजे तक।

का समय है, आप चाहें तो यहाँ भी जा सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट है नाटक देखने में तो फिर हमारे राम नाटक का मंचन होने वाला है कमानी सभागार में दोपहर 2:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, इतना कुछ है करने के लिए और इतना खूबसूरत मौसम है, तो क्यों इंतजार करना है, पहुंच जाइए ना।

दोस्तों म्यूजिकल दिल्ली की सफर में तो इतना ही, लेकिन मैं आपकी दोस्त आशरेखा क्रिस्टल वॉइस फिर से मिलूंगी आपसे 10:30 बजे। सुनते रहेगा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। और इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, वर्ल्ड न्यूज और विश्व दर्पण।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है।

0: और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन को इतिहास का वो क्षण बताया जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 14 अगस्त 1947 का दिन इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक का गवाह है जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और अमानवीय पीड़ा सहनी पड़ी। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को अपने घर, संपत्ति और प्रियजनों को छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है और सीबीआई जांच तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग दोहराई है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल स्वियाटेक ने एलेना रायबकिना को सीधे सेटों में हराया। पुरुष सिंगल्स में अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बेन शेल्टन ने मॉन्ट्रियल में अपने हमवतन खिलाड़ी ब्रेंडन नाकाशीमा को हराकर खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashvani. It will also be telecast on all the channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashvani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Prime Minister Narendra Modi has remembered the courage of all those who were impacted by partition. In a social media post, Mr. Modi termed the partition as a moment in history that tore apart several lives, where families were uprooted, loved ones were lost, and immense suffering was endured. Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. on Independence Day. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, said that the decision has been taken to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public attending the Independence Day celebration. The DMRC said

0: में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने और विकासशील देशों की आवाज बुलंद करने की प्रतिबद्धता दोहराई। स्वास्थ्य वर्धन के विषय पर आयोजित भारत इसराइल हैकाथॉन को दोनों देशों के युवा नव प्रवर्तकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। ये स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास के क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित करता है। इस हैकाथॉन में दोनों देशों के 1300 प्रतिभागियों ने 14 समस्याओं पर विचार विमर्श किया। इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने हैकाथॉन के विजेताओं को सम्मानित किया। इसराइल के समाधानों में व्हीलचेयर पर लगाए जाने वाला अंग गतिशीलता तंत्र शामिल है। भारत के समाधानों में एक ऐसा तंत्र शामिल है जो घायलों के अंगों की गति का आकलन करने और स्वचालित गति विश्लेषण का उपयोग करता है। इस पहल ने भारत इसराइल के बीच आपसी संबंधों को मजबूत किया है। भारत द्वारा चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने को लेकर चीन और रूस ने इस वर्ष भारत के समर्थन की पुष्टि की है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में ब्रिक्स राजदूतों की गोलमेज चर्चा में भाग लिया। एक रिपोर्ट।
1: राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को गहरा करने और वैश्विक मामलों में समूह की भूमिका को मजबूत करने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि करते हुए समूह को व्यवहारिक सहयोग और ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। चर्चा में समावेशिता, बहुपक्षवाद और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर जोर देते हुए एक लचीली और टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में ब्रिक्स की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की 2026 की ब्रिक्स की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मानव रहित ड्रोन और उसके पुर्जों के आयात पर 100% तक का नया टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य चीन के प्रभुत्व वाले उद्योग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अमरीका की निर्भरता को कम करना है। व्हाइट हाउस के अनुसार ये निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से लिया गया है। नए उपायों में कुछ मानव रहित विमान प्रणालियों, विशेष रूप से 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले बड़े ड्रोन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील मानी जाने वाली क्षमताओं से लैस प्रणालियों पर 100% टैरिफ शामिल है। नई नीति के अंतर्गत छोटे ड्रोनों पर 25% की कम टैरिफ दर लागू होगी। चीन वर्तमान में वैश्विक ड्रोन बाजार में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2006 में स्थापित चीन के ड्रोन निर्माता DJI ने हाल के वर्षों में वैश्विक ड्रोन बाजार के 2/3 से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार कुरिल द्वीप समूह का दौरा किया। ये द्वीप समूह रूस के नियंत्रण में है और जापान भी इस पर अपना दावा करता है। उनके इस कदम का टोक्यो ने विरोध जताया है। एक रिपोर्ट।
2: जापान कुरिल द्वीप समूह के 4 सबसे दक्षिणी द्वीपों पर अपना अधिकार जताता है। इन द्वीपों को जापान उत्तरी क्षेत्र कहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत संघ ने इन द्वीपों को जापान से छीन लिया था। इस क्षेत्रीय विवाद के कारण दोनों देश युद्धकालीन शत्रुओं को समाप्त करने के लिए औपचारिक शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए दशकों से किए जा रहे प्रयासों से कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। हाल के वर्षों में मॉस्को ने कुरिल द्वीप समूह पर अपनी सैन्य उपस्थिति भी मजबूत की है, जो क्षेत्रीय मुद्दों पर उसके दृढ़ रवैये को दर्शाता है। जापान के विदेश मंत्री तोशी मत्सु मोतोगी ने कहा कि वे राष्ट्रपति पुतिन की युतोरूप यात्रा का कड़ा विरोध करते हैं, जिसे टोक्यो युतोराफू कहता है। वर्ष 2021 में जब तत्कालीन रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशोस्टीन ने युतोरूप का दौरा किया था, तब जापान ने भी विरोध दर्ज कराया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि वाशिंगटन का हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है।
3: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने सोशल

0: मीडिया पोस्ट में खुफिया विफलताओं के कारण इस रणनीतिक जलमार्ग पर अमेरिका द्वारा बार बार गलत अनुमान लगाने का आरोप लगाया। यह टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका का हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है और वह इसे बरकरार रखेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान के सैन्य ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह रणनीतिक जलमार्ग अवरुद्ध है और ईरान की शर्तें स्वीकार किए जाने तक इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: इंग्लैंड में लुइस शहर के पास एक यात्री ट्रेन के पटरी से उतर जाने से 20 लोग घायल हो गए। इनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रेन में लगभग 150 यात्री सवार थे और ये लंदन के विक्टोरिया स्टेशन से ईस्टबोर्न जा रही थी। सभी यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दमकल कर्मी, चिकित्सा दल, एम्बुलेंस सहित 3 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पश्चिमी यूरोप का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं ब्रिटेन में इस असामान्य गर्मी की पांचवी लहर आने की आशंका है, जिसे अब तक की सबसे भीषण गर्मी माना जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। ब्रिटेन इस स्तर की गर्मी से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। दुकानों और दफ्तरों के बाहर एयर कंडीशनिंग का उपयोग न के बराबर ही होता है। उधर जंगल की आग इस सप्ताह दक्षिणी इंग्लैंड के न्यू फॉरेस्ट में लगातार फैल रही है। इस वर्ष इंग्लैंड और वेल्स में 1000 से अधिक जंगल की आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। नेपाल के रोल्पा जिले में तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन में करीब 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग लापता हैं। ये घटना थ्वांग ग्रामीण नगरपालिका के कोटलबारा गांव में हुई, जो राजधानी काठमांडू से करीब 450 किलोमीटर पश्चिम में है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से 7 शव बरामद किए गए हैं। घटना में घायल 2 लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लापता लोगों में 2 बुजुर्ग महिलाएं और 3 बुजुर्ग पुरुष शामिल हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता की एलेना रायबकिना को सीधे सेटों में हराया। स्वियाटेक ने इस जीत के साथ इस सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। उधर पुरुष सिंगल्स में अमरीका के बेन शेल्टन ने मॉन्ट्रियल में अपने हम वतन ब्रेंडन नाकाशीमा को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ 5वीं वरीयता प्राप्त शेल्टन ने अपने करियर का दूसरा एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब अपने नाम किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बे सोलो न्यांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पहले भारत इसराइल हैकाथॉन में स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए दोनों देशों के युवाओं की उत्साहजनक भागीदारी। और कनाडा ओपन टेनिस में पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने महिला सिंगल्स और अमेरिका के बेन शेल्टन ने पुरुष सिंगल्स खिताब जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good morning, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the World News. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. External Affairs Minister S. Jayashankar and his Liberian counterpart Sara Besolo Nianti hold bilateral talks in New Delhi. First India-Israel hackathon evokes huge response from young innovators from both countries seeking to develop technology-driven solutions to challenge in healthcare and rehabilitation. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. American Ben Shelton wins men's singles title, defeating compatriot Brandon Nakashima. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप जुड़े हैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ। और फिलहाल आपको बता दूं कि ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आप अपनी पसंद की गीत सुन सकते हैं। सुनने का तरीका वही है, हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या ईमेल कीजिए। बता दूं कहां करना है। व्हाट्सएप नंबर है 9868867 यानी 9868867 या फिर आप हमें ईमेल कीजिए fmgoldair@delhi@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldair@delhi@gmail.com। ये दोनों तरीके हैं जिनसे आप हम तक पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास

पास बहुत सारे समझदार श्रोता भी हैं जिनके पास ऑलरेडी ये नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो मौजूद है, क्योंकि वो हमारे डेली रेगुलर लिसनर्स हैं। और अगर मैं बात करूं तो हमारे पास किन किन के संदेश पहुंच चुके हैं, चलिए सबसे पहले उन्हें शामिल कर लेती हूं उस गीत से पहले जो आज की फरमाइश में शामिल होने वाला है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश का हमें मैसेज मिला है और हमें लिखा है किसने लिखा है ये भाई, शोभा, यश, ओम प्रकाश और विठल कर्मा दिया, थानला जिला झाबुआ एमपी से हमें लिख रहे हैं। और ये मैसेज हमें मिला है पंकज मोहोड़ अमरावती से, सारी जानकारियां बहुत अच्छी लगी, इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स हमें लिखी हैं हमारे शो की, बहुत बहुत शुक्रिया। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और मजनू कटीला से हमें लिख रहे हैं, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का मैसेज, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताडे, आशीष मुहिरकर, पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर ने हमें नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से लिखा है। सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी हमें लिख रहे हैं, पद्मा टोकीज नेपा नगर से, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी ने हमें लिखा है, टोरोवाल नवाशहर पंजाब से, और संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे ने शाहजी नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से हमें मैसेज पहुंचाया। ममता मार्कंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किट्टू का हमें मैसेज मिला है, खंडवा एमपी से, बड़ा बम चौक से, और हमें लिखा है शबाना भारती, नवाब अहमद, अरहान अहमद, सुफियान नवाब बलीमारान से हमें लिख रहे हैं। साथ ही ये मैसेज मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा का हमें पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मिला है, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान और वारिया ताहिरा का मैसेज। साथ ही होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल का मैसेज, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल शिपा और ईशान और पूजा परिहार का हमें मैसेज मिला है। ये मैसेज मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना का हमें मिला है, जिला खरगोन सनावत से और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश शक्ताप का मैसेज। और ये मैसेज है जी होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खुरवाल, सचिन खुरवाल, अमन और दीपांशु खुरवाल का, और संजय डिंगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन, राधा नामदेव और दर्शन भाई का, दिग्दर्शन और कविता गौड़ के साथ मेरठ कैंट से हमें मैसेज मिला है। मोहम्मद सईद अम्मासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरे परिवार ने हमें ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से लिखा है। ये मैसेज हमें पहुंचा है उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा का नई दिल्ली से और प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन का ग्राम बाघामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से हमें मिला। सलीम अख्तर, रेशमा बेगम ने अलीगढ़ से लिखा है, इंदिरा नगर भवरपुर से हमें राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू, नेहा, जगदीश देवांगन का मैसेज पहुंचा और हमें लिखा है बहुत चालाकी से अपना नाम फिर से एक बार, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, अशरफ अली, संजय दिंगिया, सिराज मिथुन और सलीम अख्तर ने दिल्ली से। देखो चीटिंग किया ना आपने, ये सब मत करिए दोस्त, सिर्फ एक मैसेज अपने ईमेल से भेजिए। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ने हमें ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मैसेज भेजा है। महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रितेश और पूरे संघई परिवार का मैसेज पहुंचा परभणी से और ये हमें लिखा है अफरोज शेख, नेमुआ, सुपौल, बिहार से। पारुल सिंह, डॉक्टर विवेक वर्धन, डॉक्टर पारुल सिंह हमें लिख रही हैं मेरठ से। एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीब, हबीबा, पटियाला रोड, गंज ढुंडवाड़ा, उत्तर प्रदेश से। और ये मैसेज राजेंद्र कुमार सचदेवा का हमें भवानीगढ़ पंजाब से पहुंचा। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा ने हमें लिखा है चंडीगढ़ बिहारी कॉलोनी शाहदरा से और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशुरधान खुराना का मैसेज। और साथ ही सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, सुबोध चौरसिया और सलोनी चौरसिया का, मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से, फरुखाबाद से, बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित, वीर और अबीर चौरसिया, नवाबगंज कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया का मैसेज। और ये मैसेज हमें और भी पहुंचे, प्रदीप सलूजा का हमें मिला है कहां से, जनकपुरी से हमें इन्होंने मैसेज पहुंचाया है।

और ये मैसेज है गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डागरी से बाबू राम जयपाल का मैसेज। अब इससे पहले कि कुछ और मैसेजेस को शामिल करूं, मैं अब उस गीत को शामिल करती हूं जिसकी फरमाइश हमें भेजी है किसने सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर ने पुणे से, महाराष्ट्र से हमें ये लिख रहे हैं। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

0: आशा यूनिट बाल विवाह मुक्ति के लिए नालसा की पहल। अब हर जिले में मौजूद विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़िए, हेल्पलाइन नंबर 1500 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स और आपकी पसंद के गीत हम कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की, लेकिन आपके मैसेजेस जो हम तक पहुंच रहे हैं उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। हमें दिवाकर शिनोय ने मैंगलोर से मैसेज भेजा है और लिखा है, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत कमल पिंगावाला चौक से हमें लिख रहे हैं, कुरैया जालंधर से। और अनवर साबरी, शबनो साबरी, मुदस्सिर, मुजक्किर और जरीफ अंसारी का हमें मैसेज मिला है, दाऊद सराय सहारनपुर से। और राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ का हमें जैन मंदिर वाली गली कुरावली से मैसेज पहुंचा। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, पिट्टा बजाज का मैसेज, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा का मैसेज पहुंचा है। और इसके अलावा अभिजीत गवहानकर, राही, श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर और अर्जुन गवहानकर डुगू का मैसेज हमें पहुंचा है, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का मैसेज, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा का ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमें मिला। हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र नौखेलाल हमें लिख रहे हैं, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। और मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद कलीम का हमें नई बस्ती गंज डुंडवाड़ा से मैसेज पहुंचा है। और साथ ही हमारे पास शेरवानी स्कूल गंज डुंडवाड़ा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का मैसेज। और ये मैसेज हमें किया है सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, कुमारी संचिता वयाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत प्रणाली सानवी, हर्षता का मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से मैसेज। और संजय ढिंग्या, नमन ढिंग्या, पार ढिंग्या का हमें मैसेज पहुंचा है बागपत उत्तर प्रदेश से। और साथ ही ये मैसेज, बहुत सारे रिपीट मैसेजेस हैं तो कोशिश करिए कि आप हमें रिपीट मैसेज ना भेजें, वरना ढूंढती रह जाऊंगी उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ एक मैसेज किया है। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का हमें मैसेज मिला है, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार का हमें गांव फ्रांसी हिसार से मैसेज मिला, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज। और

इसके अलावा मोहम्मद यासीन अंजान, साहिमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत का गिरडीह झारखंड से मैसेज, शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्नव, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी, तृप्ति का हमें मैसेज, जिला नांदेड़, ये ताला महाराष्ट्र से मिला, सुनील पाठक, कमल यादव, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, सुचा सिंह पाठक का अनारकली बाजार जगराओं से, और राजकुमारी, अनुज, अंजलि, डॉक्टर पानुल अद्विक, अतर सिंह के साथ समयपुर दिल्ली से लिख रहे हैं। राजेंद्र जटोलिया, उषा, कृष्णा, पूजा, कोमल और आरव का मैसेज दिल्ली नांगलोई से, और हमें मिला है महेश अग्रवाल का बहादुरगढ़ से मैसेज, सीता राम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट का कॉलोनी रोहतक से मैसेज, और इससे पहले कि कुछ और मैसेजेस को शामिल करूं, ये गीत आप तक पहुंचाती हूं। और इस गीत की फरमाइश हमें लिखी है किसने, शोभा यश, ओम प्रकाश और विठल कर्मादिया ने, थांदला जिला झाबुआ एमपी से। ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: नालसा का जागृति यूनिट मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में कानूनी सहायता के लिए कॉल करें 1500 पर।
1: अब वक्त बहुत कम बचा है तो जल्दी से कुछ और मैसेजेस को भी शामिल कर लेती हूँ। राम नरेश चेक ने रेखा करण चेक अल्पेश और सृष्टि यादव रचना यादव का हमें मैसेज मिला है संगम विहार हनुमान मंदिर दिल्ली से। थोड़ा सा नामों को और ऊपर नीचे करके क्लियरली लिखेंगे तो पढ़ना आसान होगा। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण कपिल कुणाल का हमें मैसेज पहुंचा है और हमें लिखा है लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी ने रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से और आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमें ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर अंसारी मिराज जहां का मैसेज मधु किरण का हमें मैसेज मिला है कहां से ये नहीं लिखा आपने और बसंत अकेला का मैसेज हमें पहुंचा है अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद राजकुमार कुलदीप गांधी का और राजेश जैन बिट्टू जैन संजीव जैन गोटना जैन का हमें मैसेज मिला मुलापुर दाखा से और ये मैसेज हमें पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक का मिला भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव देवेंद्र भूषण संस्कृति पौरुष का व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से और प्रकाश गोगिया ने हमें लिखा है दिल्ली से झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीटा रजत मयंक और ये सभी परिवार हमें सुन रहा है। कमलेश मुकुल सचिन दीपांशु का हमें मैसेज मिला है दिल्ली से शिषपाल अकेला का हमें मैसेज मिला है गाजियाबाद से और दिलावर खान हसीना बानो अलीजा नायब और लड्डू का रघुवीर नगर से भगवान पाटिल मंगेश पाटिल सचिन महाराष्ट्र से हमें लिख रहे हैं और धनोरा विटाली से तहसील नांदुरा जिला बुलडाणा से हमें लिख रहे हैं। इसके अलावा जॉन डिकेस्ट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पर्ल और विलिस का हमें मैसेज मिला है जनकपुरी सहारनपुर से। बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन वक्त बहुत कम है दोस्त तो अब जल्दी से चाहती हूँ कि चलते चलते एक खूबसूरत गीत तक पहुंचा दूं। तो ये गीत राजेंद्र कुमार सचदेवा ने हमें भेजा है भवानीगढ़ पंजाब से। तो ये रहा खूबसूरत गीत आप सभी के लिए।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी।

0: संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति यादव और जसवी यादव का हमें मैसेज मिला है और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का हमें मैसेज पहुंचा है और इसके अलावा हमारे पास बक्सर बिहार से शफरुद्दीन अंसारी और साथ ही फातिमा खातून अंसारी, सुमित रमेश डुमराव बिहार से भी इनके दोस्त, बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज लिखा है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का हमें शांतिनगर सोनीपत से मैसेज मिला है और इसी के साथ दिल का मेल बॉक्स में मैं लेती हूँ इजाजत। फिर से मिलूंगी 11:10 पर, जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। फिलहाल समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है।

घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिसकर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगे। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने संयुक्त अरब अमीरात से भगोड़े ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया की वापसी सुनिश्चित कर ली है। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने के नीति में एक नया मील का पत्थर है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों का लगातार पीछा कर रही है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपल कोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं पहले प्रायोजित कार्यक्रम मेरा वजूद और उसके बाद आप सुनेंगे तस्वीर। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद
2: और मैं अदिति।
1: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
2: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?

अरूज़े कामयाबी पर कभी तो हिंदुस्तान होगा, रिहा सयाद के हाथों से अपना आशियां होगा, चखाएंगे मजा बर्बादी गुलशन का गुलरची को, बाहर आएंगे उस दिन जबकि अपना बागबान होगा। दोस्तों, आजादी के दीवाने शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब के इसी

0: रुतबे की बदौलत।
1: वो दिन भी आया जब हमारा देश बरसों की गुलामी से आजाद हो गया। दिन था 15 अगस्त 1947 और हमारी आजादी का वक्त था आधी रात को ठीक 12 बजे। बरसों की गुलामी के बाद आजादी की सांस और एक नया हिंदुस्तान, जिसके लिए ना जाने कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।
0: आजादी के बाद हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या थी इस देश को संभाल कर रखना, जो लोग शहीद हो गए उनकी कुर्बानी को जाया ना होने देना। इस बात को बखूबी समझते हुए हमारे देश के महान कर्णधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब,
1: श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे कर्मवीरों की दिन रात मेहनत के बदौलत हमारा देश आज पूरी दुनिया के सामने सिर उठाकर चलने की ताकत रखता है।

0: फूले फले।
1: कौन जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
2: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
3: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
4: आज जब हमारे देश का परचम पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है, तो फिर कभी कभी ऐसा क्यों लगने लगता है कि शायद देश का आजाद होना अभी बाकी है। आजादी के बाद से अब तक हमारे बाहर के दुश्मन तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन हद तो यह है कि आज हमारे देश में ही ऐसे कौन लोग पैदा हो गए हैं
3: जो हमारे हिंदुस्तान को कमजोर करके किसी बाहर वाले को खुश करना चाह रहे हैं। शायद ये वो लोग हैं जो आजादी का मतलब नहीं समझते, या फिर चंद पैसों या सत्ता के लालच में आकर इस आजादी का मूल समझना नहीं चाहते। वजह चाहे जो हो, लेकिन ऐसे लोगों की विचारधारा और उनके द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडा क्या हमारे विकसित भारत के लिए सही हैं?
4: बिल्कुल नहीं। ऐसी देश विरोधी ताकतों को तो हम क्या ही कहें, लेकिन उम्मीद तो हमें हमारे देश के उन नौजवान साथियों से लगानी चाहिए जिनके कंधों पर हमारे आने वाले कल की नींव टिकी है।
3: इसीलिए अब ये दारोमदार हमारे देश के उन नौजवानों के मजबूत कंधों पर है कि कोई भी दुश्मन हमारे देश को कमजोर न कर सके। और यकीनन हमारे देश के नौजवान
4: और हमारे आज के सिपा सालार इस बात को बखूबी समझते हैं कि दुश्मन चाहे घर का हो या बाहर का, देश कमजोर नहीं होना चाहिए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। मेरी

0: सारा दिन बस नाश्ता लंच और डिनर, सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आजादी के बारे में कहा था कि ये अनमोल है, इसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। और देश के 11वें राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था
1: कि बजाय ये सोचने के कि देश ने तुमको क्या दिया, अपने आप से ये पूछो कि तुमने देश को क्या दिया और क्या दे सकते हो। आज अगर हम बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आर्थिक विकास, डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे के मामले में ऐतिहासिक प्रगति की है।
2: आज भारत दुनिया की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। हाईवे, रेलवे और एयर पावर नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। UPI से होने वाले डिजिटल लेन देन में वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा बहुत बढ़ गया है। अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग ने दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।
1: और ये सब संभव हुआ है हमारे भारत की युवा शक्ति के सहयोग से। और जब तक भारत का युवा देश के साथ है, भला भारत का कोई क्या बिगाड़ सकता है, दुश्मन चाहे देश के अंदर का हो या बाहर का।
2: याद रहे कि भारत का नौजवान इतना नासमझ नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा उसको गुमराह कर सके।
3: देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों।

0: ताशे बजते हैं।
1: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
2: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
2: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
3: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
4: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
5: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
6: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
5: कैसे?
2: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
3: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
2: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
2: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
3: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
2: और अदिति को इजाजत दीजिए।
3: नमस्कार।

मैं हमेशा सोचती हूँ कि पक्षी एक ही जगह पर क्यों रहते हैं, जबकि वो पृथ्वी पर कहीं भी उड़ सकते हैं। आप भी ऐसा सोचते हैं ना? फिर खुद से ख्याल सवाल आता है कि खुद के बारे में भी तो सोचूं। मैं खुद भी तो यही कर सकती हूँ ना, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक ही जगह पर क्यों रहती हूँ? और जब ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में आता है तो मैं तो उड़ चलती हूँ लेकर अपना लगेज अपने साथ, और कहीं ना कहीं सैर पर जरूर निकल जाती हूँ। पर आप शायद ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो चलिए मन बनाइए, कहीं घूम आइए। और अगर अभी कहीं जाने का वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ तस्वीर के इस सफर में चल पड़िए, क्योंकि घर बैठे या जहाँ पर भी हैं आप, आपको हम एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, उस जगह पर जहां आप कभी आने वाले वक्त में जाने का प्लान कर सकते हैं या फिर कभी गए भी हो सकते हैं। तो चलिए आज जिस जगह पर मैं आपको लेकर जा रही हूं, देखते हैं कि उस जगह आप कभी गए हैं या नहीं। ये जगह है ओरछा, मध्य प्रदेश का ओरछा। बुंदेला काल की अद्भुत गाथाओं को समेटे हुए ओरछा एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के रूप में मजबूती से कायम है, जिसने बुंदेला वंश के शासकों की संस्कृति और गाथाओं को संजो कर रखा है। सरदार रुद्र प्रताप सिंह ने बेतवा नदी के किनारे एक भूखंड पर ओरछा की स्थापना की थी, और ये अद्भुत शहर आपको अपनी यात्रा के दौरान

मंत्र मुक्त कर देगा। तो एक बार यहाँ जाने का प्लान जरूर करिए, क्योंकि ये मित्रों और परिवार के साथ घूमने के लिए एक बेस्ट प्लेस है। ओरछा में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक स्थल हैं और मध्य प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से ये अच्छी तरह से कनेक्टेड है। क्या कुछ है यहाँ देखने को, करने को, रहने को, घूमने को, खरीदने को, सब कुछ बताऊंगी मैं, लेकिन रहिएगा मेरे साथ इस सफर में जिसे हम कहते हैं तस्वीर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। 11:27 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका पसंदीदा चैनल FM गोल्ड।

0: से मुक्ति पाएं, नालसा का साथ अपनाएं। नालसा की डॉन यूनिट से संबंधित जानकारी के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
2: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: तो दोस्तों, आज आप पर हम निकले हैं कहां पर, मध्य प्रदेश के ओरछा शहर की सैर में। तो वही देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। बेतवा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है ये। 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा स्थापित है और ये जगह राजपूत और मुगल वास्तुकला के अद्भुत संगम, अनूठी राम राजा लोक संस्कृति और समृद्ध बुंदेली परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप क्या क्या देख सकते हैं, अगर मैं कहूँ तो यहाँ एक राजा महल है जिसको आप देखने के लिए जा सकते हैं। ओरछा के राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 16वीं शताब्दी में राजमहल का निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि इस संरचना को पूरा करने का काम अंत में रुद्र प्रताप सिंह के उत्तराधिकारियों ने संभाला, जिनमें सबसे लोकप्रिय मधुकर शाह थे। ये एक वर्गाकार संरचना है जिसके दो भागों में तीन तरफ 5 मंजिलें और एक तरफ 4 मंजिलें हैं। निजी सभा कक्ष के दाई और 4 रानियों के शयन कक्ष हैं। सम्राट का कैबिन सामने की तरफ है। चतुर्भुज मंदिर के गर्भगृह के समान स्तर पर स्थित है। राजकक्ष की छत को जीवंत रंगों से खूबसूरती से सजाया गया है। महल की दीवारों पर रामायण के दृश्य और बुंदेला दरबार की शान को दर्शाने वाले कई चित्र लगे हैं। सुंदर पत्थरों की नक्काशीदार ग्रिल महल को एक भव्य शाही रूप देती है और कोणीय शाफ्ट कमरों में प्राकृतिक हवा और प्रकाश के निरंतर प्रवाह को बनाए रखता है। महल के कुछ हिस्सों को शीश महल नामक एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है, जो ओरछा के स्थलों का भ्रमण करने वालों के लिए ठहरने के लिए एक खुली जगह है। महल का आंतरिक भाग दर्पणों के टुकड़ों से सजाया गया है और इसमें भव्य शाही आवास भी शामिल है। ये अद्भुत वास्तुकलाएं ओरछा किले के परिसर के भीतर शान से खड़ी हैं और यहाँ आने वालों का दिल जीत लेती हैं। तो आपको एक बार जरूर यहाँ पर जाना चाहिए। ओरछा में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास बुंदेला वंश से जुड़ा है और ये मंदिर एक वर्गाकार संरचना है जिसे राजा वीर सिंह देव ने 1622 में बनवाया था। मंदिर की बाहरी दीवारों पर खिड़की जैसी नक्काशी है। प्रांगण चारों तरफ से दीवारों से घिरा है और इसमें खुली गैलरियां हैं। प्रांगण के केंद्र में अष्टकोणीय गर्भगृह के सामने एक हॉल स्थित है। गैलरी और गुंबदाकार छतों पर बने लक्ष्मी नारायण मंदिर की सबसे कलात्मक विशेषता है यहाँ के चित्र। मंदिर की दीवारों के ऊपर हिस्से पर कुछ सुंदर चित्र बने हुए हैं और इनमें कुछ रामायण के प्रसंग और भगवान विष्णु के 8वें अवतार लक्ष्मी नारायण के चित्रण हैं, जबकि कुछ में पौराणिक युद्ध संबंधी और सांसारिक दृश्य दर्शाए गए हैं। यहाँ एक चुंगी चिड़िया का भी चित्र है जो आप देख सकते हैं। एक विशाल काय पक्षी था जो अपने पंजों में हाथी को उठाकर बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता था। तो ये सब कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। इसके अलावा ओरछा में है छतरियां, जहां पर आप जा सकते हैं। दक्षिण में बेतवा नदी के दाहिने किनारे पर बुंदेला राजाओं और उनके परिवारों के बाकी सदस्यों को समर्पित 15 स्मारक हैं, जिन चबूतरों पर छतरियां बनी हैं और गर्भगृह दोनों वर्गाकार हैं। पहली छतरी में मधुकर

शाह और उनकी पत्नी की संगमरमर की प्रतिमा है, जिसके ऊपर एक चित्रित छत्र है। नदी के किनारे से दिखाई देने वाली इस श्रृंखला की अंतिम छतरी बिल्कुल वर्गाकार है, जो वीर सिंह देव को समर्पित है। एक चतुर्भुज मंदिर है जहां आप जा सकते हैं। ओरछा की अन्य इमारतों की तुलना में इस मंदिर की वास्तुकला अनूठी है। मंदिर का गुंबद उभरा हुआ नहीं बल्कि मस्जिद के गुंबद की तरह चिकना है। मंदिर का प्रांगण खुला है और इसमें बुंदेला समुदाय की छतरियों जैसी मीनारें बनी है। मंदिर के अंदर भुजाओं वाले चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा है, जो उस एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है और प्रतिमा को भव्य रूप देती है। एक और जगह है जहां आप जा सकते हैं, जिसे जहांगीर महल के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में बुंदेला शासक वीर सिंह देव द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण सम्राट जहांगीर की ओरछा की पहली यात्रा के सम्मान में किया गया था। महल के प्रवेश द्वार पर पारंपरिक और सुंदर गेट है। महल की पूर्व मुखी सामने की दीवार फिरोजी टाइलों से सजी है। प्रवेश द्वार पर दो पत्थर के हाथी घंटी बजाकर आपका स्वागत करते हैं, जो उस समय के राजा के प्रवेश का प्रतीक है। खिड़कियों के ब्रैकेट जैन वास्तुकला के अनुरूप लहरदार शैली में बने हैं। इसे हल्के रंग की सिरेमिक टाइलों से खूबसूरती से सजाया हुआ है और इस तीन मंजिला इमारत में कुछ अद्भुत मूर्तियां, सुंदर बालकनीज, छतरियां और खूबसूरती से नक्काशीदार गुंबद भी हैं, जो इसकी स्थापत्य कला की भव्यता को दर्शाते हैं। एक और जगह है जो ओरछा में बहुत खास है, आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए, जिसे श्री राजा राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। राम राजा मंदिर देश का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम की पूजा देवता के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में की जाती है। इसे ओरछा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ओरछा स्थित श्री राम राजा मंदिर को सफेद, गुलाबी और पीले रंगों से खूबसूरती से सजाया गया है। मंदिर से जुड़ी कथा इसकी दीवारों की तरह ही जीवंत है। ओरछा के शासक मधुकर शाह जू देव भगवान कृष्ण के अनुयायी थे, जबकि उनकी पत्नी भगवान राम की अनुयायी थी। एक बार रानी ने राजा के साथ ब्रज मथुरा जाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो अयोध्या जाना चाहती थी। राजा ने जिद की और उन्हें अपने साथ आने का निमंत्रण दिया, लेकिन रानी ने इनकार कर दिया। राजा इससे नाराज हो गए और उन्हें निर्देश दिया कि वो तभी वापस लौटें जब वो अपने साथ भगवान राम को लेकर आए। जब रानी अयोध्या पहुंची तो उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना शुरू की, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। आखिरकार हताश होकर उन्होंने आधी रात में सरयू में छलांग लगा दी। रानी की प्रार्थना और भक्ति को देखते हुए भगवान ने उनकी गोद में बालक के रूप में खुद को स्थापित किया, बालक का रूप धारण किया और उनकी गोद में आकर वो विराजमान हुए। प्रस्थान करने से पहले भगवान राम ने तीन शर्तें रखी कि मैं केवल पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करूंगा ताकि ऋषियों के साथ ओरछा पहुंच सकूं। दूसरी, ओरछा पहुंचने पर मैं ओरछा का राजा बनूंगा। और तीसरी, जिस पहले स्थान पर तुम मुझे बिठाओगी वही मेरा अंतिम निवास स्थान होगा। भगवान ने ये निर्देश दिए। जब राजा को पता चला कि रानी भगवान राम के साथ ओरछा लौट रही हैं, तो उन्होंने मंदिर का निर्माण काम शुरू करवा दिया। लंबी यात्रा से लौटी रानी अपने महल में भगवान राम के साथ बैठे हुए रात्रि विश्राम के लिए अपने कमरे में जाने का फैसला कर ही रही थी, लेकिन भगवान राम की इच्छा के अनुसार उन्होंने जिस स्थान पर सबसे पहले रानी ने उन्हें स्थापित किया, जहां विश्राम किया, उन्होंने उसी जगह पर अपना जो निवास स्थान था वो बनवा लिया और रानी के महल का नाम आज तक रामराज मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्हें रानी ने लाकर वहीं पर स्थापित किया था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं ओरछा में देखने के लिए, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको, जैसे कि यहाँ का बर्ड सेंचुरी है और भी कुछ है जो आप जान सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस गीत को आप एंजॉय कीजिए, उसके बाद आपको कुछ बताऊंगी।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: NCRPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: नमस्कार, 45 मिनट और 39 सेकंड हो चुके हैं। आप आपकी दोस्त आज रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ तस्वीर का ही सफर, जिसमें आज हम और आप यात्रा कर रहे हैं ओरछा की। जी हाँ, ये जो जगह है ओरछा, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का खास टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप बहुत कुछ देखने के लिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ओरछा पक्षी अभयारण्य है, जिसे कह सकते हैं बर्ड सेंचुरी है, और ये जो सेंचुरी है प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम दृश्यों से परिपूर्ण है। 46 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और अपनी समृद्ध जीव जंतुओं, बेतवा नदी और कुछ दुर्लभ प्रजातियों के पौधों की उपलब्धता की वजह से खास महत्व रखता है। तो आपको यहाँ पर एक बार जरूर जाना चाहिए। ये बर्ड सेंचुरी सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत जगह है ओरछा आने वालों के लिए। आप चाहें तो बेतवा नदी में राफ्टिंग करने के लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं बाल विकास निगम पर्यटकों के लिए बेतवा नदी में रिवर राफ्टिंग का आयोजन करता है और राफ्टिंग खूबसूरत कंचन घाट से शुरू होकर शिव घाट पर समाप्त होती है। राफ्टिंग उन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है जो रोमांच के साथ साथ ओरछा की सैर करना चाहते हैं। राफ्टिंग के दौरान आपको छतरियों की कतार देखने को मिलेगी, जो ऐतिहासिक भव्यता का अद्भुत नजारा पेश करते हुए राफ्टिंग का रोमांच जो है वो बहुत ही बढ़ा देती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहां आपको कब जाना चाहिए ओरछा में, तो अभी नहीं, इस गीत के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप

दोस्तों, मानसून का मौसम ओरछा घूमने और इसकी स्थापत्य कला की भव्यता का अनुभव करने का सबसे अच्छा समय है। आसमान में बादल और धुंध भरा वातावरण मंदिरों और महलों के दर्शन के अनुभव को और भी सुखद बना देता है। लोग सर्दियों में भी इस शहर की यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए गर्मियों के चरम मौसम में ओरछा की यात्रा से बचना ही सही है। अगर आप पूछें कि भाई यहाँ पहुंचना कैसे है, तो बता दूं कि बाय एयर यानी हवाई मार्ग से अगर आप यहाँ जाना चाहें तो ओरछा से निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर हवाई अड्डा है, जो 142 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली, मुंबई और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, जो 440 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहें तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में पुनर्विकसित ओरछा रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से सजा है, जिससे यात्रियों को आरामदायक और सुखद अनुभव मिल सकता है। ये स्टेशन प्रसिद्ध राम राजा मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे ये पर्यटकों के लिए एक सुविधाजनक आगमन स्थल बन जाता है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित झांसी जंक्शन निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन है और ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, इंदौर और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है और यहां पूरे सप्ताह नियमित ट्रेन सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। बाय रोड अगर आप जाना चाहें तो सबसे करीबी बस स्टैंड है झांसी में। ओरछा झांसी और खजुराहो के बीच स्थित है और राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा है। झांसी से ओरछा के लिए नियमित बस और टैक्सी सेवा आसानी से आपको मिल जाएगी, तो आप जिस तरीके से भी जाना चाहें पहुंच जाइए। हाँ, अगर बात करूं यहाँ की, तो भाई यहाँ का जो लोक जीवन और खान पान है वो बुंदेली जनजीवन से प्रभावित है। ओरछा के लोकगीत, आला गायन और स्थानीय त्योहार बुंदेलखंड की मूल संस्कृति को जीवित रखते हैं। खान पान यहाँ की पारंपरिक बुंदेली थाली, कीस, पोहा और स्थानीय मिठाइयां बेहद लोकप्रिय हैं, तो आपको इनको जरूर टेस्ट करना चाहिए। और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो ओरछा में मुख्य रूप से पारंपरिक हस्तशिल्प डोकरा, मेटल क्राफ्ट जो कि धातु से बनी हुई कलाकृतियां हैं, लघु चित्रकलाएं, हैंडमेड पेपर पेंटिंग्स और चंदेरी या रेशमी साड़ियां आप यहां से खरीद सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय बाजारों से बुंदेलखंडी स्मृति चिन्ह यानी

आप लेकर आ सकते हैं। हस्तनिर्मित बैग और सजावट का सामान भी यहाँ पर बेहद लोकप्रिय है जो आप खरीद सकते हैं। ओरछा वैसे तो एक छोटा सा शहर है लेकिन यहाँ खरीदारी के लिए बहुत कुछ है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में डोकरा की धातु की कलाकृतियां, लोहे की बनी वस्तुएं, शोपीस, स्मृति चिन्ह, रंगीन स्कार्फ, डिजाइनर हस्तनिर्मित शर्ट और कुर्तियां, जूतियां, जूते जैसे हस्तशिल्प सामग्रियां, टोपियां, मास्क, की रिंग्स, बुंदेला कलाकृतियों की प्रतिकृतियां, वॉल हैंगिंग, मिट्टी के बर्तन, लघु चित्रकलाएं, ये सभी चीजें अच्छे रेट्स पर आपको मिल जाती हैं। ये सभी चीजें छोटी छोटी दुकानों में आसानी से मिलती हैं जहां आकर्षक स्मृति चिन्ह भी बेचे जाते हैं। अगर इनमें से आपका मन ना भरे तो खजुराहो का बाजार आपके लिए सबसे अच्छी जगह है जहां आपको और भी ज्यादा अलग अलग वेरायटी यहां पर मिल सकती है। ओरछा सदर बाजार में बिकने वाली रेशमी साड़ियों या चंदेरी रेशमी के लिए भी प्रसिद्ध है। ये असली होती हैं और खरीदने लायक होती हैं, तो आप यहां से इन्हें भी खरीद सकते हैं। वही बहुत कुछ है वैसे तो ओरछा के बारे में जानने को, लेकिन अब क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा है तो चलते चलते एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाती हूं और फिर आगे क्या है जरूर आपको बताऊंगी। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

और इसी के साथ मैं आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ आज के लिए आपसे विदा, लेकिन फिर किसी रोज किसी और खूबसूरत सफर में जरूर होगी मुलाकात। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज के लिए विदा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या

0: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनर्स्थापित करना तथा क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के सत्र में लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 77,754 पर और निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,323 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आंगन।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम घर आंगन, जहां हम बात करेंगे जिंदगी के अनुभवों की, बदलते समय की और उन छोटी छोटी बातों की जो हमारे जीवन में खुशियां और रंग भरती हैं। और आज के सफर में मैं यानी प्रतिभा और
2: रश्मि कुकरेती आपके साथ रहेंगे।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार
2: भरा नमस्कार जी।
1: और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। और रश्मि जी, देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम श्रोता जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है और आज का दिन समर्पित होता है हमारे बुजुर्गों को, और हम बढ़ाते हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर
2: जी, है ना? और एक कदम बुजुर्गों की ओर जो ये कार्यक्रम है, इसमें हम बात करेंगे परंपरा से लेकर तकनीक तक की, और खान पान से लेकर आर्थिक सुरक्षा तक की, और उनके शौकों की, जो उम्र के हर पड़ाव पर प्रतिभा जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं
1: जी। तो श्रोताओं, हमारे साथ बने रहिए कार्यक्रम घर आंगन में। और देखिए रश्मि जी, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ, है ना
2: जी।
1: तो अपने श्रोताओं से प्रश्न पूछ लेते हैं आज का।
2: तो क्या है प्रतिभा आज का प्रश्न?
1: आज का प्रश्न ये है कि बुजुर्गों के

अनुभव और युवाओं की ऊर्जा, ये दोनों मिलकर देश को बेहतर कैसे बना सकते हैं। और हम ये भी बता देते हैं प्रतिभा कि ये जो जवाब है वो कहाँ लिखकर भेजेंगे, यानी हमारी ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com। और इसके अलावा मैं एक और आईडी बता रही हूँ आपको, fmgoldaardelhi@gmail.com, यानी कि fmgoldga@gmail.com और fmgoldaardelhi@gmail.com। इन दोनों ईमेल आईडीज पर हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और बात की है तुमने प्रतिभा देश की, तो सुन लेते हैं देश की ओर चलता हुआ ये गीत।

0: गोदान फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को। और रश्मि जी, देखिए भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है।
1: जी
0: अलग अलग राज्यों की अपनी परंपराएं, त्योहार और मान्यताएं हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाती है।
1: यानी प्रतिभा, आज आप जो बात करने जा रही हैं वो है तमिलनाडु के एक ऐसा ही जो खूबसूरत पर्व है, आदिपुरम।
0: जी, और जो कि तमिल महीने आदि में मनाया जाने वाला ये जो ये पर्व है वो देवी आंदाल को समर्पित है। और इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्त श्रद्धा के साथ उत्सव में शामिल होते हैं।
1: जी, और जो देवी अंदाल है उनकी कहानी कुछ इस प्रकार है प्रतिभा,
0: जी
1: कि उन्हें आदिपुरम की जो कहानी है वो श्री विल्लीपुथुर शहर में जन्मी और देवी अंदाल के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। अंदाल, जिनको गोदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, वो कहते हैं कि मंदिर के उद्यान में एक शिशु के रूप में वहां के पुजारी को मिली और उन्होंने उसे प्यार से पाला पोसा और अपनी बेटी की तरह रखा। बाद में यही आंदल बड़ी होकर भगवान विष्णु की समर्पित भक्त बनी और जो मंदिर श्री रंगम के भगवान रंगनाथ जी, उनकी वो बहुत बड़ी भक्त हुई। और किंवदंती है कि वो जो है रोज उनके लिए मालाएं बुनती ताजे फूलों की और पूर्ण प्रेम और भक्ति के साथ समर्पित करती। और जो उनकी कविताएं हैं जिन्हें की तिरुअप्पवई और नचियार तिरुमोझी के नाम से जाना जाता है, उसमें जो भगवान विष्णु से मिलन की अपनी तीव्र इच्छा व्यक्त करती। तो ये लंबा चलने वाला उत्सव है और बड़े उत्साह से मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा कि लंबा चलता है, 10 दिनों तक चलता है ये
1: जी
0: उत्सव। और इसका जो समापन होता है वो मुख्य पूरम के दिन होता है। और उत्सव के अंतिम दिन भगवान रंगनाथ स्वामी और देवी आंदाल का दिव्य विवाह अत्यंत धूमधाम से कराया जाता है। और रश्मि जी जानती हैं कि मंदिर में देवी को कांच की हरी चूड़ियां अर्पित की जाती हैं और बाद में उन्हीं चूड़ियों को प्रसाद के रूप में भक्तों को, विशेषकर महिलाओं को, वो बांटी जाती हैं।
1: और हरी चूड़ियां जो हैं वो इंगित करती हैं सावन की ओर।
0: हाँ जी,
1: और हम फिर वापस चलते हैं उसी गीत।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म जुर्माना में, और रश्मि जी देखिए मेल आने शुरू हो गए हैं
1: जी,
0: है ना। और सबसे पहले हमारे पास मेल आया है नवीन भाटिया जी का। वो कहते हैं कि बुजुर्गों के अनुभव कभी पुराने और गलत नहीं हो सकते, दोनों को एक दूसरे की बात सुनकर समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है।
1: तो जी, और अफरोज शेख कह रहे हैं कि बुजुर्ग अगर कोई काम करने की सलाह दे रहे हैं तो उनको सही मानते हुए और सोच समझकर ही काम करना चाहिए।
0: और एक और मेल आया है चरणदास जी का हिसार से। वो कहते हैं कि बुजुर्गों ने लंबा समय देखा है और समय ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, अपनी गलतियों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उनसे पूछकर काम करेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी।
1: बिल्कुल सही। और गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं नागलोई से, आप कह रही हैं राम राम, हमारी भी राम राम आपको, और कहते हैं कि बुजुर्ग जो है, बुजुर्गों से बच्चे अपने मन की बात अगर कहने लग जाएं तो बहुत तरक्की हो जाएगी, यानी बिगड़े हुए काम भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भाई बड़ों ने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उनका तजुर्बा जो है जिंदगी भर काम आता है, तो उनका तजुर्बा और जो युवा है उनका उनकी ऊर्जा अगर मिल जाए, प्रतिभा, तो हमें लगता है हमारा देश काफी आगे बढ़ेगा।
0: बहुत ही सही बात है ये। और देखिए मेल हम पढ़ते रहेंगे और हम श्रोताओं से ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने जवाब हमें fmgoldga@gmail.com पर भेजते रहिए। तो रश्मि जी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: और देखिए स्वस्थ रहने के लिए सही खान पान बहुत जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं, और जब मौसम हो बारिश का तो थोड़ी ज्यादा सावधानी तो बनती है, क्यों?
1: बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: और देखिए बारिश का मौसम आते ही मन करता है गरम गरम चाय पकौड़े मिले और तरह तरह के स्वादिष्ट खाने का मन सभी का ही करने लगता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस मौसम में खान पान को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है।
1: बिल्कुल, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भोजन हो वो ताजा हो, अच्छी तरह पका हुआ हो, खुले हुए रखे अगर भोजन हो तो वो ना खाएं, और बहुत ज्यादा तले भुने खाने से भी प्रतिभा बचना ही चाहिए, है ना, क्योंकि उम्र के साथ हम सभी का जो पाचन तंत्र होता है बुजुर्गों का ही क्या कमजोर हो जाता है, तो ऐसे में जो गरिष्ठ भोजन होता है स्वादिष्ट तो जरूर लगता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और देखिए मौसम जो बारिश का मौसम होता है थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, प्यास कम लगने लगती है, लेकिन शरीर को तो पर्याप्त पानी की जरूरत होती ही है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेते रहें, और सबसे जरूरी बात कि बारिश के मौसम में जो पानी है उसको उबालकर पिएं, क्योंकि बारिश में पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: हाँ, और अगर किसी वरिष्ठ नागरिक को पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या है तो भाई डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खान पान रखे, और जो परिवार में प्रतिभा युवा सदस्य रहते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो बुजुर्ग हैं उन्होंने समय पर खाना खाया या नहीं, पानी पूरा पी रहे हैं, उनकी दवाइयों का भी ध्यान रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल, देखिए श्रोताओं भाई आखिर सेहत की देखभाल बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से ही होती है।

0: सुराग, अभी इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को
1: जी।
0: और रश्मि जी, अब बात करते हैं सिल्वर इकोनॉमी की।
2: जी बिल्कुल, और सिल्वर इकोनॉमी का अर्थ है प्रतिभा, जो बुजुर्ग हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली आर्थिक गतिविधियां
0: जी,
2: जैसे वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, जो कि हमारे बुजुर्गों की जो रोज की देख जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें। तो क्योंकि भारत में तेजी से बढ़ती हुई जो बुजुर्ग आबादी को देखते हुए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से ये बहुत जरूरी है, है ना?
0: बिल्कुल। और देखिए, बुजुर्गों के लिए तकनीक, स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़े नए आइडियाज को वित्तीय सहायता देना, मतलब जो इस सिल्वर इकोनॉमी का जो उद्देश्य है उसकी जो रणनीतियां हैं उसमें ये आता है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर ब्याज दर वाली पेंशन योजनाएं और सुरक्षित निवेश विकल्प लाना, साथ ही साथ बुजुर्गों की सुविधा के लिए धार्मिक सांस्कृतिक जो टूरिज्म है ना, जहां बुजुर्ग जनरली देखिए जाना चाहते हैं, है ना
2: जी, बिल्कुल,
0: उनके लिए आरामदायक पर्यटन पैकेजों का विकास करना, ये सब आता है
2: जी। क्योंकि देखिए, जब बुजुर्ग यात्रा करते हैं तो उनकी जरूरतें अलग तरह की होती हैं। कई बार ऐसा होता है घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, उनको व्हील चेयर्स की आवश्यकता रहती है, मेडिसिन की आवश्यकता रहती है और हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार से जो उनकी उनकी जो पर्यटन की सुविधाएं उनको जो दी जाती हैं, उस प्रकार के स्टार्टअप शुरू करना, ये भी बिल्कुल सिल्वर इकोनॉमी से जुड़े हुई बातें हैं। इसके अलावा जैसे बुजुर्ग होते हैं प्रतिभा, उनके लिए दवाएं, अस्पताल और घर में दी जाने वाली जो चिकित्सा है ना, वो देखभाल, जब उससे जुड़े स्टार्टअप आते हैं तो ये एक तरह से सिल्वर इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टार्टअप हैं। तो ये भी बढ़ाने की जरूरत है, इसमें भी बहुत अवसर हैं।
0: और साथ ही साथ देखिए, पेंशन बीमा और निवेश योजनाओं को भी उम्र दराज लोगों के लिए जो जरूरी होती हैं उनका भी इस इकोनॉमी जो सिल्वर इकोनॉमी है उसके अंदर उसका ध्यान रखा जाए।

0: पता है
1: जी, है ना? और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए विशेष सुरक्षित आवास जिन्हें कहते हैं ना, कि रियल एस्टेट में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना सीनियर सिटीजन लिविंग होम्स होते हैं जहाँ की विशेषकर उन्हीं की जो आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इनका पूरी जो है नियोजन किया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस प्रकार की जो सिल्वर इकोनॉमी है जो भारत में अर्थ और अर्थ का दायरा और उसका बहुत महत्व है, जिससे कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो समाज में आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं और सक्रिय जीवन भी जी सकते हैं।
0: बिल्कुल।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म जीवन मृत्यु में। और रश्मि जी देखिए मेल हमारे पास आ गए हैं, तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ महेश अग्रवाल जी का जो हरियाणा से लिख रहे हैं। वो हमको नमस्कार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बुजुर्गों का साथ बहुत जरूरी है हर काम में। उनका तजुर्बा होता है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा है, समझा है, परखा है। उनकी परख कभी भी व्यर्थ नहीं गई और उनका जो मार्गदर्शन होता है वो बहुत जरूरी है अगर आपको कामयाब होना है। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं
1: जी। और शांतिनगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कह रहे हैं किताबों से अच्छा ज्ञान होता है और अनुभव का ज्ञान अनुभव का ही ज्ञान होता है। हमारे बुजुर्गों के पास होता है और क्योंकि जो समझ और समय जब एक साथ होते हैं तो सफलता जरूर मिलती है।
0: और देखिए डी राजेश्वर राव जी कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं वो लिविंग ब्रिज की तरह होते हैं, हमारे परिवार, हमारे इतिहास, हमारे संस्कार और हमारी जो नेटिव लैंग्वेज, जो हमारी भाषा होती है और वो हमारी जो रूट्स होती हैं, कल्चरल रूट्स, उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरण होती है।
1: जी हम तो ये कहेंगे ना कि बुजुर्ग दिशा दिखाएं और युवा जो है उस दिशा में गति दें तो देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। और एक और मेल आ गई है हमारे साथ, आप हैं सुरभि, मयूर विहार से हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी सी एक बात कही है, कहे भाई बुजुर्ग कहेंगे हमारे जमाने में ऐसा होता था और युवा कहेंगे दादाजी हम इसका ऐप बना देते हैं। तो जब इस प्रकार की कुछ विचारधारा जुड़ेगी ना तो भाई क्या बात होगी। और एक और बात उन्होंने कही है कि जो बुजुर्ग हैं वो अनुभव की गाड़ी हैं और युवा एक्सप्रेस ट्रेन हैं, जब दोनों साथ चलेंगे तो देश की यात्रा जो है और भी तेज होगी और रास्ता भी सही रहेगा।
0: और देखिए मतलब जब ये दोनों गाड़ियां मिलेंगी तो जीवन का सफर भी बहुत सुहाना होगा, है ना। और तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में
1: जी। और जैसा कि विचार था तो नई पीढ़ी के साथ कदम ताल मिलाना बहुत जरूरी है, दोनों जो हमारी पुरानी पीढ़ी है और जो नई पीढ़ी है, तो ऐसा ही कुछ विचार लेकर हम बात करते हैं।
0: हाँ देखिए आज की दुनिया में स्वस्थ और सक्रिय रहने के साथ साथ बदलती दुनिया से जुड़े रहना भी तो जरूरी है, जैसा कि हम अभी बात कर ही रहे थे। और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं रश्मि जी, वो इसमें किसी से भी पीछे नहीं है।
1: आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, जो काम कभी चिट्ठी लिखकर या बैंक की लंबी कतार में लगकर किए जाते थे उनमें से कई काम ऐसे हैं जो अब तो बैठे बैठे मोबाइल पर कुछ मिनटों में हो जाते हैं और हमारे बुजुर्ग भी इस बदलाव के साथ कदम ताल कर रहे हैं
0: जी। और देखिए वरिष्ठ नागरिक आज स्मार्टफोन चला रहे हैं, वीडियो कॉल के जरिए दूर बैठे परिवार से जुड़ रहे हैं और ऑनलाइन जानकारी लेते हैं आज हमारे बुजुर्ग, और साथ ही साथ जो डिजिटल सुविधाएं हैं उनका भी इस्तेमाल करना सीख गए हैं।
1: वही कभी कभी तकनीक थोड़ी मुश्किल जरूर लग सकती है, ऐसे में जो नई पीढ़ी है उसका फर्ज है कि वो धैर्य के साथ बुजुर्गों की मदद करें, क्योंकि ये रिश्ता जो है ना ये एक तरफा रख नहीं है, आप उसी पेड़ के फल हैं भाई जो बूढ़ा हो चुका है।
0: जी बिल्कुल। और देखिए युवा पीढ़ी तकनीक सिखा सकती है तो वरिष्ठ नागरिक अपने अनुभव और जीवन की समझ को साझा कर सकते हैं। वही आखिर नई और पुरानी पीढ़ी का साथ ही तो परिवार को मजबूत बनाता है।
1: और ये कदम ताल सिर्फ तकनीक सीखने और सिखाने का नहीं है भाई, दिल से दिल मिलना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, समझाना चाहिए, जहां जरूरत हो एक दूसरे की भावनाओं को समझे, जो आज हमारे बुजुर्ग और युवक भी कर रहे हैं और भी करें तो कितनी अच्छी बात हो।

0: मेरा गांव मेरा देश। अभी इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को। और रश्मि जी
1: जी बिल्कुल
0: है ना, देखिए जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है जब व्यक्ति थक कर बैठ जाता है ना, यानी जब वृद्धावस्था आ जाती है, तब एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो कि है आर्थिक सुरक्षा।
1: भाई देखिए, समय के साथ जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदलती हैं, काम की व्यस्तता भी कम होती है, लेकिन जो खर्ची है, जरूरतें हैं, वो थोड़ा थोड़ा बनी ही रहती हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है प्रतिभा की आर्थिक सुरक्षा हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
0: बिल्कुल, देखिए अपनी पेंशन, बचत और नियमित खर्चों का ध्यान रखना जरूरी, दस्तावेज

0: चीजों को सुरक्षित रखना और भविष्य के खर्चों की योजना बनाना ऐसे में बहुत उपयोगी हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है ना।
1: जी,
0: और
1: और इसमें पहले ही हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या निवेश करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो आर्थिक फैसले होते हैं उसमें जल्दबाजी नहीं होनी
0: जी
1: चाहिए। बिना पूरी जानकारी के किसी भी तरह के निवेश में अपना पैसा लगाने से बचना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात जो बार बार हम FM गोल्ड चैनल से कहते हैं कि अनजान लोगों के साथ बैंक की जानकारी और OTP और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी भाई कभी भी साझा ना करें।
0: बिल्कुल। और देखिए, किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले परिवारजन या किसी जो वित्तीय सलाहकार होते हैं उनसे सलाह लें, और परिवार के सदस्यों को भी चाहिए कि वरिष्ठ नागरिकों के आर्थिक मामलों में उनका सहयोग करें वो, है ना, और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है। मतलब जब अपनों का साथ मिलता है तो बुजुर्गों को भी बहुत अच्छा लगता है
1: जी। और आर्थिक सुरक्षा जब होती है ना प्रतिभा, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है ना। एक विश्वास होता है कि हाँ, कोई भी अगर समस्या आएगी तो मेरे पास उतना धन है, उतने मैं मजबूत हूँ आर्थिक तरीके से कि मैं भविष्य के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो आर्थिक सुरक्षा भविष्य को सुरक्षित तो करती ही है, लेकिन जिंदगी सिर्फ भविष्य की चिंता करने का नाम नहीं है। जिंदगी में कुछ ऐसा भी होना चाहिए, मतलब आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल जैसा, जो हमें खुशी भी दे, व्यस्त रखे, हर दिन का इंतजार भी करवाए, अपने कार्यक्रम जो है एक कदम बुजुर्गों की और ये सुनने का और गीत संगीत के साथ जुड़ने का।
0: बिल्कुल।

0: रोटी कपड़ा और मकान, अभी आप इस फिल्म में सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और देखिए रश्मि जी, एक मेल है हमारे पास उग्रसेन यादव जी का। वो कहते हैं कि बात बुजुर्गों की हो तो मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि जो नई जनरेशन है, अगर वो अपने बुजुर्गों के साथ रोज कुछ घंटे, एक घंटा अपने बुजुर्गों के साथ बैठे तो उनके अनुभव को सुनकर धीरे धीरे जो हमारी युवा जो जनरेशन है, जो हमारे जो युवक हैं, उनका हृदय परिवर्तन होने लगेगा, उनमें संस्कार आएंगे और जो युवा हैं वो बुजुर्गों की तकलीफों को करीब से जान पाएंगे, उनको समझेंगे और इससे दोनों का ही अनुभव बढ़ेगा और बुजुर्गों को आपसे मदद मिलेगी।
1: जी
0: तो देखिए कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने।
1: जी, और उमेश कुमार खयाला से कह रहे हैं कि हमें अपने बड़ों के कहने पर चलना चाहिए और जो बुजुर्गों के साथ अगर आप काम करेंगे, उनके अनुभव से सीखेंगे तो भाई वो कहते हैं लाभ ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा शीशपाल वर्धन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। वो कहते हैं कि मैं 75 साल का हूं लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल यंग मानता हूं। जी, और आप हैं शीशपाल अकेला जी, लेकिन आप अकेले कहां हैं, आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ हैं, एक कदम बुजुर्गों की ओर इस कार्यक्रम के साथ हैं जो आप ही के लिए खासकर बनाया गया है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल हम तो कहेंगे कि अगर आप सेहतमंद हैं, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं और रोज अगर आप जो है एक्टिव हैं तो फिर हम कहेंगे बीमारियों से भी दूर रहेंगे, अपने आप को बिल्कुल एकदम जवान महसूस करेंगे। और हम ये कहेंगे जो युवा हैं प्रतिभा उन तो वो तो अगर तकनीक सिखाएं बुजुर्गों को, और युवा जो है बुजुर्गों से धैर्य सीखें
0: जी,
1: क्योंकि युवाओं को वाईफाई चाहिए और बुजुर्गों को उनका साथ चाहिए
0: जी।
1: तो फिर हमें लगता है कि ऐसा जब दो पीढ़ियां जुड़ेंगी तो अनुभव और ऊर्जा का संगम होगा और हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। क्या कहती हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रश्मि जी। देखिए ये बहुत जरूरी है, बुजुर्ग अपने जीवन और कार्य क्षेत्र का अनुभव युवाओं से साझा करके युवाओं को मतलब बहुत कुछ सिखा सकते हैं और युवा जो है वो अपने अनुभव को नई तकनीक और आधुनिक सोच के साथ बुजुर्गों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं।
1: इसके अलावा रोजगार और उद्यमिता की अगर हम बात करें, ये तो अनुभवी बुजुर्ग जो हैं वो युवाओं को व्यवसाय और रोजगार के क्षेत्र में भी मार्गदर्शन दे सकते हैं और युवा नए स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और इसके अलावा दोनों पीढ़ियां मिलकर भाई हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, स्वच्छता हो, पर्यावरण संरक्षण हो, शिक्षा हो, मतदान हो और सामाजिक जागरूकता हो, ऐसे अगर अभियान होंगे तो फिर तो क्या बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसे अभियान होंगे, ऐसे सब जुड़ेंगे तो ये बात होगी सोने पे सुहागा। क्यों?
1: जी, और भाई बुजुर्ग अपने हुनर और पारंपरिक ज्ञान को युवा तक जब पहुंचाते हैं और युवा उसे आधुनिक बाजार और तकनीक से जब जोड़ते हैं तो संभावनाएं अपरिमित हो जाती हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए हम तकनीक की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात करें तो अब एक तकनीक की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि तकनीक ने हमारे जीवन को कई तरह से, कई लिहाज से आसान बना दिया है और आज स्वास्थ्य सेवाएं भी इससे अछूती नहीं है। ई संजीवनी भारत सरकार की राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सेवा है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिन्हें हर बार अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ऐसी डिजिटल सुविधा उनके लिए काफी उपयोगी हो सकती है।
1: इसके जो आधिकारिक ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से देश का कोई भी नागरिक घर पर बैठे मुफ्त ऑनलाइन वीडियो या ऑडियो के जरिए डॉक्टर से परामर्श और डिजिटल पर्ची यानी ई प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त कर सकता है।
0: देखिए इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैठे हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है और ऐसे में उन्हें भी घर बैठे इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकती है और अस्पताल की लंबी लाइनों से में खड़े हुए बिना मोबाइल या कंप्यूटर से सीधे डॉक्टर से संपर्क ये कर सकते हैं।
1: और ये जो OPD है और ये परामर्श सेवा है ये नागरिकों के लिए बिल्कुल ही निःशुल्क है। और इसमें प्रतिभा एलोपैथी के साथ साथ जो आयुर्वेद है जो हमारे भारत का ज्ञान है स्वास्थ्य का और होम्योपैथिक के विशेषज्ञ डॉक्टर ये भी उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए इसमें आप अपना टोकन जनरेट कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। हालांकि गंभीर या आपात स्थिति में देखिए हम भी यही कहेंगे और सब यही कहते हैं कि चिकित्सक से सहायता लेना जरूरी है, तो ऑनलाइन परामर्श को हमेशा परिस्थिति के अनुसार।

0: और रश्मि जी देखिए कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो गया है और घड़ी ने हमें इजाजत अब नहीं दे रही है, वो कह रही है कि हम अपने श्रोताओं से ले अनुमति। तो इसी के साथ मुझे यानी प्रतिभा को
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: हर आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने कहा कि समारोह में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लाभार्थियों की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के अनमोल योगदान को मान्यता देने जैसा है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी की FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बस टर्मिनल या

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.21 मेगाहर्ट्ज पर। 1:11 और ठीक 2 सेकंड कलाकार बेमिसाल लेकर देविका हाजिर है और आज कलाकार बेमिसाल में जिक्र उस कलाकार का जिसके पर्दे पर गाए और फिल्माए गए गीतों से आज भी कश्मीर के पर्वत जागृत होते हैं, चिनार के पेड़ झूमने लगते हैं और शिकारे पे बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को उन जैसा समझने लगता है। बर्फ से ढकी हुई वादियों में बर्फ पर फिसलते हुए पर्यटक के मुंह से एक ही आवाज निकलती है,

जी हाँ, जंगली कहो या दीवाना, जानवर कहो या राजकुमार, बदतमीज कहो या फिर प्रोफेसर, लाड साहब कहो या विधाता, ये सब एक ही शख्स के अंदाज थे। वो थे हम सबके चहेते शमशेर राज कपूर, जिन्हें हम सब शमी कपूर के नाम से जानते हैं। आज कलाकार बेमिसाल समर्पित है शमी कपूर साहब को। फिल्म जंगली का गीत आपने सुना, संगीतकार थे शंकर जयकिशन, गीत लिखा शैलेंद्र साहब ने और आवाज मोहम्मद रफी की। शमी जी का जन्म 1941 में मुंबई में हुआ, लेकिन आपके बचपन का अधिकतर समय कलकत्ता यानी कोलकाता में बीता, जहां इनके पिता पृथ्वीराज कपूर न्यू थिएटर स्टूडियोज में कार्यरत थे। इसके बाद परिवार वापस मुंबई आ गया और तत्पश्चात शम्मी साहब की शिक्षा और दीक्षा यहीं मुंबई में हुई। बाद में आप अपने पिता के पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। शमी जी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1953 में बनी फिल्म जीवन ज्योति से की, लेकिन उनकी पहचान बनी फिल्मिस्तान की नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म तुम सा नहीं देखा, जो 1957 में आई थी और जिसे देखकर हिंदुस्तान के श्रोता कहे उठे, वाकई तुम सा नहीं देखा।

जी हाँ, आज कलाकार बेमिसाल शमी कपूर साहब पर, और शमी कपूर साहब की अगर बात की जाए तो शमी कपूर साहब की एक फिल्म हमें याद आ रही है, 1963 की फिल्म शहीद भगत सिंह। शमी कपूर साहब के शुरुआती दौर की प्रमुख फिल्मों में से यह फिल्म थी और जिसमें उन्होंने महान क्रांतिकारी भगत सिंह का किरदार निभाया था। शमी साहब के करियर में यह भूमिका इसलिए भी खास रही क्योंकि उनके चुलबुले और रोमांटिक अंदाज से बिल्कुल अलग थी। इस फिल्म में उनका एक गंभीर और देशभक्तिपूर्ण रूप दर्शकों के सामने आया। फिल्म का संगीत भी बेहद यादगार था और मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने इन गीतों में देशभक्ति और जज्बे को एक अलग ही ऊंचाई दी। तो आइए आजादी के इस जज्बे को महसूस करते हैं और सुनते हैं शम्मी कपूर साहब की इसी फिल्म का एक बेहद खूबसूरत गीत, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, और संगीतकार हैं हुस्न लाल भगत राम।

0: नाल सा। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: पतंग उड़ाए खुशियां मनाए पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
2: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
6: हर

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: 1:25 और ठीक 55 सेकेंड। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर, और देविका है आपके साथ। और बात शमी कपूर साहब की, फिल्म तुमसा नहीं देखा के बाद शमी जी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म में फिल्म जगत को दी। तुमसा नहीं देखा के बाद आई एक और बेहतरीन फिल्म दिल देके देखो, जिसमें उनका स्टाइलिश प्ले बॉय की इमेज जो थी वो स्थापित हो गई और उन्हें भारत का एल्विस प्रेस्ली कहा जाने लगा। यहां तक कि उनके किसी प्रशंसक ने ये तक कहा था कि शमी कपूर भारत के एल्विस प्रेस्ली नहीं है, बल्कि एल्विस प्रेस्ली जो है वो पश्चिम के शम्मी कपूर हैं। और अगला गीत इस बात का प्रमाण भी देता है। 1959 की फिल्म दिल देके देखो से उषा खन्ना जी का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी साहब के बोल।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कलाकार बेमिसाल और कलाकार बेमिसाल में आज बात शमशेर राज कपूर की यानी शमी कपूर साहब की। फिल्म तुमसा नहीं देखा से पहले शमी साहब ने कई स्त्री प्रधान फिल्मों में तब की समर्पित महिला कलाकारों के साथ काम किया, जैसे कि 1953 में बनी फिल्म रेल का डिब्बा में मधुबाला के साथ, लैला मजनू में नूतन जी के साथ, ठोकर में अभिनेत्री श्यामा के साथ और नलिनी जयवंत जी के साथ फिल्म हम सब चोर हैं में। दुर्भाग्यवश इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन 1960 के बाद शमी साहब ने तीन नई अभिनेत्रियों के साथ काम किया। ये तीन अभिनेत्रियां उनके समकक्ष सफलता की ऊंचाइयां छूने में कारगर साबित हुई। ये अभिनेत्रियां थी शर्मिला टैगोर, राजश्री, आशा पारेख और सायरा बानो। शमी साहब का स्वयं के कथानुसार उनकी सभी हीरोइंस में से शर्मिला जी, राजश्री और आशा पारेख के साथ काम करना बेहद सरल रहा। सुनवा रहे हैं आपको 1965 की फिल्म जानवर का ये मस्ती भरा गीत, जिसे गाया है आशा भोसले, बलबीर और मोहम्मद रफी ने, शंकर जयकिशन जी का संगीत और शैलेंद्र साहब का जादू।

0: जी हाँ, वो चुलबुला अंदाज, वो मस्ती और वो डांस का स्टाइल भुलाई नहीं भूलता। और शमी कपूर साहब के बारे में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी देर में।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
4: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
0: यकीनन जब हिंदी सिनेमा में चुलबुलेपन, शरारत, शोखी और बिंदास अंदाज की बात होगी तो एक ही नाम अपने आप जहन में आ जाता है, शमशेर राज कपूर यानी कि शमी कपूर साहब। उनकी अदाकारी में ऐसी खनक थी जो पर्दे पर आते ही माहौल को खुशनुमा बना देती थी। चेहरे पर शरारती मुस्कान, आंखों में नटखटपन, संवाद बोलने का अपना अनोखा अंदाज और नृत्य में वो बेफिक्री शमी कपूर साहब को बाकी सितारों से बिल्कुल अलग बनाती थी। चाहे इश्क में डूबा हुआ नौजवान हो, दोस्तों के साथ मस्ती करता हुआ आवारा दिल हो, या फिर जिंदगी को अपनी तो पे जीने वाला किरदार, शमी साहब ने हर भूमिका में अपनी अलग छाप छोड़ी है। और उनका अंदाज सिर्फ अभिनय नहीं था, वो एक पूरा मिजाज था, खुश रहने का, खुलकर जीने का और मोहब्बत को शरारत के साथ निभाने का। और फिल्म तीसरी मंजिल का ये गीत हमें याद आ रहा है जिसमें वो हेलन के साथ हैं, और क्या बेबाकीपन है इस गाने में, सुनिए।

पहले भी कई बार नॉमिनेट हो चुके शम्मी कपूर साहब को उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड 1959 की फिल्म ब्रह्मचारी के लिए मिला था। उन्होंने अपना फिल्म जगत में एक विशिष्ट स्थान बनाया क्योंकि उस समय के एक वही डांसिंग सुपरस्टार थे। अभिनेत्री सायरा बानो ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि उस समय जब दिलीप साहब, राज कपूर और देवानंद फिल्म जगत पर राज कर रहे थे तो उस समय शम्मी साहब ने अपने स्टाइल से, अपने विशिष्ट डांस स्टाइल से अपने लिए फिल्म जगत में एक अलग जगह बनाई। शम्मी जी का खुद का कहना था कि उन्हें डांस नहीं आता, वो तो केवल गाने को सुनते हैं और सुन के जो महसूस करते वो पर्दे पर कर देते हैं, जैसे कि फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत। और आपको ये भी बता दें कि 14 अगस्त 2011 को शम्मी कपूर साहब ने दुनियाए फानी को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गए वो अनगिनत नगमे जो आज भी सुनने वालों और देखने वालों का मनोरंजन कर रहे हैं। फिल्म कश्मीर की कली, जी हाँ, कलाकार बेमिसाल का आखिरी गीत, SH बिहारी साहब की बोल, ओपन एयर का संगीत और आवाज, मोहम्मद रफी साहब की।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात में कौम की क्यादत करेंगे। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स दरामद पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है और छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज बहुत शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का यह खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नशर किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले यह खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और उसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का यह खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। कल पूरे मुल्क में 80वां यौम आजादी मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात की क्यादत करेंगे। कौमी परचम लहराने के साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस मौके पर भारतीय फिजाइया के 2 हेलीकॉप्टर फूलों की पत्तियां बरसाएंगे जिसके बाद वजीर आजम लाल किले की फसील से कौम से खिताब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस अजीमुशान तकरीब के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम की शानदार विरासत के 150 साल मुकम्मल होने और 2047 तक विकसित भारत की समत भारत के सफर को आगे बढ़ाने में युवा शक्ति की तवानाई, उमंगों और उनके ग्रांकद्र ताउन का जश्न भी मनाया जाएगा। लाल किले पर तकरीबात के दौरान पहली मरतबा वंदे मातरम गाया जाएगा। एनसीसी के कैडेट्स और माई भारत के रजाकार पहले कौमी गीत वंदे मातरम और फिर कौमी तराना गाएंगे। फौज, बहरिया और भारतीय फजाइया के 2500 लड़के लड़कियां और माई भारत के रजाकार इन तकरीबात में हिस्सा लेंगे। इनके अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों को भी लाल किला तकरीबात का नजारा करने की दावत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मौके पर कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों के तकरीबन 15,000 सिक्योरिटी एहलकारों को भी तैनात किया गया है। लाल किला और उसके आसपास 1,000 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देने और यौम आजादी का जश्न मनाने की गरज से मुल्क भर में 343 अहम मकामात पर बहुत से बैंड्स अपने फन का मुजाहरा करेंगे। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मलिक।

0: कल यौम आजादी के मौके पर दिल्ली मेट्रो के तमाम टर्मिनल स्टेशनों से खिदमत सुबह सवेरे 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कहा है कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि यौम आजादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए खसूसी मेहमानों, मदुईन और आम लोगों को आने जाने में सहूलत फराहम हो सके। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कहा है कि मेट्रो खिदमत सभी लाइनों पर 30-30 मिनट के वक्फे से चलेंगी, इसके बाद वो बाजाब्ता तौर पर चलाई जाएंगी। हुकूमत ने दिल्ली के लाल किले पर यौम आजादी की 80वें तकरीब का नजारा करने के लिए खसूसी मेहमानों की हैसियत से दिल्ली एनसीआर खित्ते से पीएम विश्वकर्मा के 100 मुस्तफेदीन को मधु किया है। बहुत छोटी, छोटी और औसत दर्जे की सनातों की वजारत ने बताया कि इन मुस्तफेदीन को आज एमएसएमईज की वजारत के अफसरों के साथ बातचीत के बाद कद्र शनासी और कद्रदानी के अलामत के तौर पर सुवेनियर भी पेश किए जाएंगे। मधु किए गए मुस्तफेदीन में दर्जी, कारपेंटर, सोनार, लोहार, तालासाज समेत पीएम विश्वकर्मा के तहत आने वाले 18 रिवायती कारोबार की नुमाइंदगी करते हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में यौम आजादी की तकरीब के सिलसिले में मुनासिब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं ताकि पुरमन और खुश उसलूबी से यौम आजादी तकरीबात को यकीनी बनाया जा सके। शहरी इंतजामिया की तरफ से दीगर जरूरी तैयारियां और इंतजाम के साथ सभी मकाम पर सिक्योरिटी के कसीर सतही इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल यौम आजादी की तकरीबात के मौके पर पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी और हुब्बुल वतनी से मुतालिक सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। श्रीनगर से टीटवा में लाइन ऑफ कंट्रोल तक तिरंगा रैलियां और हुब्बुल वतनी के नगमे इन तकरीबात का खास हिस्सा होंगे। इस दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस पूरे इलाके में कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। खास तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़द की जाएगी, जहां वजीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत करेंगे। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिले तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उन सभी लोगों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थीं और जिन्होंने मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद के दिन के मौके पर जुल्म व सितम के खिलाफ जद्दोजहद की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख में एक ऐसा लम्हा करार दिया जिसमें बहुत से जानें कुर्बान हुईं, जहां बहुत से कुंबे उजड़ गए, लोगों के अजीज व अकारिब की जानें गईं और जबरदस्त तकालीफ और मुसीबत का सामना किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स और उनके कलपुर्जों की दरामद पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है और कहा है कि इस कदम का मकसद मजकूरा सनअत में गैर मुल्की सप्लायर्स पर अमरीका का इन्हिसार कम करना है, जबकि बड़ी हद तक इस सनअत में चीन का गलबा है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक कौमी सलामती वजूहात से यह फैसला किया गया है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक यह फैसला कौमी सलामती की बुनियादों पर किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मनुष्यात की रोकथाम के ब्यूरो एनसीबी ने मुत्तहदा अरब अमारात से मनुष्यात के मफरूर सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया की मुल्क वापसी और हवालगी को यकीनी बना लिया है। उन्होंने कहा कि यह मनुष्यात के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की हुकूमत की पॉलिसी में एक नए संग मील की हैसियत रखता है। झारखंड के रांची में एहतजाज करने वाले तलबा आज 21वें दिन भी सरकारी भर्तियों में शफाफियत की मांग कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस मुजाहरे के दौरान तलबा लीडरों और हुकूमत के दरमियान तातुल में इजाफा हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 3 हफ्तों से रांची में जारी तलबा का एहतजाज अब एक हसास मरहले में दाखिल हो गया है। तलबा के लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने जो भूख हड़ताल की वजह से अस्पताल में दाखिल हैं एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें वो तहरीक को मजबूत और जारी रखने की अपील कर रहे हैं। खराब सेहत के बावजूद उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग तहरीक को कमजोर करने और उसे किसी और सम्त में मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हुकूमत के एक वजीर की तरफ से तलबा के वफ्द की सदाकत पर सवाल उठा जाने के बाद तलबा के लीडर रविंद्र पासवान ने रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि वफ्द के सभी अरकान सही हैं और सच्चे हैं। इस दौरान मुमताज माहिर तालीम अलका

0: पांडे ने तलवा के एहतजाज की हिमायत में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का दौरा किया। रांची से पूनम करकेटा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने 18 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के विरासत के तहफ्फुज के 3 बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। इनका मकसद तारीखी और सकाफती लिहाज से अहमियत के हामिल मकामात की अजमत को बहाल करना और खित्ते के विरासती सियाती मकामात को मुस्तहकम बनाना है। जुनूब मगरबी मानसून आज से हिमाचल प्रदेश के बहुत से हिस्सों में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। आज सुबह से कुछ इलाकों में शदीद बारिश की इत्तला मौसूल हो रही है। बहुत से अजला में तूफानी बारिश से दरियाओं और नदियों में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वह एहतियात बरते। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आजादी की तकरीबात में कौम की क्यादत करेंगे। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन दरआमदात पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है और छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज बहुत शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation on the eve of 80th Independence Day. Prime Minister Narendra Modi to lead the nation in Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi tomorrow. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Prime Minister, Home Minister and Defence Minister pay homage to all those who lost their lives during partition. India dispatches first tranche of 20 metric ton relief supplies to Colombia to support ongoing post-earthquake recovery efforts. And alert issued for very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashvani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashvani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. The nation will celebrate the 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will lead the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. Unfurling of the national flag will be synchronized with a 21-gun salute. After the showering of flower petals, the Prime Minister will address the nation from the ramparts of the Red Fort. More from our correspondent.
3: The grand event is set to commemorate 150 years of the enduring legacy of the national song Vande Mataram and celebrate the energy, aspirations and pivotal contribution of Yuva Shakti in driving India's journey towards Viksit Bharat by 2047. For the first time, Vande Mataram will be rendered during the celebrations at Red Fort. The cadets of National Cadet Corps and My Bharat volunteers will sing the national song Vande Mataram followed by the national anthem. A total of 2,500 cadets of Army, Navy and Air Force and My Bharat volunteers will participate in the celebration. Around 5,000 special guests from different walks of life have been invited to witness the celebrations at Red Fort. These include artisans under PM Vishwakarma scheme, women entrepreneurs under PM Mudra Yojana, street vendors under PM Swanidhi and taxi drivers of Bharat Taxi. Delhi police has also made elaborate security arrangements in the national capital. Around 15,000 security personnel from various agencies have been deployed. 1,000 CCTV cameras have also been installed at the Red Fort. To promote patriotic fervor among citizens and celebrate Independence Day, a number of band performances are being held at 343 prominent locations across the country. With Dipendra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
2: The government has invited 100

0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address the nation on the eve of 80th Independence Day. Prime Minister Narendra Modi to lead the nation in Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi tomorrow. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Prime Minister, Home Minister and Defence Minister pay homage to all those who lost their lives during partition. India dispatches first tranche of 20 metric ton relief supplies to Colombia to support ongoing post-earthquake recovery efforts. And alert issued for very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
2: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें

0: पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
2: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में 500 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित प्रत्यक्ष लाभ

0: नियंत्रण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
1: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
2: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
0: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई हैं और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंग नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 200

12 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दो बज के 30 मिनट और ठीक 4 सेकंड हुए हैं। संगीत.com लेकर हाजिर है देविका। आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो एहसास है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कता है। उन वीरों को नमन जिन्होंने अपने आज को कुर्बान करके हमारा कल आज़ाद किया। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ तिरंगा ना लहराएं, बल्कि अपने कर्मों से देश को और ऊंचा उठाने का संकल्प लें, क्योंकि देश सिर्फ सरहदों से नहीं बनता, देश बनता है हमारी सोच से, हमारे कर्मों से, हमारी जिम्मेदारी से।

0: जी हाँ, ये बेहतरीन गीत आपने सुना 1964 की फिल्म हकीकत से, और कैफी आजमी साहब के बोल थे, मदन मोहन जी का संगीत और आवाज़ थी तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और भूपेंद्र सिंह की। संगीत.com सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: संगीत.com से आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। श्रोताओं, कहते हैं जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। हमारा भारत केवल एक देश नहीं बल्कि करोड़ों सपनों, संस्कृतियों, परंपराओं और भावनाओं का संगम है। इसकी मिट्टी की खुशबू में अपनापन है, इसकी नदियों में जीवन का संगीत है, इसके पर्वतों में अधिक साहस है और इसकी विविधता में एकता का अद्भुत मिसाल है। उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियां, दक्षिण में अथाह सागर, पूर्व की सुनहरी सुबह और पश्चिम की रंगीन शाम, हर दिशा भारत की सुंदरता और महानता की कहानी कहती है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग वेशभूषाएं पहनी जाती हैं, विविध त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो हर दिल एक ही स्वर में कह उठता है, मेरा भारत महान।

0: रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, संगीत.com से आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर और फिल्म रोजा का गीत आपने सुना था। AR रहमान का संगीत था और आवाज़ थी हरिहरन साहब की। और बात हमारे भारत देश की, हमारे वीर सैनिक सीमाओं पर दिन रात डटे रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। हमारे किसान खेतों में मेहनत करके देश का पेट भरते हैं। हमारे वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर, खिलाड़ी और हर मेहनतकश नागरिक अपने अपने कर्म से भारत को नई ऊँचाई तक पहुँचा रहे हैं।

0: फिल्म कर्मा का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी साहब के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाज मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

0: से बचाएं।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: दो बज के 56 मिनट और 15 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है संगीत.com। श्रोताओं, इस देश का जो भविष्य है वो हमारे बच्चे हैं। उनकी आंखों के सपने में भारत का कल बसता है, उनकी सोच में देश की नई दिशा छिपी है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें सिर्फ अच्छे अंक नहीं, अच्छे संस्कार दें। सिर्फ प्रतियोगिता में आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि देश के लिए आगे बढ़ना सिखाएं, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के भारत की पहचान होंगे।

0: काली दुनिया कैसे होगी।
1: जी हाँ, बूट पॉलिश का गीत आपने सुना, शैलेंद्र साहब के बोल और शंकर जयकिशन जी का संगीत आवाज मन्ना डे की। फिलहाल संगीत.com में बस इतना ही। देविका आपसे विदा लेती है इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द मुलाकात होगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक और 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में ले लिया गया। गृह मंत्री ने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण

पीएफ कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

3:11, 4 सेकेंड। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। आप हैं एफएम गोल्ड 100.1 के साथ और आकाशवाणी कदम दर कदम आपके साथ रहता है। आ रही थी आपके पास तो ये गीत गुनगुनाते हुए आ रही थी, सोचा पहला गीत मेरी तरफ से आप सबके लिए।

बरखा बहार सावन का महीना बहुत सारा प्यार लेकर आता है हम सबके लिए और हम सावन का महीना एंजॉय भी कर रहे हैं, तीज भी मना रहे हैं और इस मौसम में हरा रंग उभर कर आता है, ये तो आप सब जानते हैं। और ऐसे में आपकी जितने भी संदेशे हैं वो भी हम तक उभर कर आ रहे हैं। 9868687 ये वो नंबर है जिस पर आपको हमें व्हाट्सएप करना है। एक बार दोबारा सुन लें आप, 9868687 और मनभावन प्रोग्राम अब आपके मैसेजेस के साथ शुरू होता है क्योंकि पहला गीत तो मैं अपनी पसंद का आप तक पहुंचाती हूं हर बार। और अब आपके मैसेजेस हम लेने वाले हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है और ऐसे में जो दिल है वो बाग बाग है, खुशियां जो हैं वो चरम पर हैं। और जब हम अपने देश की बात करते हैं तो दिल से बस यही बात निकलती है कि ये मोहब्बत है, प्यार है या जुनून, ये तो मैं नहीं जानती, मगर तुझसे जो मेरे देश की मिट्टी है वो और किसी से नहीं। तो एक ही रिलेशन है हमारा हमारी मिट्टी से, जो सबसे अलहदा है, सबसे जुदा है और अपने आप में बहुत बहुत ख़ास है। कितनी भी बढ़िया चीज़ आप सामने रख दीजिए लेकिन जो देश प्रेम है वो सर्वप्रिय है और सबसे ऊपर सबसे पहले वही आता है। और ऐसे में आपसे एक सवाल भी पूछना है मैंने, लेकिन एक गीत है जो अभी मैंने बिल्कुल निकाल के रखा है, आपकी फरमाइशें हैं। तो नंबर तो मैं आपको बता चुकी हूँ जी, जो कि 9868687 है। और आपके मैसेजेस भी हमने पढ़ने हैं। अलीगढ़ से सलीम अख्तर साहब और रेशमा बेगम, आपने हमें संदेशा भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और चंपारण जिले में आप पते क्या है, आप बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं ना तो सब एक साथ। लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज हैं और बेगम इमराना नाज हैं और राधा नामदेव हैं। आपने भी एक फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश की है, ये आप मान लें कि देखिए जो गीत है वो तो एक ही बज पाएगा लेकिन आपकी फरमाइशें बहुत सारी होंगी, है ना। और यहाँ पर सुखीरी कला से हमारे पास अमित जाधेल का संदेश आया है, साथ में शगुन है, आरुषि हैं और ओशिका हैं, इनके साथ आदित्य हैं और अंजलि जी हैं। बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए, नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, इस नंबर पर आपने अपनी फरमाइश हमें भेजनी है। और जो सवाल मैंने आपसे पूछना है वो मैं अब इस गीत के बाद पूछूँगी। वैसे तो अपना जो देश है हम बहुत प्यार करते हैं अपने देश से और जब कभी भी मौका मिलता है तो इसी की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने देश को और अपनी इस मिट्टी को कितना जानते हैं, इसके लिए एक सवाल ज़रूर इस गीत के बाद।

0: प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

वेलकम बैक जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। आज मनभावन प्रोग्राम में मैं आपकी दोस्त सीमा वर्मा और मेरे साथ तो आप हैं ही, साथ में एक जादुई नंबर है 9868886853 जिस पर आपको हमें अपनी फरमाइश जो है उसे भेजना है और हम आपकी फरमाइश लेंगे। आपकी फरमाइश के साथ साथ हमने आपसे एक अब प्रश्न भी पूछना है और इस वादे के साथ कि आप सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेंगे, आप फ़ोन पर गूगल नहीं करेंगे, इसके जवाब को अगर आपको आता है तो आप ज़रूर दीजिए। और सवाल ये है कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से जिस ऐतिहासिक आंदोलन का आह्वान हुआ उसका नाम आपने बताना है, वो क्या था, उसका नाम आप ज़रूर बताइएगा और आप हमें मैसेज कीजिए। इस सवाल का जो जवाब है, सही जवाब है, वो मैं प्रोग्राम के अंत में आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। और प्यार भरा नमस्कार हमें किसने भेजा है, हमें भी सुपर हिट प्रोग्राम में शामिल करें। साहब आप तो रोज़ ही शामिल होते हैं अपने मनपसंद मनभावन में। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया जी हैं, एंजल भाटिया हैं, सोनू भाटिया हैं और तमन्ना भाटिया हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज भी आप मुस्कुरा रहे होंगे अपना नाम सुनकर, किसी भी गीत में शामिल करें। धन्यवाद। पिपरिया से हमारे पास कमलकांत गुप्ता जी हैं और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर रेशमा बेगम हैं, सलीम अख्तर साहब, अभी तो आपका मैंने नाम लिया, आप दोबारा आप ना करें ताकि आपके जो बाकी के भाई बहन हैं उनको मौका मिल जाए और हम उनका ले सकें। संजय पाटिल हैं और सौभाग्यवती उषा पाटिल हैं, इन्होंने मलकापुर से हमें संदेशा भेजा, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और अगला संदेशा रोहिणी दिल्ली से हमारे पास आया है, सतप्रकाश सोनठिया हैं और आपने भी जवाब लिखकर भेजा है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक जवाब आपने लिखा है लेकिन मैं जवाब लास्ट में बताऊंगी आपको, ठीक है। और मोहाली पंजाब से गुरप्रीत तंगौरी जी हैं और इनके साथ जसबीर हैं, महकप्रीत हैं और ये हैं जी सहजप्रीत हैं। तो अब मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारे नाम ले दिए हैं, तो आप कहें तो अब एक गीत आपकी नज़र कर दूं मैं। यहाँ पे धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार हैं, इन्होंने राजस्थान भोपालगढ़ से हमें संदेशा भेजा है। ठका ठक ठका ठक संदेशे आ रहे हैं, बिल्कुल आने चाहिए। और ठका ठक मैं नंबर भी बता देती हूँ आपको, 9868886853। और अगला गीत

कोई अपना होता है और नज़रों से दूर हो जाए तो जाहिर सी बात है कि जिया नहीं लगता है। और जब हम अपने राष्ट्रीय पर्व की बात करते हैं तो जिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी से लगता है। हम कहीं भी क्यों ना चले जाएं साथियों, कितनी खूबसूरत बात है। हम कहीं भी चले जाएं, विदेश चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, लेकिन हम जहां भी जाते हैं अपना देश साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं, हम जो जाने जाते हैं वो अपने देश की बदौलत ही जाने जाते हैं, और अपने आप में बड़ी खूबसूरत बात है। और यहाँ पर हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है साथियों कि हम जहाँ भी जाएं हम अपने देश का मान सम्मान बरकरार रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी किसी गलती की वजह से ये जो नाम है हमारे देश का ख़राब हो। तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के ध्वजवाहक होते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं अपनी प्रतिष्ठा को, देश की प्रतिष्ठा को आगे लेकर चलते हैं और इसे बचाकर संभाल कर रखना हमारा पूरा फर्ज बनता है। यहाँ पर एक और संदेश आया है, आपके संदेशे भी ले रही हूँ, दिल की बातें भी कर रही हूँ। कल हमारा राष्ट्र पर्व है और इसकी खुशी भी है, तो बड़ा कुछ एक साथ दिल में बहुत कुछ अनुभूति हो रही है, तो वो मिला जुला कर आप तक पहुंचा रही हूँ। व्हाट्सएप नंबर है जी 9868868753, ये नंबर है। राम राम जी किसने लिखा है, कोई भी गीत हमें शामिल करिए। और कौन है जी, ये हैं गोलू कांगड़ा हैं और सागर हैं, इनके साथ सीताराम कांगड़ा हैं और अंशिका बोट हैं और तमन्ना कांगड़ा है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। वहीं अगला संदेशा छत्तीसगढ़ पलारी से है, प्रकाश वर्मा है, प्रिंस वर्मा है, निखिल वर्मा है और यशस्वी वर्मा है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। शुक्रिया किसने लिखा है, नुसरत बेगम है और खलील कुरेशी साहब हैं, बेबी अरीबा हबीबा हैं और इन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से संदेशा भेजा है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए भी। आप अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और ऐसे में ये क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, इसे ना भूल जाइएगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। सवाल ये है साहब कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से जिस ऐतिहासिक आंदोलन का आह्वान हुआ था, आपको उस आंदोलन का नाम जो है जी वो लिखकर हमें भेजना है और हम अंत में यानी कार्यक्रम के अंत में आपको सही जवाब ज़रूर देंगे। मैं सिर्फ इस समय आपको संकेत दे दूंगी जी कि आपका सही जवाब है, ठीक है। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी हैं, बोधराज खोरवाल जी हैं, भानु प्रकाश हैं और गीतिका खोरवाल हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। वहीं एक रंग बिरंगा बहुत सारे डिज़ाइंस और फ्लावर्स के साथ ये संदेशा आया है। आफ्ताब अंसारी हैं, रियाज अंसारी हैं, मोहम्मद कैफ साहब हैं, अनवर मास्टर हैं और लुबना अंसारी हैं और आलिया अंसारी हैं, और इन्होंने भी हमें गुंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हमें संदेशा भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब मुझे लग रहा है कि एक गीत आप तक पहुंचाना चाहिए। सतप्रकाश गोयल जी रोहिणी से दिल्ली से हमें संदेशा भेजते हैं, तो आइए हम सब मिलकर एक गीत सुनते हैं। और एक बहुत खूबसूरत शेर है कि मेरा देश आज़ाद हुआ है वंदे मातरम के नारों से, मेरा देश आज़ाद हुआ है वंदे मातरम के नारों से, अनमोल आज़ादी पाई है भारत माँ के जयकारों से, भारत माता की जय।

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना।
4: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
5: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप हैं सीमा वर्मा के साथ और प्रोग्राम जी मन भावन है और आकाशवाणी आपके साथ हर पल हर कदम आगे बढ़ रहा है। और आपके जो संदेश हैं वो भी हम तक पहुंच रहे हैं। एक बार फिर उस जादुई नंबर को आप जान लें, 9868886853। अगर आपको लग रहा है मैंने बहुत तेज़ी से बोल दिया है, तो जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ट्यून इन किया है जी, आपकी फरमाइश का प्रोग्राम है मन भावन, 9868886853, जिस पर आपको अपनी फरमाइश हम तक पहुंचानी है। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा साहब और बिमला अनेजा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जवाब में अंत में आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत हैं, गुड्डी भगत हैं, श्वेता भगत हैं, केसु हैं, तासु हैं, अर्णव आनंद हैं और सत्यम हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। और भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष, आपने हमें बेंगलुरु से संदेशा भेजा है, आपके संदेश के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे पास कहाँ से जी ये संदेशा आया है ये देखना होगा, जाफराबाद से हमारे पास आया है जी, श्री सुधाकर जी हैं, इनके साथ डॉक्टर प्रशांत हैं, कुमार संचित हैं और प्रथमेश हैं इनके साथ। नाम ऐसे हैं कि कई बार टंग ट्विस्ट हो जाती है, एक ही तरह के जब आप राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं तो होता है। और सर्वद देशमुख हैं इनके साथ, कुमारी प्रणाली हैं और सानवी देशमुख हैं और इनके साथ हर्षिता देशमुख हैं। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और क्या तैयारी हो रही है, आप कल क्या करने वाले हैं ये भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मुझे लग रहा है मैंने आपका नाम पहले पढ़ लिया है, कृपया दोबारा ना आप भेजें, कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। और यहाँ पर सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा साहब हैं, ऋतिक मल्होत्रा हैं, प्रतीक हैं, अनिल शर्मा हैं, जयवीर सिंह जी हैं और डॉक्टर अमनदीप हैं। कालका से इन्होंने कुछ नाम और भेजे हैं जो कि है शुभचंद्र बजाज हैं, साहिल बजाज हैं और बिट्टा जी भी हैं इनके साथ। यहाँ पर एक और मैसेज आया है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बहुत देर हो गई है, अभी आपका मैसेज मैं ज़रूर लूँगी। एक गीत जो है वो हम सुन लेते हैं, बहुत खूबसूरत गीत है, 1975 की फिल्म आक्रमण का ये गीत है, आइए सुनते हैं किशोरदा को।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

बहुत स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 MHz पर। आपके साथ मन भावन में मैं आज सीमा वर्मा, और 3:50 हो गए। अब आप जानते हैं ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इतना तो है कि हम आपको नंबर बता दें 9868 68753। और अब आपको एक बार फिर मैं वो सवाल पूछ लूँ। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से जिस ऐतिहासिक आंदोलन का आह्वान हुआ, उसका नाम साहब आपने बताना है हमको, और हमने आपको जवाब आखिर में तो ज़रूर देंगे ही देंगे। वहीं पारसमणी रेडियो क्लब, एक इन्होंने जो संगीत के प्रेमी हैं, इन्होंने अपना खोला हुआ है, सुनते हैं रेडियो और बहुत खुश होते हैं। आपने लिखा है कि तुरंत जवाब दे दिया था, आपने नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा है, हम जवाब जो है सही वो बाद में आपको बताएंगे, लेकिन आपने सही जवाब दिया है। डैनी पवार, मनीष पवार और खुदा बख्श हैं, दिनेश चौहान हैं, बाबूराम जयपाल हैं, गांधी चौक बाड़मेर से आपने ये संदेशा भेजा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। के एच राही, गुड़िया बेगम और वकील प्रेमी और हमाद जमील साहब हैं, इन्होंने तहसील रोड गंज टुंडवारा से हमें संदेशा भेजा है। और अगला संदेशा ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी साहब, निगत परवीन हैं, शहनवाज हैं, सरफराज हैं, फरदीन हैं, सुहान हैं, अरजान हैं, अबान हैं, पूरा का पूरा अब्बासी परिवार है। बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और आपने अगला जो संदेशा मैंने ले लिया है, ये भी आपने बिल्कुल ठीक जवाब आपने हमें दिया है। और अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक आज तिरंगा लहरता है हमारा, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और ये तिरंगा हमारे दिलों में 365 दिन लहलाता रहता है, और हम कहीं भी चले जाएं, हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए होते हैं। ये अपने आप में बड़ी प्यारी है, बहुत खूबसूरत बात है। प्रकाश गोगिया जी और जागृति इनक्लेव से आपने ये हमें संदेशा भेजा है, बहुत शुक्रिया इसके लिए। बहुत सारे गुलाब लिए ये संदेशा, किसका है साहब ये, कितना इंतज़ार कराएंगी दीदी आप। साहब मेरी जगह हो तो आपको भी मैं ऐसा ही मैसेज भेजूं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे भाई, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर रोहतक से हमारे भाई हैं पीयूष सिक्का, जो कह रहे हैं कि कितना इंतज़ार कराएंगी। इंतज़ार का जो मज़ा है वो एक अलग ही है। कोयल सिक्का हैं और डुगू भाविक सिक्का हैं, बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। नाराज़ आप ना होया करें, नाराज़ होना बहुत आसान है, आपको पता है बहुत आसान है नाराज़ होना, लेकिन मान जाना शायद मुश्किल है। अब मैं तो मना रही हूँ आपको, आप देख लीजिए। दिल्ली रेडियो लिसनर्स क्लब है जी इनका, नवाब अहमद भारती हैं, बबलू कश्यप हैं, महेश अग्रवाल हैं और अशरफ अली हैं, सिराज मिथुन हैं और संजय ढींगरा हैं। दिल्ली से आपने संदेशा भेजा है, और मुझे लगता है अब हमें वो जवाब जो है वो आप तक पहुँचा देना चाहिए। जो सवाल हमने आपसे पूछा था, तो हम आप तक अब वो जवाब भी पहुँचा देते हैं, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो अब जो गीत आप तक मैं पहुँचाऊँगी वो आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत होगा। तो साहब हमने आपसे पूछा था कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से जिस ऐतिहासिक आंदोलन का आह्वान हुआ था, उसका नाम क्या था। उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत शुक्रिया आपके सभी संदेशों के लिए, जवाब आपने बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल ठीक दिए हैं। और जो मैंने आपसे वादा लिया था कि आप सोशल मीडिया नहीं देखेंगे, तो वो वादा तो आपने निभाया नहीं निभाया वो आप जाने, लेकिन हम एक वादा आपसे ज़रूर निभाते हैं कि अपने देश का नाम लेते हुए आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत, आइए

एक बार फिर हर्ष करें, गर्व करें इस बात पर कि हमारा जन्म भारत की इस मिट्टी में हुआ है। आपको इस खूबसूरत देशभक्ति गीत के हवाले छोड़े जा रही हूँ और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रही हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MiG-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम लोगों की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के लिए 29 पदक शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 में विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रक ब्यूरो ने फरार ड्रग माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता प्राप्त की है। उसे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सवेरे हिरासत में लिया गया। गृहमंत्री ने कहा कि यह मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नई उपलब्धि है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और CRPF के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को जहरीली गैस से एक व्यक्ति की कथित तौर पर मौत और अन्य के घायल होने की घटना पर नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर जांच की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के चमोली में एक जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंग ढहने की घटना पर शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को

सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कल हमारा राष्ट्र पर्व है और जब जब हम एक साथ मिलकर राष्ट्र पर्व मनाते हैं तो दिल में एक उमंग होती है और निगाहों में एक चमक सी होती है। देश प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हर नागरिक के अंदर होता है। हिंदी सिनेमा ने भी इस मोहब्बत और इस जज्बे को बखूबी अभिव्यक्त किया है। देशभक्ति का कोई भी गीत हो, वो दिल के बड़े करीब होता है और हम बार बार इसे दोहराना चाहते हैं। और साथियों, ये भी सच है कि देशभक्ति के गीत को गुनगुनाने और गाने का कोई समय नहीं होता। जब दिल कहता है हम अपने देश की शान में, महफिल में हों चाहे अकेले हों, बस गुनगुना देते हैं, ये याद करते हुए कि आज हम जिस आज़ादी को हासिल किए हुए हैं वो हमारे उन शहीद भाइयों की बदौलत है जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ सोचा तो अपने देश की रक्षा के बारे में सोचा।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: सैनिक स्कूल कोडागु कर्नाटक की वेबसाइट www.sainikschoolkodagu.edu.in। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है और अखिल भारतीय उपस्थिति रखती है। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख महारत्न कंपनी है जो तेल और गैस की खोज, पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन, विपणन और वितरण का कार्य करती है। इन रिक्तियों के लिए युवा और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित हैं। पदनाम है प्रोसेस तकनीशियन रासायनिक, प्रोसेस प्रचालक रासायनिक, तकनीशियन यांत्रिक और तकनीशियन विद्युत। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए देख सकते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की वेबसाइट www.bharatpetroleum.com। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में इन पदों की रिक्तियां उपलब्ध हैं। प्रधान निजी सचिव, निजी सचिव और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक। पदों, योग्यता, नियम एवं शर्तों, प्रतिनियुक्ति की अवधि, आयु सीमा, आवेदन की प्रक्रिया, अंतिम तिथि आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट moef.gov.in। महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल का चिकित्सा निदेशालय आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक उपनिरीक्षक इलेक्ट्रीशियन एक रिक्ति, सहायक उपनिरीक्षक वातानुकूलन संयंत्र एक रिक्ति और हेड कांस्टेबल ड्रेसर एक रिक्ति। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए सीमा सुरक्षा बल की आधिकारिक वेबसाइट www.bsf.nic.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को आवश्यकता है नर्सिंग अधिकारियों की और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए एम्स की आधिकारिक वेबसाइट www.aimsexams.ac.in। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, इन पदों को अनुबंध के आधार पर भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। भर्ती वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। पदों के नाम है वरिष्ठ परामर्शदाता सी 2 पद, परामर्शदाता सी 5 पद, कनिष्ठ परामर्शदाता सी 1 पद, कनिष्ठ परामर्शदाता लेखाकार सी, डेटा एंट्री ऑपरेटर सी 1 पद तथा अर्ली इंटरवेंशनिस्ट सी 1 पद। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए नियमित रूप से देखें वेबसाइट aijnishd.nic.in। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद को आवश्यकता है पात्र उम्मीदवारों की इन पदों के लिए उप महानिदेशक पशुपालन, सहायक महानिदेशक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और सहायक महानिदेशक फसल एवं बागवानी। आवश्यक योग्यताओं, नियमों, शर्तों के विवरण के लिए देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की वेबसाइट। वेबसाइट है upcar.up.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: अभी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 MHz से। कुछ ही देर में अब हम सुनेंगे परिक्रमा।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। श्रोताओं, शाम का वक्त बहुत खास होता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सूरज ढलता है तो मन में एक अलग सी खामोशी और सुकून भी आ जाता है। इसी वक्त हम अपनों को याद करते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। और आज की ये शाम और भी खास है क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है। इस विषय पर भी कार्यक्रम में काफी सारी बातचीत होगी, इसका डिस्कशन करेंगे डेटलाइन में। और आज के अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय।
1: हेलो सरफिरोजी, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल दोज हु आर ट्यून्ड इनटू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज ऑन द एफएम गोल्ड नेटवर्क। माय नेम इज अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट सरफिरोजी।

0: And today we observe his birth anniversary, and we shall talk about him later in a program. But first of all, we start off with the news headlines at this hour. President Draupadi Murmu to address the nation on the eve of the 80th Independence Day.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे.
0: पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे बीन ऑब्जर्व टुडे. प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर पे होमेज टू ऑल दोज हू लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग पार्टीशन.
1: भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी.
0: An alert issued for very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about partition, horrors, Remembrance Day.
1: जी अभिषेक, आज पूरा भारत तिरंगे की शान से सजा है. कल स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जाएगा और देश का हर कोना देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आएगा. हर ओर लोगों के मन में वतन से मोहब्बत का एहसास है, लेकिन इस जश्न के बीच इतिहास का एक ऐसा पन्ना भी है जिसे हम भूल नहीं सकते, क्योंकि आजादी की सुबह से ठीक पहले भारत ने विभाजन की एक ऐसी रात भी देखी थी जिसकी टीस पीढ़ियों तक महसूस की गई.
0: And for years, ordinary Indians struggled against British rule. Some spent their lives behind prison bars, some endured lathi blows, some faced bullets, and others even left their families behind for the sake of the country. Their dream was of an independent and united India.
1: लेकिन उस वक्त शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि जिस आजादी का इंतजार इतने सालों से हो रहा था, उस आजादी की कीमत इतनी बड़ी होगी. इसलिए जरूरी है कि जब हम कल तिरंगा फहराएं और राष्ट्रगान गाएं, तो उन अनगिनत लोगों को भी याद करें जिनके त्याग, संघर्ष और पीड़ा के रास्ते से होकर ये आजादी हमारे पास पहुंची है.
0: माया एंजेलू ब्यूटीफुली सेड, द एच फॉर होम लिव्स इन ऑल ऑफ अस. होम इज नॉट सिंपली अ हाउस, इट इज अ नॉस्टैल्जिक प्लेस filled with memories, the familiar rooms, the favorite corner where you love to sit, neighbors who have watched you grow up, childhood friends who know your stories, and countless little moments shared with your parents and siblings.
1: और सोचिए कि आपको कुछ ही घंटों में ये सब

0: छोड़कर जाना पड़े, जीवन भर की यादें पीछे छूट जाएं और आपको पता भी ना हो कि आप कभी वापस लौटेंगे भी या नहीं, न ठीक से सामान पैक करने का वक्त, न किसी से विदाई और न ही कोई अंदाजा कि अगली सुबह आपको कहां ले जाने वाली है।
1: Well, Sarfarozi, for millions in 1947, this was the harsh reality of partition. Today, India observes Partition Horrors Remembrance Day, also known as Vibhajan Vibhishika Smriti Divas, a day to remember the millions whose lives were torn apart during the partition of India.
0: और अभिषेक, एक तरफ भारत ब्रिटिश शासन के अंत और आजादी का जश्न मना रहा था उस वक्त, तो दूसरी तरफ देश का बंटवारा हो रहा था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ब्रिटिश शासन खत्म हुआ और भारत और पाकिस्तान दो आजाद देशों के तौर पर सामने आए।
1: On 3rd June 1947, Viceroy Lord Mountbatten announced the partition plan. The boundary between India and Pakistan was subsequently drawn by the Redcliffe Commission.
0: और ये बंटवारा सिर्फ नक्शे के बटने से कई ज्यादा था। अगर हम बंटवारे को सिर्फ दो देशों के बनने के तौर पर याद रखते हैं तो हम इसके पीछे की मानवीय कहानी को नहीं समझ पाएंगे।
1: Indeed, Sarfarozi, and millions of people were displaced, families were separated, communal violence, killings, abductions, sexual violence and destruction of property left deep scars. पंजाब एंड बंगाल वे अमंग द वर्स्ट अफेक्टेड रीजंस।
0: और ये सोचना गलत होगा कि बंटवारा रातों रात हुआ, ये कई जटिल राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रमों का नतीजा था जिनमें सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक मतभेद, पाकिस्तान की मांग, द्विराष्ट्र सिद्धांत और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की व्यापक परिस्थितियां शामिल रही।
1: बट हिस्ट्री टीचर्स अस समथिंग डीपली अनकंफर्टेबल व्हेन सोशल टेंशंस ग्रो, व्हेन फियर रिप्लेसेस ट्रस्ट एंड व्हेन पीपल स्टॉप सीइंग वन अनदर As fellow human beings, the consequences can be devastating. That is one of the most important lessons of partition, as hatred rarely stops with words.
0: और अभिषेक, आज यानी 14 अगस्त का दिन साल 1947 में हुए बंटवारे की प्रक्रिया के आखिरी दौर से जुड़ा हुआ है और ये भारत के स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले आता है। 2021 में भारत सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया ताकि उन लोगों को याद किया जा सके जिन्होंने बंटवारे के दौरान अपनी जान, घर और रोजगार गंवा दिए और जो हिंसा और विस्थापन का शिकार हुए।
1: The purpose is not to create blame or hatred. The purpose is to remember, understand and learn. Because India's greatest strength is its diversity. Look at today's India. In the same neighborhood, you may hear different languages. One family may be preparing dal bati, another biryani, another dosa, another momos.
0: बिल्कुल अभिषेक, हिंदुस्तान यानी भारत एक ख्वाब है जहां एक ही देश में मंदिर की घंटियां, अजान, गुरुद्वारे का कीर्तन या चर्च की घंटियां सुनी जा सकती हैं और यही है हमारा भारत। हमारी विविधता हमारी कहानी का कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है बल्कि यही हमारा वजूद है।
1: एंड परहैप्स पार्टीशन रिमाइंड्स अस व्हेन पीपल कम टुगेदर सोसाइटी बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन पीपल टर्न अगेंस्ट वन अनदर ह्यूमैनिटी इज द फर्स्ट थिंग टू सफर। महात्मा गांधी फेमसली सेड An eye for an eye only ends up making the whole world blind. That thought carries a powerful lesson even today.
0: और बंटवारे की यादें लोगों के अनुभवों, इतिहास, तस्वीरों, साहित्य और सरकारी रिकॉर्ड के जरिए जिंदा रहती हैं।
1: And we must remember the past without allowing the pain of the past to create new divisions. People from different communities suffered. Families from different backgrounds were displaced. People across the region lost homes, loved ones, and livelihoods. So remembrance should not mean blame.
0: बिल्कुल अभिषेक, आज का ये दिन ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति व्यक्त करने का है। इससे सहनशीलता, बातचीत, समानता, आपसी सम्मान और शांति से साथ रहने की भावना को बढ़ावा मिलना चाहिए। हम नई पीढ़ियों को बंटवारे के बारे में जिम्मेदारी से बता सकते हैं और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि हम मतभेदों को नफरत में बदलने से रोके।
1: And because Sarfarozi, India's story is a story of thousands of years of people, cultures, languages, traditions and communities living, learning and evolving together. Today we remember those who suffered the horrors of partition, those who lost their homes.
0: आज हम याद कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खो दिया, वो जिन्हें अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो लोग जिन्होंने उन यादों को संजोकर रखा ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि उस दौरान क्या हुआ था। तो आइए इतिहास को याद रखें लेकिन इतिहास को कभी भी इंसानों के बीच दीवार ना बनने दें क्योंकि शायद भारत की सबसे खूबसूरत पहचान यही है, रंग अलग अलग लेकिन तिरंगा एक, भाषाएं अलग अलग लेकिन इसकी भावना एक।
1: Indeed, Sarfarozi, different traditions but one nation. Our diversity is not a weakness, it is a

0: strength. So today let us remember the horrors of partition, learn from its lessons, and work towards an India where diversity is celebrated, differences are respected, and every citizen can live with dignity and peace.
1: Jai Hind.
0: On the eve of the 80th Independence Day, Defence Minister Rajnath Singh will address the soldiers today at 5:10 in the evening. His address will be broadcast on Akashvani's FM Gold 101 MHz and the Indraprastha channel 366.3 meters or subsequently 819 kHz.
1: और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि आज के अंक में हमारे लिए उनके पास क्या खास जानकारी है।
0: The nation will celebrate the 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will lead the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. The flower petals will be showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. After the showering of the flower petals, the Prime Minister will address the nation from the ramparts of the Red Fort. We have a report.
2: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और इस बीच जम्मू कश्मीर में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मनाने के लिए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक तैयारियां की गई हैं। सभी आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और साथ ही नागरिक प्रशासन की ओर से भी जरूरी तैयारियां की गई हैं। एक रिपोर्ट।
3: The overall build-up to this year's Independence Day has been marked by widespread Tiranga rallies and patriotic activities across Jammu and Kashmir. From Srinagar to the line of control in Titwal, the Tiranga rallies and patriotic songs have remained at the center of celebrations. Among the highlights this year were the mega Tiranga Yatra along the Dal Lake in Srinagar, Tiranga Yatra along line of control in Titwal, display of a 2 km long tricolor at the Vular Lake, and Shikara rallies in Dal and Manasbal Lakes. Across all districts, students, government employees, security forces and locals enthusiastically took part in the rallies and related programs. The main event will be held at Srinagar's Bakshi Stadium, while in Jammu, the function will be held at MA Stadium. Ishfaq Shah, Akashwani News, Srinagar.
0: Nagaland has taken a significant step towards strengthening its handloom sector with the launch of Chief Minister's Yarn Bank Scheme. The initiative aims to make quality yarn more affordable and accessible to weavers, while reducing production costs and improving their livelihoods. We have more from a correspondent.
4: The Chief Minister's Yarn Bank Scheme marks a renewed push by the Nagaland government to support the state's handloom sector and empower local weavers. Virtually inaugurating the initiative in Kohima on August 7, National Handloom Day, Chief Minister Nipirio said the scheme reflects the state government's commitment to strengthening handloom and improving the livelihood of local artisans. The Yarn Bank has been established at the District Industry Center at the State Industrial Area, Tuluvi in Dimapur. Under the scheme, cotton, airy silk, muga silk, bamboo fiber and other natural fiber blends will be made available to eligible weavers at mill gate prices with a 15% government subsidy. The initiative is expected to benefit between 5,000 and 10,000 weavers annually through a transparent and reliable distribution system implemented under the National Handloom Development Program in line with the Ministry of Textile Raw Material Supply Scheme's guidelines. The Yarn Bank seeks to provide affordable, high-quality natural yarn and reduce the cost of production for weavers. To avail the benefits, eligible weavers must be at least 18 years of age, actively engaged in weaving and process a valid handloom mark identity card. Registered cooperative societies with a minimum of 10 members will also be eligible to avail the scheme. The Chief Minister

0: Commissioner's yarn bank scheme is expected to provide a stronger foundation for Nagaland's weavers, enhance productivity and contribute to the sustainable growth of the state's traditional handloom sector. For Parikrama, Asunyo from Kohima.
1: और कोहिमा के बाद अब चल रहे हैं गुजरात, जहां डांग में सापुतारा मॉनसून फेस्टिवल में कला, लोक संस्कृति, प्रकृति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। देश के 8 राज्यों के 300 से ज्यादा कलाकारों के साथ डांग में भारत की सांस्कृतिक एकता की एक अनोखी झलक पेश की गई है। 29 अगस्त तक चलने वाले इस फेस्टिवल का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने किया। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: सापुतारा मानसून फेस्टिवल सिर्फ टूरिस्ट के मनोरंजन का जरिया ही नहीं, बल्कि देश की विविधता में एकता की भावना को दिखाने वाला एक कल्चरल फेस्टिवल बन रहा है। हिल स्टेशन सापुतारा प्रकृति, संस्कृति, एडवेंचर एक्टिविटीज और लोक कला के रंगों से सज गया है। इस फेस्टिवल में देश के अलग अलग राज्यों की लोक कला और संस्कृति के साथ साथ डांग की समृद्ध आदिवासी लोक संस्कृति को एक ही मंच पर पेश किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों के 300 से ज्यादा और गुजरात के 110 से ज्यादा कलाकार एक ही जगह पर अपनी कला और सांस्कृतिक विरासत दिखा रहे हैं। डांग आदिवासी लोक कला और अलग अलग राज्यों की लोक परंपराओं, संगीत और नृत्य के रंगों का मेल सापुतारा में एक सुंदर सांस्कृतिक माहौल बना रहा है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दिखाता है। इस साल फेस्टिवल को और बड़ा और परिवार लक्षी बनाने के लिए आर्ट विलेज, नेचर ट्रेल्स, बच्चों के लिए खास एक्टिविटीज, आदिवासी कला संस्कृति, स्थानीय खाना, लोक संस्कृति जैसी कई एक्टिविटीज के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मयूर सोलंकी।
1: श्रोताओं, देश भर की परिक्रमा के बाद अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर। पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वेटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबकिना को सीधे सेटों में हरा दिया। इस जीत के साथ इन्होंने इस सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है।
3: And on to some business news. Benchmark domestic equity indices ended marginally lower on the last trading day of the week. The Sensex dropped 71 points to close at 78,009. The Nifty dipped 30 points to settle at 24,366. The broader market also remained under pressure. The Nifty Midcap 100 index declined 0.5%, while the Nifty Small Cap 100 index slipped 0.7%. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
1: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
4: आज हम स्मरण कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी NMR सुब्बारामन का। उनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1905 को तमिलनाडु के मदुरई में, और वो मदुरई गांधी के रूप में विख्यात थे।
5: गांधी जी के अनन्य अनुयायी सुब्बारामन ने उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाने से इनकार कर दिया और 1922 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1923 में वे मदुरई जिला कांग्रेस समिति के प्राथमिक सदस्य बन गए और 1925 में इसके अध्यक्ष चुने गए।
4: उन्होंने 1930 में वेद नारायणम रैली में भाग लेने के लिए मदुरई से 27 युवाओं का चयन किया।
5: सुब्बारामन 1935 से 1942 तक मदुरई नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। वे आजादी से पहले और बाद भी मदुरई विधानसभा के सदस्य रहे।
4: सुब्बारामन वंचित वर्गों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। तमिलनाडु हरिजन सेवक संघ के माध्यम से उन्होंने छात्रावासों की एक श्रृंखला स्थापित करने में सक्रिय योगदान किया।
5: वे भूदान आंदोलन से भी गहराई से जुड़े रहे और 100 एकड़ भूमि दान में दी। सुब्बारामन गांधी रचना प्रकाशन समिति के सचिव थे, जिसने तमिल में 17 अंकों में गांधी जी की कृतियों और अन्य विशिष्ट रचनाओं का प्रकाशन किया।
4: देश में पहली बार गांधी दर्शन पर पाठ्यक्रम शुरू करने और देश का पहला गांधी संग्रहालय मदुरई में स्थापित करने में भी उनका विशेष योगदान रहा। NMR सुब्बारामन ने 25 जनवरी 1983 को अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी विरासत हमेशा अमिट रहेगी। इस महान गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी को कोटि कोटि नमन।
5: आज हम स्वतंत्रता सेनानी गोदावरी पारुलेरकर का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 14 अगस्त 1907 को हुआ था। वे ब्रिटिश राज के खिलाफ छात्र आंदोलन में सक्रिय रहीं। 1932 में सत्याग्रह में भाग लेने के लिए ब्रिटिश

0: हिंदी फिल्मों के पहले सिंगिंग डांसिंग स्टार शम्मी कपूर रंगमंच के जाने माने अदाकार और फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे बेटे थे। शम्मी कपूर ने वर्ष 1953 में फिल्म ज्योति जीवन से अपने अभिनय पारी की शुरुआत की। वर्ष 1957 में नासिर हुसैन की फिल्म तुमसा नहीं देखा में जहां अभिनेत्री अमिता के साथ इन्होंने काम किया, वहीं वर्ष 1959 में आई फिल्म दिल देके देखो में आशा पारख के साथ भी ये नजर आए।
1: ये चांद का रोशन

0: ये।
1: शम्मी कपूर की मुख्य फिल्में रहीं ब्रह्मचारी, प्रोफेसर, चार दिल चार राहे, रात के राही, चाइना टाउन, दिल तेरा दीवाना, कश्मीर की कली और ब्लफ मास्टर।

0: आज पुण्यतिथि है हवा सिंह की। ये भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक थे। हवा सिंह ने वर्षों तक मुक्केबाजी के खेल को नई दिशा दी और देश का नाम रोशन किया। पहले बॉक्सर के रूप में देश की सेवा की और अंत तक खेल से जुड़े रहे। इन्हें 1966 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया और 1968 में थल सेना अध्यक्ष द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफी प्रदान की गई।
1: And Johnny Lever was also born on this day. He's a legendary Indian actor and comedian, widely regarded as one of the pioneers of stand-up comedy and iconic comic stars in Hindi cinema. He's best known for his impeccable comic timing, animated expressions and slapstick humor, having acted in over 300 films.
0: और जॉनी लीवर को भारत का पहला स्टैंड अप कॉमेडियन भी माना जाता है। इन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी लीवर बॉलीवुड में अब तक 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनकी पहली सफल फिल्म रही बाजीगर और इसके बाद कई अनेक फिल्मों में इन्होंने सहायक हास्य कलाकार के रूप में अभिनय किया। तो आइए आपको सुनाते हैं इनकी एक फिल्म का डायलॉग।
2: योर ऑनर, ये घरों से टीवी चोरी करता है, गुनाह कबूल है?
3: कबूल है, कबूल है, कबूल है, बिल्कुल कबूल है मैं बाप। मैं भगवान के सामने झूठ बोल सकता हूँ मगर आपके सामने नहीं। मैं सच बोलकर जेल जाना पसंद करूंगा लेकिन आप जैसे अच्छे सच्चे नेक और इंसाफ पसंद जज के सामने झूठ बोलूंगा तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जज साहब, नरक में भी नहीं।
1: Yes, and we are also remembering Magic Johnson, who is an American former professional basketball player.

सुनिधि चौहान ने गायन की शुरुआत 4 वर्ष की आयु से की और एक स्थानीय टीवी मेजबान ने उनकी इस प्रतिभा को देखा। उन्हें प्रसिद्धि टेलीविजन गायन प्रतियोगिता मेरी आवाज सुनो से मिली, जिसके बाद इन्होंने पार्श्व गायन क्षेत्र में शस्त्र फिल्म से पदार्पण किया।

0: श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यही समाप्त करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
1: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल है। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम लोगों की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के चमोली में एक जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंग ढहने की घटना पर शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और मलबे के नीचे फंसे लोगों के सुरक्षित निकलने के लिए प्रार्थना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सुरंग में फंसे शेष लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। पीपलकोटी क्षेत्र में THDC के निर्माणाधीन सुरंग में मलबा और पानी भरने से फंसे करीब 22 लोगों में से 19 को बाहर निकाला गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक ग्राम रक्षा कोड VDG सदस्य की कथित तौर पर एक अन्य VDG सदस्य द्वारा झड़प के बाद गोली चलाने से मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की जांच जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 2026 के उद्घाटन में भाग लिया। अमृत उद्यान आम जनता के लिए रविवार से अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साई रमुज तबा।

आज से 79 वर्ष पूर्व हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अथक संघर्ष, त्याग और बलिदान के बल पर हमें आजादी का अमूल्य उपहार दिया है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरोजनी नायडू, रानी गडिनलू और असंख्य ज्ञात अज्ञात वीरों के सपनों और बलिदानों ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। उसके बाद से ही उस विरासत को सुरक्षित रखने और भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करने का दायित्व आज हमारे सशस्त्र बलों के मजबूत कंधों पर है। और साथियों, आपका अनुशासन, आपका साहस, आपका समर्पण और राष्ट्र के प्रति आपकी अटूट निष्ठा प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। विपरीत परिस्थितियों में भी आपका अडिग संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित वातावरण में अपने सपनों को साकार कर सके। राष्ट्र आपकी इस अद्वितीय सेवा, त्याग और समर्पण के लिए सदैव आपका ऋणी रहेगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में वैसे तो मैं समय समय पर अलग अलग अवसरों पर आप सबसे मिलता ही रहता हूं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी से कुछ बातें साझा करना हमेशा एक अलग अनुभव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन हम हमारी आर्म फोर्सेज के किसी एक यूनिट के बारे में ही बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम भारत के डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट को हॉलिस्टिक नजरिए से देख रहे होते हैं। एक राष्ट्र के रूप में भारत ने आजादी के इन 80 वर्षों में जो प्रगति की है वह अपने आप में एक प्रेरक गाथा है। लेकिन यह कहानी तब और सुखद हो जाती है जब हम इसमें भारत के रक्षा क्षेत्र की यात्रा को देखते हैं। साथियों, 1947 से लेकर आज तक हमारे रक्षा क्षेत्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है और हम सब इसके साक्षी हैं। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर मैं आपसे उस इतिहास की नहीं बल्कि वर्तमान की और आने वाले भविष्य की योजनाओं पर बात करना चाहूंगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उनमें भी पिछले 12 वर्षों में आप सबने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारे प्रयासों ने रक्षा उत्पादन को नई दिशा दी है। हमने आयात पर अपनी निर्भरता कम की है और स्वदेशी निर्माण को हमने अभूतपूर्व गति प्रदान किया है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यानी पिछले एक दशक में हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 4 गुना बढ़ चुका है। यह पिछले एक दशक में हुए स्ट्रक्चरल चेंज का प्रमाण है। इस कुल उत्पादन में रक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग 76% हिस्सेदारी रही, जबकि निजी क्षेत्र ने 24% का योगदान दिया, जो पिछले वर्ष के 22% से अधिक है। निजी क्षेत्र की यह बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत है कि रक्षा क्षेत्र में बिजनेस इन्वायरमेंट लगातार बेहतर हो रहा है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे प्रभावशाली प्रमाण हमारा रक्षा निर्यात है। वर्ष 2013-14 में महज 686 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट आज वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी लगभग एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट ने 5,500% से भी अधिक की छलांग लगाई है। आज भारत में 145 डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं और हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स 80 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ सरकार ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम यह लक्ष्य जरूर प्राप्त करके रहेंगे। साथियों, रक्षा क्षेत्र में इतना बड़ा परिवर्तन बिना किसी ठोस निवेश के संभव नहीं था। हमने रक्षा बजट लगातार बढ़ाया है। हमारा डिफेंस बजट वर्ष

2013-14 के 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर 94,588 करोड़ रुपए से बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी हमारा फोकस लगातार बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट जहां 15,283 करोड़ रुपए हुआ करता था, वह 2026-27 में 90% बढ़कर 29,100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सारे आंकड़े भविष्य की रक्षा तकनीकों में भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शा रही हैं। साथियों, रक्षा क्षेत्र में इस निवेश का लाभ हमारे पूरे रक्षा औद्योगिक परिदृश्य को भी मिल रहा है। आज देश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए 16 सार्वजनिक उपक्रम, 462 लाइसेंसी रक्षा कंपनियां और लगभग 17,000 एमएसएमई रक्षा निर्माण से जुड़ी हैं। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, साथ ही अदिति जैसी योजना के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के लिए 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। साथियों, भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। पिछले एक वर्ष में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 8.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान किया है। यह अपने आप में हमारे रक्षा आधुनिकीकरण के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश है। इसके अंतर्गत भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना को और भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे। ये निर्णय हमारे रक्षा क्षेत्र को भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम है। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को गति देने के लिए हमने रक्षा खरीद प्रक्रिया में भी बुनियादी सुधार किए। 2026 में डिफेंस सर्विसेज के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में व्यापक संशोधन कर फील्ड कमांडर्स के अधिकार 100% तक बढ़ा दिए गए। इससे कॉन्ट्रैक्ट्स का क्रियान्वयन तेज होगा और हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशीकरण से जुड़े वित्तीय अधिकार भी दोगुने कर दिए गए हैं, जिससे 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा खरीद को रेवेन्यू रूट के माध्यम से गति मिलेगी। साथियों, हमारी सेनाओं ने बढ़ चढ़कर आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में भाग लिया है। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक के बाद एक कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। वर्ष 2025 और 2026 में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के तहत 4 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी और INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया। ये सभी स्वदेशी युद्धपोत हमारी समुद्री क्षमताओं और सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप का भी कमीशन होना ऐतिहासिक रहा, जो 60% से अधिक स्वदेशी कंटेंट वाला भारत का पहला स्वदेशी पॉल्यूशन कंट्रोल वेजल है। भारतीय वायुसेना के लिए भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक संयंत्र में LCA तेजस मेक 1A की तीसरी और HTT-40 की दूसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू की गई है। हाल ही में इस नई फैसिलिटी में बने पहले LCA मेक 1A को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। एमका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी देना भी हमारे इसी रणनीतिक कदम का उदाहरण है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को समान भागीदारी का अवसर मिलेगा। फरवरी 2026 में टाटा एडवांस सिस्टम्स की एयरबस H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन भी भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम की बढ़त को दिखा रहा है। साथियों, हमारी आर्मी को भी अत्याधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने के लिए हमने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ लगभग 975 करोड़ रुपए की लागत से T-72 और T-90 टैंक्स के लिए
ट्रॉल असेंबली की

खरीद के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। ये अत्याधुनिक माइन क्लियरिंग सिस्टम्स युद्ध के दौरान टैंकों के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार करेंगे, जिससे हमारी आर्मर कोर की मोबिलिटी, सर्विवेबिलिटी और कंबैट इफेक्टिवनेस में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथियों, रक्षा क्षेत्र के इस बदलते परिवेश में डीआरडीओ और हमारी सेनाओं ने भविष्य की युद्ध तकनीकों में भारत को अग्रणी पायदान पर ला खड़ा किया है। हमने अपनी पहली टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जो पारंपरिक हथियारों को प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स में बदलने की क्षमता रखती हैं। एमआईआरवी तकनीक से लैस एडवांस्ड अग्नि मिसाइल के परीक्षण ने हमारी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को नया आयाम दिया है। इसी क्रम में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल रुद्रम 2, एयर टू सरफेस मिसाइल नेवल एंटी शिप मिसाइल यसार और पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट के सफल परीक्षणों ने हमारी मारक क्षमता को अभूतपूर्व मजबूती दी है। भविष्य की तकनीकों में हमने हाइपरसोनिक क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाई है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर के 1200 सेकेंड से अधिक के सफल परीक्षण ने भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता रखने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एयर डिफेंस में हमारी शक्ति स्वदेशी कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के पहले सफल परीक्षण से और बढ़ गई है, जिसके सभी सिस्टम पूर्णतः स्वदेशी हैं। साथियों, आधुनिकीकरण के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करना भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ 125 रणनीतिक आधारभूत संरचनाएं राष्ट्र को समर्पित किए, जो बीआरओ के इतिहास की सबसे बड़ी एकल उपलब्धि है। लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में बनी 28 सड़कें और 93 पुल हमारी सेनाओं की तेज आवाजाही को सुनिश्चित करेंगे। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों से हमारा जुड़ाव और मजबूत हो रहा है। हमारे सैनिकों का सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ाव पहले की तुलना में अब और ज्यादा बढ़ रहा है। सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हर जगह हमारी सेनाएं फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में कार्य करती हैं। देश में कहीं भी जब कभी दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आती है तो हमारी सेनाएं वहां तुरंत पहुंचकर राहत बचाव का कार्य करती हैं। इसलिए साथियों, हम आधुनिकता या आत्मनिर्भरता के जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, उसका मुख्य आधार हमारी सेनाएं, हमारे सैनिक और उनके परिवारजन ही हैं। हमारी सेनाएं हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतिबिंब है। हम अपने वेटरन्स के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पिछले 5 वर्षों में यक्ष सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम बजट में 300% की वृद्धि हमारी इसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के अंतर्गत पिन्यूरी ग्रांट 4000 से बढ़कर 8000 रुपए, एजुकेशन ग्रांट 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए और मैरिज ग्रांट 50000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। यह बदलाव साफ तौर पर हमारे सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखा रहे हैं। साथियों, आज जब हम रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, तो मुझे आपसे यह कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि भारत का रक्षा क्षेत्र भारत की बेटियों के लिए भी सम्मानजनक रास्ते खोल रहा है। 2026 में हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब नेशनल डिफेंस एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पहली महिला कैडेट्स ने सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया। 17 महिला अधिकारियों का यह जत्था साबित करता है कि साहस और नेतृत्व किसी एक जेंडर की सीमा में नहीं बने। हमारी नारी शक्ति की इसी भावना का विस्तार समुद्र प्रदक्षिणा भी है, जहां तीनों सेनाओं का पहला ऑल वेमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन हुआ, जिसमें IASV त्रिवेणी पर सवार 9 महिला अधिकारियों ने 314 डेज में 4 महासागरों में 25,500 नॉटिकल माइल्स की यात्रा पूरी की है। यह अदम्य साहस नारी शक्ति के नए भारत

0: हमारा जीवन प्रतीक है। साथियों, इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए बहुत ही विशेष है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम सब इस अवसर को एक उत्सव के रूप में मनाएं। यह केवल एक वर्षगांठ नहीं है बल्कि हमारी सामूहिक चेतना का उत्सव है। मुझे पूरा विश्वास है यह स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और हम सबके अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा की ऊर्जा को ऐसे ही बनाए रखेगा। अंत में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के वीर जवानों, सम्मानित पूर्व सैनिकों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनेंगे और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपना सार्थक योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का सैनिकों के नाम संदेश सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए वंदे मातरम के 150 वर्ष और देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ अनुभा रोहतगी की विशेष बातचीत।
1: विवेक जी, हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है और ये राष्ट्रीय पर्व उसके जरिए मनाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में नागरिकों में देशभक्ति की जो भावना जगाने के लिए और राष्ट्रीय एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने में हर घर तिरंगा अभियान ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: हर घर तिरंगा अभियान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि ये भारत के सभी नागरिकों को मौका देता है कि वह अपनी देशभक्ति को भारत के तिरंगे के साथ खड़े होकर अभिव्यक्त कर पाएं। और इस अभिव्यक्ति का जो पूरा उत्सव है वो हर घर तिरंगा के रूप में हर वर्ष मनाया जा रहा है और इस वर्ष उसमें खास उत्साह है क्योंकि इस बार हर घर तिरंगा के साथ जो वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए हैं उसको भी हम साथ में मना रहे हैं। तो भारत के सभी नागरिक, सभी युवा, सभी लोग मिलके तिरंगे के साथ साथ वंदे मातरम का उत्सव भी मना रहे हैं और इस बार जो सेल्फीज अपलोड हो रही हैं उनके साथ साथ जो सर्टिफिकेट हर घर तिरंगा के पोर्टल से जाता है उसमें वंदे मातरम के लिरिक्स और वंदे मातरम का गायन भी जा रहा है और नागरिकों को ये भी सुविधा है कि वंदे मातरम का गायन करके भी, रिकॉर्ड करके भी वो उस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस बार बहुत अच्छा हमें प्रतिसाद मिला है जो नागरिक भाग ले रहे हैं और पहले 2 दिन में ही 3 करोड़ से ज्यादा जो भागीदारी हमारे पोर्टल पे इस कैंपेन में हो गई है और इस बार रिकॉर्ड कैंपेन रहेगा जो पिछले सभी 5 सालों में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उत्सव इस बार हर घर तिरंगा के कैंपेन में बनेगा।
1: आपने भी जैसा कहा कि इस साल हर घर तिरंगा अभियान जो है उसका खास महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की और हमारी पहचान से जुड़े ये 2 प्रतीक हैं। इन दोनों प्रतीकों का एक साथ आना, आप इसे कैसे देखते हैं?
2: देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। असल में वास्तविकता यह है कि इस बार तीनों प्रतीक साथ होंगे, भारत का तिरंगा, भारत का नेशनल एंथम जनगणमन और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तीनों को सेलिब्रेशन में एक साथ सम्मिलित किया जाएगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किला की प्राचीर पे आएंगे तो सबसे पहले वंदे मातरम का गायन होगा, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी झंडा वंदन करेंगे और झंडा वंदन के तुरंत बाद जब तिरंगा फहराया जाएगा तो नेशनल एंथम का गायन होगा। तो ये जो तीनों भारत के प्रतीक हैं, जो भारत की सॉवरेनिटी के, भारत के नागरिकों के स्वाभिमान के और भारत की स्वतंत्रता के और भारत के जो विश्व में जो भारत का गौरव है उसको स्थापित करने के जो तीनों प्रतीक हैं, तीनों प्रतीक एक साथ पहली बार इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में इकट्ठे मनाए जाएंगे।
1: संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम को गाने के लिए एक ऑनलाइन

0: ट्यूटोरियल अपलोड किया है। हम जानना चाहेंगे ये ट्यूटोरियल क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई।
1: वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका विभाजन हो गया था। इस राष्ट्रीय गीत के सिर्फ दो ही जो पहले पैरा थे उसका गायन देश भर में होता था और जो बाकी का राष्ट्रीय गीत था उसका गायन भारत में नहीं होता था। इस बार जब वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का नेतृत्व किया कि हम वंदे मातरम का पूरा गायन करेंगे और उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है उसका केवल गायन नहीं करेंगे, तो चूंकि पूरे वंदे मातरम का गायन होना है इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसके जो पूरे वंदे मातरम के लिरिक्स हैं और उसका गायन का स्वरूप है उसका सभी नागरिकों को पता हो, इसलिए उसका ट्यूटोरियल हमने इस पोर्टल पे रखा है और ये सुविधा दी है कि नागरिक अभ्यास कर सकें, उसके पूरे लिरिक्स को याद कर सकें और उसको अभ्यास कर सकें वंदे मातरम का गीत का, और जिस सुर में और जिस संगीत में सही मायने में वंदे मातरम का गायन होना है उसको सीख के वो गायन करें, उसका गायन सार्वजनिक भी हो और उनका गायन जो है वो अपने स्तर पे भी करके उसको अपलोड पोर्टल पे करें।
0: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भारत के नागरिकों और खासकर भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना को और कैसे गहरा कर सकता है।
1: देखिए, जो हर घर तिरंगा का कैंपेन है और वंदे मातरम का गायन है उससे जो गर्व का अनुभव होता है और जो उससे सामाजिक सामंजस्य और सामाजिक एकता का अनुभव होता है और देश के प्रति और देश की जो अस्मिता है उसके प्रति जो गौरव की भावना होती है और भारत माता के प्रति जो सम्मान की भावना है उससे नागरिकों में अपने देश की, अपने कौम की, अपने समाज की, अपने आप को आगे ले जाने की जो भावना उत्पन्न होती है उस सब का प्रतीक वंदे मातरम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम का जो पूरा जो स्वरूप आया वो वंदे मातरम से आया और वंदे मातरम ही भारत के जो तिरंगा है, जब झंडा भारत का बनना शुरू हुआ स्वतंत्र भारत का, उसमें भी वंदे मातरम का योगदान हुआ। असंख्य भारत के जो स्वतंत्र वीर हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया उनके लिए वंदे मातरम ही वो नारा था जिसके ऊपर उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया। तो इसलिए वंदे मातरम एक पूरा स्वरूप है जो देश को गर्व प्रदान करता है, देश की स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को हम सादर याद करते हैं और देश के भविष्य में और देश को आगे ले जाने के लिए जो भावना होनी चाहिए वो भावना हमें वंदे मातरम के गायन से आती है।
0: हम सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का हालिया सोशल मीडिया पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री का वीडियो नागरिकों को क्या संदेश देता है और इस अभियान को गति देने में प्रधानमंत्री की अपील कितनी महत्वपूर्ण है?
1: जो हर घर तिरंगा का अभियान है उसका नेतृत्व पूरे प्रारंभ से ही माने प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, उन्हीं के आह्वान से ये पूरी कैंपेन शुरू हुई है और इस बार भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है पूरे देशवासियों को कि वो हर घर तिरंगा में बढ़ चढ़कर भाग लें, उसका बहुत बड़ा जो रिस्पांस है वो हमारे देश के नागरिक दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, इस बार के हर घर तिरंगा कैंपेन में जो पार्टिसिपेशन है वो पिछले बार से भी बहुत ज्यादा है, बहुत उत्साहपूर्ण है और साथ साथ वंदे मातरम का गायन भी हो रहा है और वंदे मातरम का पूरा गायन हो रहा है और उसका जो स्वरूप है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कानूनी तौर पे जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये सारी चीजें भारत के गौरव को बढ़ाने वाली हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना है उसमें देशवासियों का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने वाली है।
0: हम क्योंकि नागरिकों के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो इस अभियान को सफल बनाने में आप आम जनता की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
1: देखिए, ये तो जो अभियान है ये है ही भारत के आम लोगों का और देशवासियों का, उन्हीं की भूमिका है, उन्हीं का भागीदारी है जिससे ये अभियान सफल हो सकता है। और ये केवल अभियान नहीं है जो हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के दिन पे मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के सप्ताह में मना रहे हैं, ये अभियान ऐसा है जो सतत चलने वाला है, जो भारतीयों की आत्मा और भारतीयों के जो कर्म है उनको डिटरमिन करने वाला है। इसलिए भारतीयता की भावना, भारत के ऊपर गर्व की भावना, अपने राष्ट्र के ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने की भावना बनाने के लिए ये अभियान है और ये जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है

0: उसको पूरा करने के लिए और उसकी एक मजबूत जो नींव है उसको स्थापित करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, जिसमें सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को, युवा वर्ग को बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए।
1: ये तो हम सब जानते हैं कि ये अभियान जो है हर घर तिरंगा, ये नागरिकों को अपने घरों और कार्यस्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन बहुत से लोग अब भी राष्ट्रीय ध्वज को सही तरीके से फहराने के, उसको संभालने के नियम कानून नहीं जानते हैं। तो क्या संस्कृति मंत्रालय ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि भारत के ध्वज संहिता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ खास अभियान चलाया है या कोई खास कदम उठाए हैं?
0: देखिए, अधिकार अपने घर पे झंडा फहराने का ये जो कॉलोनियल लॉ था और कॉलोनियल रूल्स थे उसमें नहीं था। ये स्वतंत्र भारत में जब इस बात पे चर्चा हुई कि हर भारतीय नागरिक को अपने घर पे और कार्यस्थल पे तिरंगा लहराने का अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार मिला और उस अधिकार मिलने के बाद अब सारे भारतीय इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने घरों में, अपने कार्यस्थल में और अन्य स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर जो भारत के तिरंगा को लहराने में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि हम तिरंगे का पूरा सम्मान करें और फ्लैग कोड का पालन करें। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है उसमें डूज एंड डोंट्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं और ये बताया गया है कि क्या फ्लैग कोड के रूल्स हैं और किस तरह से हम तिरंगे को ससम्मान हम अच्छे से फहरा सकते हैं और फहराने के बाद जो उसका सम्मान होना चाहिए जब हम उसको उतारें वो कैसा होना चाहिए, जो तिरंगा झंडा है उसका स्वरूप, उसका साइज, जिस मटेरियल पे तिरंगा है वो कैसा मटेरियल होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने डूज एंड डोंट्स में दी हैं और हमेशा ये प्रयास रहा है कि कैंपेन के साथ साथ हम सम्मानपूर्वक अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं और सम्मानपूर्वक उसको रखें। ये सारे प्रावधान भी हमने अपने स्तर पर करने का प्रयास किया है।
1: ये अभियान अभी 17 अगस्त तक चलेगा, तो हम जानना चाहेंगे कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा वो क्या विभिन्न कार्यक्रम हैं जो इस पूरे सप्ताह में आप लोगों ने आयोजित किए।
0: ये केवल संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ही आयोजन नहीं कर रहा, भारत सरकार के सभी विभाग और देश के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज भी बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं। तो जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में कार्यक्रम हो रहे हैं, जो हमारे सीएपीएफ और आर्मी हैं उनके बैंड्स का प्रदर्शन पूरे देश भर के नगरों में और गांवों में हो रहा है। इसके अलावा जो हमारी पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनमें कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन होगा 17 तारीख को, बाइक रैली का आयोजन हुआ जो संस्कृति मंत्रालय ने किया। इसके अलावा जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे है उसका आयोजन हो रहा है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि पूरे भारतवर्ष को ये याद रहे कि जो हमारे ऊपर विभीषिका आई, हमारा अब ये कर्तव्य है कि ऐसी विभीषिका पुनः ना हो, उसके ऊपर हम काम करें। और ये पूरे भारत का उत्सव है जिसमें सभी प्राइवेट संस्थाएं, सभी जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, उनको सम्मिलित किया गया है और विभिन्न प्रकार के आयोजन हर स्तर पर हो रहे हैं।
1: जैसा भी आपने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के जो समारोह है उसमें विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस यानी कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो 14 अगस्त को यानी कि आज मनाया जा रहा है, तो हर भारतीय और खासकर युवा पीढ़ी के लिए इस दिन को ध्यान में रखना, इस दिन को याद करना क्यों महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, जब भारत की स्वतंत्रता आई उसके साथ साथ ये विभीषिका भी आई जिसमें भारत को धर्म के आधार पर बांटा गया और जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ तो उसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग उसमें मारे गए और लाखों लोग डिस्प्लेस हुए। ये समाज के लिए एक सबक है और देश के लिए एक सबक है कि एकता और सामाजिक सामंजस्य इस देश को आगे बढ़ा सकता है। और ऐसा सबक हमें सीख लेना चाहिए कि जब देश के विभाजन को हमने होने दिया और इस प्रकार की भावनाओं को विभाजित हमने होने दिया और ऐसी व्यवस्था में हम रहे कि हमारे देश को विभाजन की विभीषिका का दंश सहना पड़ा, अब हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि ऐसा दंश पुनः ना हो और हमने जो विभीषिका सही ऐसा मौका दोबारा ना आए। इसलिए सारे समाज को, सारे देशवासियों को अपने आप को देश के लिए समर्पित करके, भारत के लिए समर्पित करके

0: भारत की एकता अखंडता और भारत को विकसित बनाने में अपने आप को लगा के ही हम ये सबक सीख सकते हैं कि आगे हम ऐसी कभी भी इस प्रकार की दुर्घटना अपने देश में नहीं होने देंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस अवसर पर यानी कि विभीषिका स्मृति दिवस पर लोगों को श्रद्धांजलि दी और इस श्रद्धांजलि में उन्होंने ये भी कहा, मैं उनके शब्द दोहरा रही हूं, इससे उबरते हुए लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा किया, मुश्किलों को कामयाबी में बदला और हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी जिंदगी का सफर हमें इंसानी जज्बे की ताकत की याद दिलाता है। विवेक जी, ऐसे समय में जब भारत का ध्येय है 2047 तक विकसित भारत बनना, प्रधानमंत्री का ये संदेश कितना प्रासंगिक है जो उन्होंने इस विभीषिका से गुजरे हुए लोगों की जज्बे की जब बात करते हैं, वो कितना प्रासंगिक है?
0: वो प्रासंगिक इसलिए है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार की कठिनाई और जिस प्रकार की समस्या जो लोग विस्थापित होकर आए उन्होंने सही और फिर भी उन्होंने तरक्की का रास्ता अपनाया और भारत के विकास में वो योगदान उन्होंने दिया और दे रहे हैं, उसी प्रकार पूरे समाज को मेहनत से और अपनी भावना है तरक्की की उससे आगे बढ़ने से हम भारत को विकसित भारत की तरफ ले जा सकते हैं। तो हमारे लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए कि जो कठिनाइयां हैं वो हमें रोक नहीं सकती, कठिनाइयां हमारे लिए प्रेरणा बनेंगी और हम उन कठिनाइयों को, उन चुनौतियों को पार करके अपने भारत को, अपने देश को विकसित बना पाए, इस हेतु अगर हम कार्य करेंगे तो हम सफल हो सकते हैं।
1: हर घर तिरंगा अभियान 2026 के अंतर्गत एक प्रमुख पहल हुई है सूर्य पथ तिरंगा, हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं।
0: देखिए, भारत का तिरंगा पूरे विश्व भर में 15 अगस्त को फहराया जाएगा। भारत के सभी जो एम्बेसीज हैं, मिशन्स हैं पूरे विश्व में और जो हमारे भारतीय लोग जो अलग अलग देशों में रहते हैं वो सब भारत का तिरंगा फहराएंगे। पर ये तिरंगा जब फहराया जाएगा तो समय का अंतर है, जब सूर्य का उदय ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, जो पूर्वी हेमिस्फीयर है क्योंकि ईस्ट से सूर्य का उदय होता है, उस समय भारत में अभी अंधेरा होगा। तो जो सूर्य पथ तिरंगा है वो सूर्य के पथ के साथ साथ तिरंगा के फहराने को हम मनाएंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो पूरा ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर से जब तिरंगा फहराया जाएगा उसका सम्मान होगा और जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे तिरंगा भी अलग अलग विश्व के भागों में अपना स्वरूप लेता जाएगा और फहराता जाएगा और ऐसे चलता चलता वो भारत में आएगा और फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। उस पूरी प्रक्रिया को सूर्य पथ तिरंगा का नाम दिया गया है। भारत के तिरंगे को जो हम सम्मान देते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन और जो हम सैल्यूट करते हैं, वो सैल्यूट भारत के तिरंगे को वो पूरे विश्व भर में सूर्य के पथ के साथ साथ होता हुआ पूरे विश्व को दिखेगा और बताया जाएगा।
1: सूर्य पथ तिरंगा के अलावा भी क्या 2022 में जब ये हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ था तो तब से अब तक, इस बार जैसे हमने बात अभी करी कि सूर्य पथ तिरंगा एक नई पहल है, उसके अलावा क्या बदलाव हुए इन 5 सालों में और उनका कितना असर आपको दिखाई दे रहा है?
0: जब हर घर तिरंगा अभियान चला था तो तब ये चिंता होती थी कि हमें उतने तिरंगे झंडे मिल पाएंगे जो हम अपने नागरिकों को दे पाए, तो तिरंगे का प्रोक्योरमेंट और तिरंगे की सप्लाई चेन है उसको बनाने का चैलेंज था। पर आप देखें कि 5 साल की कैंपेन के बाद अब वो चैलेंज खत्म हो गया है, हर नागरिक अपना तिरंगा खुद ढूंढ रहा है, ले रहा है और अपना रख रहा है और उसको फहरा रहा है। दूसरा, पहले जो स्टेक होल्डर्स थे, जो पूरा कम्युनिकेशन का नेटवर्क था वो बनाया गया, अब वो नेटवर्क पूरा कंप्लीट बन गया है। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं वैसे ही पूरा देश एक्टिवेट हो जाता है, सभी संस्थाएं, सभी वर्ग के लोग, सभी एसोसिएशंस, सभी राज्य, सभी सरकारें, सभी नगर पालिकाएं, सभी पंचायत खूब धूमधाम से हर घर तिरंगा में सम्मिलित हो जाते हैं। तीसरा, जो सबसे बड़ा अंतर आया है कि जो भावना है तिरंगे के प्रति और जो सम्मान है वो एकदम से उसमें बहुत विस्तार हुआ है। तो हर छोटा बच्चे से लेके सबसे बड़ी उम्र के नागरिक भी तिरंगे को लेके सम्मान से इन दिनों में हर घर तिरंगा कैंपेन में सम्मिलित होते हैं। फिर हर वर्ष हर घर तिरंगा कैंपेन में कुछ ना कुछ नया जुड़ता गया, जैसे इस बार वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ को जोड़ा गया। तो इस तरह से ये जो कैंपेन है इसका विस्तार होता जा रहा है और आने वाले वर्षों में और अधिक विस्तार इस कैंपेन का होगा, जो भारतीयों को उनकी जो देश

0: के प्रति उनके कर्तव्य हैं और जो देशभक्ति के प्रति जो सम्मान है उसको हम आगे आने वाले समय और अच्छे से बढ़ाते रहेंगे। और ये ऐसा कैंपेन है जो भारत को विकसित भारत बनाने में एक बड़ा योगदान कर पाएगा।
1: आपने बताया कि ये जो कैंपेन हर घर तिरंगा जो पोर्टल पे संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पे जो इसके प्रतिक्रिया आ रही है बहुत ही उत्साहवर्धक है। उसमें कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी रिएक्शन जो आप हमसे साझा करने चाहें जो बहुत अलग हैं या जिनसे बहुत एक उत्साह बढ़ता है।
0: विभिन्न प्रकार के आयोजन जो अलग अलग देश के हिस्सों में हो रहे हैं और उनको जो अपलोड वहां के नागरिक और वहां के एसोसिएशंस कर रही हैं वो बहुत प्रेरणादायी आयोजन हो रहे हैं। मैंने आज देखा भोपाल में लेक के ऊपर एक बहुत अच्छी उन्होंने संरचना बना के हर घर तिरंगा को सेलिब्रेट किया। लद्दाख में जो हमारे नागरिक हैं उन्होंने बहुत सुदूर पहाड़ के एक क्षेत्र में बहुत सुंदर तिरंगा का स्वरूप बना के उसको सेलिब्रेट किया, उसको अपलोड किया। दक्षिण में जो हमारे नागरिक हैं बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हर घर तिरंगा कैंपेन को आगे बढ़ाया। फिर अभी पोंगल का उत्सव हुआ, अभी नवरोज आ रहा है, तो उसके साथ भी जो हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं उनके साथ भी हर घर तिरंगा की रंगोलियां बन रही हैं और उनको साथ में जोड़ के हमारे नागरिक हर घर तिरंगा कैंपेन को भी साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो विभिन्न तरीके से विभिन्न प्रकार से जो भारत के नागरिक हैं वो हर घर तिरंगा कैंपेन में सम्मिलित हो रहे हैं और बहुत सारी प्रेरणादायी तस्वीरें अपलोड हो रही हैं, स्टोरीज अपलोड हो रही हैं और बहुत उत्साह से हमारे नागरिक भाग ले रहे हैं। मेरा आह्वान है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व हमें प्रदान किया इस कैंपेन में सम्मिलित होने के लिए, उसमें सभी भारत के नागरिक बहुत अच्छे से और बढ़ चढ़कर और सभी वर्ग के लोग इसमें इसी तरह से और जोर शोर से सम्मिलित होंगे। और इस बार हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा भागीदारी इस साल के हर घर तिरंगा कैंपेन में हुई है।
1: इस अभियान में युवा वर्ग को साथ जोड़ने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संख्या में शामिल करने के लिए, खासकर स्कूल और कॉलेजेस के लिए क्या सरकार ने कोई खास कदम उठाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग इसमें शामिल हो, बच्चे शामिल हों?
0: मुझे जो लगता है कि सरकार को बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी इस साल। ये इतना अच्छा युवा वर्ग का इसमें उत्साह है कि जगह जगह स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सार्वजनिक स्थानों में युवा स्वतः ही इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा रिस्पांस युवा वर्ग का हर घर तिरंगा कैंपेन में है। तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा कोई आउटवर्ड प्रयास करने की आवश्यकता है। एक बार आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उस आह्वान का ही इम्पैक्ट है कि युवा वर्ग बहुत अच्छे से इस कैंपेन में सम्मिलित हो रहा है।
1: हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारा ध्येय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक ध्येय, एक मिशन दिया है कि 2047 तक विकसित भारत बनना है। ऐसे समय में हम जब भारत की स्वतंत्रता दिवस के हम जश्न मना रहे हैं, कितना जरूरी है कि हम अपना अतीत ना भूलें, हम अपने स्वतंत्रता संग्राम, उस बंटवारे के दर्द को और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जो एक राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होती है लोगों के अंदर, इस भावना को साथ लेकर आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर आगे बढ़ें।
0: ये जितना भी पूरा कैंपेन है और जो भावना जागृत हो रही है उसका जो नेचुरल जो रिजल्ट है वो यही है कि हमें आत्मविश्वास प्राप्त हो रहा है, हमें आत्मविश्वास और मिलेगा, हमें जो देशभक्ति की भावना है, जो एकत्व की भावना है, एकता की भावना है, इकट्ठे मिलके आगे बढ़ने की भावना है, वो इससे सुदृढ़ हो रही है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब हम अपने देश में और अपने आप में हम आत्मविश्वासी होते हैं तो हमें जो आत्मनिर्भरता है उसकी भावना भी स्वयं ही आती है। क्योंकि कई बार ये अगर भावना हो कि हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस होता है, हमारे यहाँ जो है वो विदेश में कोई चीज है उससे इन्फीरियर क्वालिटी का है या दोयम दर्जे का है, जब ये भावना आती है तो आत्मनिर्भरता की भावना कमजोर होती है। पर जब हमें आत्मविश्वास आता है और अपने देश पे गर्व होता है, अपने देशवासियों पे गर्व होता है और अपने देश में बनने वाले उत्पादों पे गर्व होता है तो आत्मनिर्भरता अपने आप आती है। उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। तो आपकी बात सही है कि जो ये कैंपेन है वो चाहे हम वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हों या हम हर घर तिरंगा कि कैंपेन में हिस्सा ले रहे हों, अपनी सेल्फी अपलोड कर रहे हों तिरंगे के साथ या वंदे मातरम को गा के हम अपलोड कर रहे हों, इन सभी जो एक्टिविटीज हैं उनका रिजल्ट यही है कि हम भारत के निर्माण के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित करने की भावना से काम कर रहे हैं। और इस भावना से अगर हम काम करते हैं तो आत्मनिर्भरता, भारत का विकास और इसके साथ विकसित भारत बनने का जो माननीय प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री जी का विजन है उसकी पूर्ति, ये सभी उद्देश्य हमारे सफलता की ओर बढ़ते हैं।
1: हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़े ये तीनों कार्यक्रम, चाहे वो हर घर तिरंगा अभियान हो, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का समारोह हो, या फिर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हो, भारत के गौरवशाली अतीत को एकजुट, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से जीवंत भविष्य की उसकी आकांक्षाओं से कैसे जोड़ते हैं ये तीनों?
0: देखिए, जो ये तीन चीजें इकट्ठी हुई हैं, तिरंगा हमारे देश का सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, वंदे मातरम हमारा न केवल भविष्य है बल्कि वो हमारे अतीत की धरोहर भी है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज भी है, और जो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे है, जो हम विभाजन की विभीषिका को याद करते हैं, वो हम अपने आप को सजग करते हैं, वो अपने आप को सावधान करते हैं कि जो गलती पूर्व में हुई, जो गलती उस समय हुई, वो गलती दोबारा ना हो और समाज का ऐसा निर्माण हो कि उसको दोबारा कोई ना तोड़ पाए, उस भावना को वो सुदृढ़ करती हैं। तीनों ही जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और तीनों ही जो हर घर तिरंगा के इस बार के उत्सव में सम्मिलित हैं, वो तीनों ही एक ऐसी दिशा हमारे नागरिकों को देती हैं जो देश की एकता, अखंडता, देश का सम्मान और देश के स्वाभिमान के लिए काम करने के लिए सभी को प्रेरित भी करती हैं।
1: विवेक जी, आखिरी सवाल, भारत का युवा, जो भारत का भविष्य है और जो विकसित भारत के इस मिशन को पाने में जिनकी बहुत अहम भूमिका होगी, इस अवसर पर, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, क्या आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही संदेश दिया है उसी को दोहराना चाहूंगा कि जो भारत के युवा हैं वो अपने आप को ये ना माने कि उनको सिर्फ आज का भारत देखना है, वो भारत के भविष्य के निर्माता हैं और भारत के भविष्य की धरोहर के सुरक्षा रखने के भी उनका कर्तव्य है। वो अपनी संस्कृति से सीख लें, जो विरासत में हमने पाया है, जो हमारी बहुत ही समृद्ध विरासत है, उसको अपना के अपने आगे बढ़ने का रास्ता अपनाएं और ऐसा रास्ता अपनाएं जिसमें जो भारत को विश्व के शीर्ष पे हम ले जा सकें उसकी तरफ वो अपना कंट्रीब्यूशन करें। और मैं ये भी मानता हूं कि जो भी कार्य हम अपने लिए चुन लेते हैं उसी कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करके आप समाज में अग्रणी बन सकते हैं। कोई भी एक प्रोफेशन या कोई भी एक कार्य किसी दूसरे प्रोफेशन या दूसरे कार्य से बेहतर नहीं होता। तो जिसको आपने चयन किया, अगर आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने हेल्थ के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने किसी और प्रोफेशन को आपने अपना प्रोफेशन बनाया, तो किसी भी प्रोफेशन में, आर्ट में, कल्चर में, कॉमर्स में, साइंस में, या जो भी प्रोफेशन आप चुनते हैं, हर एक प्रोफेशन में शीर्ष पे जाने का अवसर रहता है। अगर आप मेहनत करेंगे, शीर्ष पे जाएंगे, तो आपको रिकग्निशन मिलेगा। कोई एक प्रोफेशन या एक क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र से बेहतर नहीं है। हर एक क्षेत्र को अपना के, किसी भी क्षेत्र को जो आपने चुन लिया, उसमें आप मेहनत करेंगे तो शीर्ष पे पहुंच सकते हैं और देश की तरक्की और देश को विकसित बनाने में आप योगदान कर सकते हैं। इसलिए पूरे मन से देश के सम्मान को अपने मन में रखते हुए, देशभक्ति को अपने मन में रखते हुए, तिरंगे के सम्मान को आगे बढ़ाते हुए आप मेहनत करें, जो आपके विचार हैं उसमें आप सकारात्मकता रखें और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करते रहें और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करते रहें।
1: विवेक जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।

0: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदक की भी घोषणा की गई है। 664 सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए पदक देने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ई रुपए का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में सरकार की ये महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल का उद्देश्य गरीबों के लिए सरकारी लाभार्थी योजनाओं से बिचौलियों को हटाना है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने वस्त्र क्षेत्र के विकास में नई गति लाने के तरीकों के साथ साथ नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत विकास, निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और फरीदाबाद पुलिस आयुक्त को जहरीली गैस से एक व्यक्ति की कथित मौत और अन्य के घायल होने की घटना पर नोटिस जारी किया है। घटना का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर जांच की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक ग्राम रक्षा गार्ड की एक अन्य गार्ड के साथ झड़प में मौत हो गई और दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जुलाई महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मुद्रा स्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा दरों में कमी आना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu will address the nation this evening on the eve of 80th Independence Day. The address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashvani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan, first in Hindi and then in English. This will be followed by the telecast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashvani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks.

0: 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। रेलवे विद्युतीकरण में भी बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले लगभग 20% रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ था, जो जुलाई 2026 तक बढ़कर 99.6% हो गया। देश में 162 वंदे भारत, 2 वंदे भारत स्लीपर और 72 अमृत भारत सेवाएं चल रही हैं। वहीं जुलाई 2026 तक 2,633 किलोमीटर पर कवच वर्जन 4.0 लागू किया जा चुका है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर के रूट पर विकसित किया जा रहा है। इसकी डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुने गए 1,340 स्टेशनों में से 18 जुलाई 2026 तक 261 स्टेशनों का पुनः विकास पूरा हो चुका है। जुलाई 2026 में देश में बनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन भी लॉन्च की गई। श्रोताओं, अब रुख करते हैं उन सड़कों की ओर जो देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ते हुए विकास और संपर्क को नई गति दे रही हैं। पुल और सुरंगें भी इस बदलाव की अहम कड़ी हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं।
1: भारत का कुल सड़क नेटवर्क 63.73 लाख किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में लगभग 61% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2014 में ये लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 146,572 किलोमीटर हो गई। 4 लेन और उससे ज्यादा लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई भी 2014 के 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 45,516 किलोमीटर हो गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2000 से 2014 के दौरान 3.86 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, जबकि 2014 से 2026 के दौरान ये लंबाई बढ़कर 4.11 लाख किलोमीटर हो गई। सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 2029 तक 25,000 ऐसी बस्तियों को सड़क संपर्क देना है जहां अभी सड़क नहीं पहुंची है। भारतमाला योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक 22,590 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। 2025 में बना चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। ये चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बना है और इसकी लंबाई 1,315 मीटर है। इसी तरह अंजी खड ब्रिज जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है और इसमें 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। जम्मू कश्मीर में 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग हर मौसम में आवाजाही की सुविधा देती है। 2024 में 2.32 किलोमीटर लंबे सुदर्शन सेतु ने गुजरात में ओखा को बेट द्वारका से जोड़ा। 2020 में बनी 9.09 किलोमीटर लंबी अटल टनल 10,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ये मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। वहीं 2017 में बनी 9 किलोमीटर लंबी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जम्मू और श्रीनगर के बीच हर मौसम में खुली रहती है और यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम करती है।
0: श्रोताओं, अब बात करते हैं हवाई संपर्क की। 15 जुलाई 2026 तक उड़ान योजना ने 679 रूटों के जरिए 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरड्रोम को जोड़ा है। इससे 1,68,00,000 से ज्यादा यात्रियों को फायदा हुआ है। 2014 में देश में 74 चालू हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या जुलाई 2026 में बढ़कर 165 हो गई। 2014 के बाद 25 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत करने के लिए मार्च 2026 में संशोधित उड़ान को मंजूरी दी गई। इसके तहत 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड बनाने की योजना है। श्रोताओं, अब शहरों में परिवहन की बात करें तो मेट्रो नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार हुआ है। देश का मेट्रो नेटवर्क 2014 के 248 किलोमीटर से बढ़कर 2026 में 1,155 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। मेट्रो कनेक्टिविटी वाले शहरों की संख्या 5 से बढ़कर 26 हो गई है और रोजाना यात्री

0: की संख्या 1,15,00,000 से ज्यादा है। 2024 में कोलकाता ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल शुरू की, वहीं कोच्चि ने भारत का पहला वाटर मेट्रो सिस्टम शुरू किया। अब बात समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की। बड़े बंदरगाहों की कार्गो संभालने की क्षमता 2014 के 873 MMTPA से लगभग दोगुनी होकर 2026 में 1,728 MMTPA हो गई है। बंदरगाहों पर जहाजों के टर्न अराउंड समय में भी सुधार हुआ है। ये 94 घंटों से घटकर 2025-26 में 48.8 घंटे रह गया। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 2014 के 5 से बढ़कर 2026 में 111 हो गई। भारत 2025 में दुनिया का नंबर 1 जहाज रिसाइकलिंग देश भी बन गया। श्रोताओं, अब इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उस महत्वपूर्ण पहलू को जो सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों को उद्योग तथा व्यापार से जोड़ते हुए देश की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और औद्योगिक क्षमता को मजबूत करता है।
1: पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान ने 3,291 से ज्यादा डेटा लेयर्स का इस्तेमाल करके 58 मंत्रालयों और विभागों में एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की है। 11 अगस्त 2026 तक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के जरिए लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 396 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 198 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 7 औद्योगिक कॉरिडोर में 20 औद्योगिक स्मार्ट सिटीज को भी मंजूरी दी गई है। मार्च 2026 में 100 नए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भव्य योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। 24 जुलाई 2026 को 3030 करोड़ रुपए के बजट के साथ भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी गई। विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्क्स का भी प्रस्ताव रखा गया है। श्रोताओं, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में नल से जल पाने वाले घरों की संख्या 2019 में 3,23,00,000 थी, जो 10 अगस्त 2026 तक बढ़कर लगभग 15,91,00,000 हो गई। मार्च 2026 में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 12 अगस्त 2026 तक 99,25,000 घर बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लगभग 96% घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंजूर किए गए 3,91,00,000 घरों में से 12 अगस्त 2026 तक 3,13,00,000 घर बनकर तैयार हो चुके हैं। 2019 में शुरू किए गए स्वामी फंड के जरिए जून 2026 तक 63,000 से ज्यादा घर उपलब्ध कराए गए, जिससे लगभग 2,52,000 लोगों को फायदा हुआ। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत मार्च 2026 तक 7,790 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।
0: श्रोताओं, अगर पूरे परिदृश्य को एक साथ देखें तो यही बदलते भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की नई तस्वीर है। सड़कों से आगे बढ़ता हुआ बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत क्षमता और एकीकृत विकास की ओर बढ़ता भारत। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अरुण दीप। नमस्कार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः पदासीना द्रौपदी मुर्मुः 80तम स्वतंत्रता दिवसस्य पूर्व संध्यायाम् अद्य राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः दिल्ल्याः रक्तदुर्गात् स्वातंत्र्य दिवसावसरे राष्ट्रस्य नेतृत्वं करिष्यति। अद्य विभाजन विभीषिका स्मरण दिवसः आचर्यते। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षामंत्री च विभाजनस्य समये प्राणत्यागं कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धांजलिम् अर्पयन्ति। भूकंपानन्तरं सहायोद्धारार्थं क्रियमाणान् प्रयत्नान् समर्थनाय भारतं कोलंबिया देशं प्रति 20 मैट्रिक टनमितं सहाय्य सामग्रीणां प्रथमं खण्डं प्रेषयति। अपि च अद्य छत्तीसगढ़ राज्ये पूर्वी मध्य प्रदेशे, हिमाचल प्रदेशे, झारखण्डे, उत्तर प्रदेशे, उत्तराखण्डे च अत्यधिक वृष्टेः संचेतना प्रसारिता अस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। अशीति तमे स्वतः

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अनुभा.
0: थैंक यू अमित. Benchmark domestic indices decline marginally. Sensex drops 71 points. Nifty settles at 24,366. India's wholesale inflation eases to 9.78% in July this year. And global crude oil prices rise.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट. सेंसेक्स में 71 अंक का नुकसान. निफ्टी 24,366 के स्तर पर बंद. थोक मूल्य

0: And as always, before we start the program, here is an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. सप्ताह के अंतिम कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मामूली गिरावट से 71 अंक गिरकर 78,009 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 30 अंक के नुकसान से 24,366 के स्तर पर बंद हुआ. एनएसई मिड कैप सूचकांक में 0.5% और एनएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% की गिरावट दर्ज हुई. वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर कारोबार की शुरुआत दबाव से हुई और पहले सत्र में दोनों सूचकांक मंदी के दबाव में बने रहे. हालांकि बाद में गिरावट में थोड़ी कमी आई और कारोबार के अंत में सूचकांक गिरावट के साथ ही बंद हुए.
0: Benchmark domestic equity indices ended marginally lower on the last trading day of the week. The Sensex dropped 71 points to close at 78,009. The Nifty dipped 30 points to settle at 24,366. The broader market also remained under pressure. The Nifty Mid-Cap 100 index declined 0.5%, while the Nifty Small-Cap 100 index slipped 0.7%. The markets opened on a weak note amid uncertain geopolitical conditions. Both benchmark indices remained under pressure during the first half of the session. However, in the latter half, the indices pared some of their intraday losses before closing in negative territory.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 23 कंपनियों में गिरावट रही. गिरावट वाले शेयरों में एशियन पेंट्स 1.7%, इंडिगो 1.4% और एनटीपीसी 1.2% के नुकसान से बंद हुए. हालांकि भारतीय एयरटेल 2.5%, अडानी पोर्ट 1.8% और आईसीआईसीआई बैंक 0.6% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे.
0: In the sectoral indices on the BSE, 23 out of 28 sectors ended in the negative zone. Among the top losers, housing finance declined 1.4%, mid-small private banks' quality tilt dropped 0.6%, and energy as well as oil and gas fell nearly 0.5%. In contrast, hospitals increased 1.5%, telecommunication gained 0.9%, and insurance added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,393 companies declined, shares of 1,896 companies advanced, while shares of 213 companies remained unchanged.
1: अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली बढ़त से 95.43 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. विशाल, क्या नजर आता है बाजार में, ट्रिगर क्यों नहीं आ पा रहा, या बाजार में कौन सा दबाव है जो बाजार को अभी भी तेजी बढ़ाने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा है? बाजार दबाव में खुलते हैं, कुछ उसमें सुधार आता है, लेकिन अंत में दबाव ही हावी रह जाता है.
2: देखिए, आपने सही कहा. अगर आज के बाजार पर नजर डालें तो जो शुरुआत हुई वो बड़े दबाव में हुई, लेकिन दोपहर बाद वो जो दबाव जब अपनी पीक पर पहुंचा तो उसके बाद एक बार फिर से खरीद शुरू हुई शेयरों की और थोड़ी सी रिकवरी जरूर हुई. इस तरह का पैटर्न केवल आज की बात नहीं है. मोटे तौर पर अगर निफ्टी को देखें तो लगभग पिछले 8 या 9 सेशन में ही पैटर्न रहा है. इस पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट लगभग 0.8 और 0.6% के आसपास की गिरावट रही है. कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन एक एंथुजियाज्म की कमी है जिसे आप कहें मार्केट में, और वो कमी एंथुजियाज्म की कई फैक्टर्स के कारण है. कुछ फैक्टर्स इंट्रा मार्केट कहे जा सकते हैं, यानी कि जो एक एक करके जो नतीजे आ रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, यानी कि जिनको जिनको सेक्टोरल लीडर्स कहा जाता है, वो उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतर रहे हैं. मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ खासतौर पर उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतर रहे हैं जितने होने चाहिए थे. पहली बात तो ये. और दूसरा, बाजार हमेशा थोड़ा सा इंटरनेशनल फैक्टर्स की तरफ भी उसकी नजर जाती है. तो जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, खासतौर पे मिडल ईस्ट की बात करें, यानी कि ईरान बनाम अमेरिका जो तनाव जारी है, उसमें उम्मीद जरूर जगी थी अब से 10-15 दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, कि इसका समाधान निकल रहा है, इसका समाधान हो जाएगा. लेकिन पिछले लगभग 8 से 10 दिन में उस तस्वीर में जो बदलाव हुआ है, उसका असर बाजारों पे ज्यादा देखने को मिल रहा है बनिस्बत जो जैसे हम तेल की कीमतों की बात करें, क्योंकि वो सेंटिमेंट नहीं उभर के सामने आ रहा है, यानी कि निवेशकों को ये लग रहा है कि शायद अभी इसमें समाधान थोड़ा और समय लगेगा, तो थोड़ा सा और कॉशियस रहने की जरूरत है। इसीलिए जो एफआईआई की बिकवाली है वो भी जारी है, हालांकि आंकड़ा आज का देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग अगर मैं गलत नहीं तो शायद 500 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है जो बिकवाली एफआईआईज ने की है। लेकिन मोटे तौर पर जो बड़ी पिक्चर उभर के आती है उसमें फिर हम बाजार की तरफ देखते हैं कि आज घटा या बढ़ा
0: जी,
2: तो वो घटा ही है। अगर वो 0.8% भी घटा है तो वो घटा ही माना जाएगा, अगर वो 0.1% घटा है तो भी घटा ही माना जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि एक सस्टेन्ड एफर्ट मार्केट में जरूर है कि इसको ये जो ट्रेंड है इसको किस तरीके से कंट्रोल में रखा जाए, काबू में रखा जाए, और एक कोई इंडिकेटर का इंतजार है, किसी एक इंडिकेटर का इंतजार है, और मुझे लगता है कि वो स्पर जो है बाजार में देखने को मिल सकता है आने वाले समय में।
0: सो विशाल, यू आर सेइंग दैट टिल द टाइम द मार्केट सीज सम काइंड ऑफ अ स्पर, अ काइंड ऑफ ट्रिगर, बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट द जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, द वे इट इज व्हाट इज गोइंग टू वे ऑन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स टिल देयर इज अ क्लियरर पिक्चर, एंड नॉट जस्ट अ क्लियरर पिक्चर विच स्टेज क्लियर फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम. For markets to take their cues and, you know, get back.
2: It's like, you know, there's a trust factor as well when it comes to bigger international, push and pull or triggers as well. Now, in this scenario, the ongoing tensions in the Middle East, I think trust factor plays a very important role. Nothing seems to be, fixed and finalized, because for the past 2-3 months, what is happening is a decision is taken, then that decision is renegated upon from either side or from the both sides as well, or there is some other factor which comes into play. So it's going, it's sort of a pendulum effect. It's going to and fro, too much, happening. By the time the markets try to, recover from a particular event which has happened, something else comes across.
0: Yes.
2: So that is why we've seen this subdued sentiment in the markets over the past 5-7 sessions. And that is not only the factor, but yes, that is a major factor as well.
1: Vishal, agar sectoral indices ki baat karein, अभी भी पीछे कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि मेटल सेक्टर काफी बेहतर कर रहा था, अब वो भी दबाव में आता हुआ नजर आ रहा है। ये कौन से दबाव हैं जो इस तरीके की चीजों को अभी रोक रहे हैं, या सिर्फ जो आपने शुरुआत में बात करी कि सिर्फ इंटरनेशनल फैक्टर हैं जो बाजार को दिशा देने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहे हैं?
2: देखिए, कई सेक्टोरल इंडाइसेस की जब हम बात करते हैं हमें, तो उसमें हमें यह भी देखना है कि उस सेक्टर पर ज्यादा प्रभाव किस चीज का है। आपने मेटल सेक्टर की बात की, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां किस तरह से चल रही हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो बड़े अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका इस सेक्टर से संबंधित पॉलिसीज में क्या बदलाव आया है, उसका असर, या फिर फ्यूचर में किस तरह की इंडिकेशन आ रही है, उसका असर सीधे पड़ता है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको लगेगा कि ये जैसे कहा जाए मुसीबत के समय के हीरो कहा जा सकता है। जैसे कि अगर आज ही का बाजार हम देख लें तो निफ्टी की तरफ देखें तो मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, और मेरे ख्याल से बीएससी की तरफ देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे जो इंटरनल स्टैंडर्ड्स हैं या इंटरनल मूवमेंट्स हैं उनका काफी असर रहता है, उनका प्रदर्शन ठीक रहता है, उनके जो सेक्टोरल लीडर्स हैं अगर उनके क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो अच्छे आ रहे हैं, और कोई ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है जिसका नेगेटिव असर पड़े, तो वो धीरे से जो नुकसान बाजार में होता दिखाई हो रहा है उसे कवर अप भी कर लेते हैं। तो सेक्टोरल इंडाइसिस को समझना है तो फिर ये भी समझना पड़ेगा कि उनके ऊपर जिन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है वो क्या डोमेस्टिक है फैक्टर्स, या वो इंटरनेशनल ज्यादा है, या वो दोनों का कोई एक मिक्स है, और अगर वो मिक्स है तो आपको वैसा ही मिश्रित रिएक्शन जो है उस सेक्टर की तरफ से भी देखने को।
1: क्या ये माना जाए कि निवेशक अभी उतने सतर्क हैं कि उनको लगता है कि अगर पिछले दिनों से और आज के दिनों में कहीं उस पर्टिकुलर सेक्टर में उनको मुनाफे की गुंजाइश नजर आती है तो वो लंबे समय को छोड़ के अल्प अवधि में अपना कहीं ना कहीं

0: जो बैलेंस शीट है उसको मजबूत कर रहे हैं या उसको ठीक ठाक करने
1: जी,
0: पे हैं?
1: बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त जिन्हें कहा जाए कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के जो इन्वेस्टर हैं वो शायद इस वक्त बहुत तेज गति से अपने मैं कहूँगा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक एक, एक एक लंबी दूरी का खिलाड़ी होता है, और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने कहीं अपने अपना धन निवेश किया है तो बहुत सोच समझ कर किया होगा। हालांकि मैं जरूर कहूंगा कि बीच बीच में उसको उस इन्वेस्टर को उस सेक्टर की पॉलिसीज, उस सेक्टर के जो लीडर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, जिस कंपनी में उन्होंने निवेश किया है उसकी परफॉर्मेंस, उस सब पे नजर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन ये जो समय होता है जब उठापटक चल रही है बाजार में, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो उसमें जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फायदा भी है और कहीं कहीं नुकसान भी।
0: बहुत संक्षेप में एक चीज ये जानना चाहूंगा, क्योंकि भारत की जो घरेलू परिस्थितियां हैं और सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो एमएसएमई को सपोर्ट देने से इनिशिएटिव इसीलिए थोड़े दिन पहले ही सरकार ने दिया है, और इंफ्रा पे भारी मात्रा में निवेश है जो बरकरार है, ये सारी स्थितियां हमारे बाजार को कितना स्थायित्व देने की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाती हैं।
1: इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो आज ही की बाजार की परफॉर्मेंस है। मैंने कहा कि निफ्टी की अगर अपनी तरफ देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर था उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, उसने थोड़ा सा शॉक को एब्जॉर्ब किया, और देखिए जहां तक पॉलिसीज की बात है उनमें कंसिस्टेंसी की कोई कमी नहीं है, लेकिन केवल पॉलिसीज बाजार की दिशा तय नहीं करती हैं, बहुत सारी और भी सेंटिमेंट्स हैं जिनसे बाजार की दशा और दिशा तय होती है, जिनमें डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से वो मोमेंटम बन रहा है बाजार
0: जी, में। चलिए खबरों के कुछ और अच्छी खबरों पर नजर डालते हैं। जुलाई के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के दौरान वार्षिक महंगाई दर के मुख्य कारक खनिज तेल, खाद्य पदार्थ, धातुएं, गैर खाद्य उत्पाद और रासायनिक उत्पाद रहे। मासिक आधार पर मुद्रास्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा की महंगाई दरों में कमी आना है। थोक महंगाई दरों में मामूली कमी के बावजूद लगातार तीसरे माह महंगाई दर 9% से ऊपर बनी हुई है। उत्पादक मूल्य सूचकांक में वार्षिक आधार पर 9.57% की बढ़ोतरी हुई, जबकि मासिक आधार पर यह लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा। थोक मूल्य पर आधारित खाद्य सूचकांक जून के 6.14% से बढ़कर जुलाई में 6.65% हो गया। थोक मूल्य सूचकांक में शामिल प्रमुख घटकों में प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर 7% से बढ़कर 8.5% रही, निर्मित वस्तुओं की महंगाई दर 7.5% से बढ़कर 8.3% रही, हालांकि ईंधन और ऊर्जा समूह की महंगाई दर जून के 27.4% से घटकर 20% रह गई।
2: विशाल, इफ यू लुक एट द फिगर्स, WI फिगर्स, नो डाउट the overall figures if you look at it have come down 9.78% in July vis-a-vis 9.87% in June, but if you look at individual, first of all I would like a comment on that, but if you look at the individual sectors so to speak, we see that as Amit was just reading that overall if you look at it except for the fuel fuel and power group, other places in all the other major categories the WPI has gone up. What would you say to that?
1: The basket of WPI is divided into separate groups. Now, we will have to understand the aspects which go in come arriving at this particular figure. Overall, this is a welcome news that it has come down from 9.87 to 9.78%. But there is still a lot of work which needs to be done. Although. The reason why it has come down is that the fuel and power group, which has seen a sharp decline from around 27%, 20%, that has contributed to this marginal decline which we see. The reason being that that group alone constitutes around 30% of the overall basket. Now, this is really important for us to understand, because when we look at the WPI basket, fuel and power is one of the major, group or one of the major sectors or factors which the money is spent upon.
2: Yes.
1: Be it industries, be it, domestic consumption and overall as well. So we're talking about the WPI as a wholesale price index. That is why we see that this has come down. Now, if you look at other figures, other aspects, of course, it has gone up by some margin, 1% here, 1.5% there. But largely speaking, WPI inflation is counted in this manner. And that is why this entire basket is divided into certain groups. If one group

0: has some leverage, you know, and that is the Fuel and Power Group. If you go a little, you know, a few months back, you know, in the past, then this was the group which was, you know, facing a lot of pressure,
1: yes,
0: because the fuel prices were up, and that is why it was becoming difficult for every economy in the world to go ahead and contain the inflation. But this, I believe, is definitely sort of a welcome kind of figure, although it's marginal, but it is still a welcome kind of figure.
2: Vishal, एक आम उपभोक्ता के लिए, एक आम नागरिक के लिए, देखिए थोक मूल्य सूचकांक से उसका आमतौर पे बहुत सीधा कहीं कोई रिश्ता नहीं होता. अगर इसमें मामूली गिरावट आती, चाहे वो ईंधन के या ऊर्जा के दामों में ही सही, क्या हम ये माने कि ये आपने अभी कहा अच्छा संकेत है, निश्चित तौर पे अच्छा संकेत है, लेकिन चूंकि इसका वेटेज और जो हमारे अभी जो खाद्य वाला बास्केट है या हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का बास्केट है, उसके प्रदर्शन पे तो निश्चित तौर पे अभी भी महंगाई दर कहीं ना कहीं आ रही है, और फिर ओवरऑल 9% से ऊपर बनी है, इसमें कितना चिंता जताने की जरूरत है या कितना सतर्क रहने की जरूरत है?
0: देखिए, मैं कहूं कि आम उपभोक्ता या आम आदमी के लिए एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आम आदमी से पहले सरकार को कितनी राहत पहुंचाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि अगर सरकार के खाते में ऊर्जा और तेल पे खर्च किए जाने वाले धन में से कुछ धन बचेगा तो वो धन बाकी जगह खर्च होगा, और जब वो बाकी जगह खर्च होगा तो उसका सीधा फायदा आम आदमी को पहुंचेगा. अगर सरकार की जेब में ही पैसा नहीं बचेगा तो वो कहीं और खर्च नहीं कर पाएगी, और अगर वो कहीं और नहीं खर्च कर पाएगी तो उसका फायदा फिर आम आदमी को कैसे होगा? तो इसे थोड़ा सा लंबा रास्ता जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर सब्र किया जाए तो आम आदमी तक फायदा जरूर पहुंचेगा.
1: Let's move on. India's foreign exchange reserves rose by $14.1 billion to $707 billion during the week ended August 7th. According to the Reserve Bank of India data, foreign currency assets, the largest component of the reserves, increased by $9.9 billion to $574.6 billion during the week. Gold reserves added $3.9 billion to $108.7 billion. Country's reserve position with the International Monetary Fund was up by $116 million to around $4.9 billion. Special drawing rights increased by $79 million to $18.74 billion. Vishal, again, good news in the sense that foreign exchange reserves rose by, as I said, $14.1 billion in the last week. So somewhere you would say that it's also the international crude oil prices, the effect we can see on the foreign exchange reserves that are here?
0: That and combined with the recent move by the government and the RBI for the FCNA, yeah, the OCIs and POIs, wherein they can invest their money in a particular scheme. Now that has contributed a lot, and I can see although those figures are not here, but I can see, I'm pretty sure that would be a significant part of the contribution. But yes, of course, again, what is saved on one end, if you don't spend it there, then of course it can be considered as a saving, and that is why the exchange reserves, foreign exchange reserves, are a good indicator of how exactly are we how wisely are we spending our money, and what is the international scenario. So as of now it looks to be in our favor, to be very honest.
2: बहुत संक्षेप में, एक लाइन में, अगर साप्ताहिक आधार पर सरकार की जेब में विदेशी मुद्रा बचती है, इसके संकेत कितने अच्छे नजर आते हैं?
0: देखिए, मैं वही कहूंगा जो मैंने पहले कहा था अमित जी के, अगर
2: जेब में पैसे आ रहे
0: हैं, आधार पर जेब में पैसे बच रहे हैं, तो वो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले ही सप्ताह उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर भरता है. तो अब देखना पड़ेगा कि सरकार इन पैसों का इस्तेमाल या ये जो धन संचय हुआ है ये किस स्कीम पे होता है, किस सेक्टर पे होता है, किस तरह सरकार उसको खर्च करती है.
2: मोटे तौर पर राहत की बात तो है.
0: मैं बिल्कुल
2: जी. चलिए नजर डालते हैं एशिया यूरोपीय बाजार पर. एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2.4% और जापान के निकेई में लगभग 0.6% की बढ़त दर्ज हुई. उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती नजर आई. जर्मनी का शेयर बाजार लगभग 1% की मजबूती से कारोबार करता नजर आया, जबकि लंदन का शेयर बाजार पूर्व स्तर पर कारोबार करता नजर आया.
1: Let's have a look at the US markets. Wall Street ended on a positive note yesterday, buoyed by gains in tech stocks and softer than expected wholesale inflation print. The Nasdaq Composite Index surged 0.8%. The S&P 500 advanced

0: advanced 0.6% to close at a record high of 7,799. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average eked out a moderate gain of 0.1%. On the economic front, the Producer Price Index, or PPI, remained unchanged in July from the previous month. According to data released by the U.S. Department of Labor, headline producer inflation rose 4.7% on an annual basis in July, slowing from 5.5% in June. Very quick question to you, Vishal. On the basis of the economic, the PPI, figures that have come out, we have another Fed policy meeting coming up next month, exactly a month from now, 15th and 16th September. What's your assessment? Are we going to, the Fed is going to remain like they did not raise the interest rates? Are we going to look at, see the same thing, or do you expect something else?
1: Well, the situation right now is not that conducive to expect any leniency from the Fed, to be very honest. And these figures which are coming in, and the figures which came in previous month as well, they're not indicative of, something very positive coming in from Fed. But largely speaking, we should wait and watch, because it's still another 1 month to go. Yeah. And as far as the U.S. economy is concerned, it is taking rapid turns. I won't say on a daily basis, but at least on a weekly basis, given the fact that there is a there's a lot of direct impact of the ongoing Middle East tensions on the U.S. economy and several sectors as well, specifically the artificial intelligence or the tech sectors as well. Let us see how the next 4 weeks go, that is one, and what the next set of data, specifically the unemployment data and the inflation data, the last leg of the data, which will land, I think, just before the Fed decides, goes ahead and takes a decision. But as of now, the indications which are there, sentiments and indications both, are not very positive.
2: Vishal, अगर इसके साथ एशिया के प्रमुख बाजारों के भी हम चर्चा करें, वहां भी ठीक है, नुकसान तो नहीं है, और जैसा कि पहले कहा जाता था, अब पूरा विश्व एक वैश्विक बाजार बन चुका है, क्या ये माना जाए, क्योंकि वैश्विक स्तर पे भी बहुत सारे जो संकेत हैं वो उतने उत्साहजनक नहीं है, जिस जो बाजार में ट्रिगर की आप बात कर रहे थे वो भारतीय बाजारों में आ पा रहे, क्या यही एक कारण है, या सभी बाजार निवेशक अभी देखो और सतर्क रहो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, जिस तरह से आपने भी बताया, सब उसी के प्रति चिंतित हैं, या इसके अलावा और भी कोई कारक है?
1: देखिए, केवल मिडिल ईस्ट की बात नहीं है, अगर हम दूसरे कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो यूरोपीय देशों की बात करें, उनके बाजारों की बात करें, तो उनपे रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है उसका सीधा असर पड़ता है।
2: एक खबर इसमें बीच में यह भी आई थी, क्योंकि यूक्रेन से, चूंकि वो बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक था, वहां उसके दामों में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, कमी भी आई है।
1: जी बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस अर्थव्यवस्था के आसपास का इलाका जो है, वहां अगर किसी तरह का जियोपॉलिटिकल तनाव है, तो उसका सीधा असर वहां भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ तनाव ऐसे होते हैं जिनकी ग्लोबल इम्प्लीकेशन है। रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव है, उसकी भी ग्लोबल इम्प्लीकेशन थी, क्योंकि उसको उसके चलते रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ते हैं, और अगर इन दोनों के बीच तनाव बढ़ते हैं, तो उसका असर बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर देखने को मिलता है। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, उसका सीधा असर फ्यूल प्राइसेस पे और उसका सीधा असर एनर्जी सेक्टर पे पड़ता है, जिसका असर इन टर्न पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर पड़ा, और हमने देखा भी कितना किस तरह से पड़ा। फिर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, कुछ सेक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर हो, और उसका असर भी देखने को मिलता है। और फिर कुछ इंटरनल पॉलिसीज जो हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में, लगभग 2 से 3 साल में, हम सब लोगों ने देखा है कि कई सारी अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको और इंटरनली बाउंड कर दिया है, तो उसका कितना असर बाहर पड़ेगा, किस तरह से वो प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो ये सब फैक्टर्स मिला के एक एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, जिसमें मार्केट ढूंढती है कि कोई स्पर तो मिले, कोई कोई कोई एक स्पार्क तो मिले, अब वो उसी का इंतजार शायद हो रहा है।
0: लेट्स मूव ऑन टू कमोडिटीज। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रेटन्ड एन इनडेफिनिट नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरान। ब्रेंट क्रूड वॉज ट्रेडिंग 0.1% अप at $87 and 11 cents per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.3% up at $81 and 50 cents per barrel when reports last came in.
2: घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य आधा प्रतिशत के नुकसान से 1,52,363 रुपये प्रति 10 ग्राम पे रहा, जबकि चांदी 0.2% की कमजोरी से 2,33,842 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई। विशाल, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे कच्चे तेल में, कच्चे तेल में एक खबर आती है थोड़ी सी उसकी कीमतें वापस से दबाव में आती बढ़त की तौर पर करती हैं, लेकिन पिछले अगर एक सप्ताह की बात मैं सिर्फ सोने चांदी के ऊपर केंद्रित करूं, सोना वहां से काफी लंबा सफर तय कर चुका है। जहां पहले लग रहा था कि नहीं सोने में अभी और गिरावट रखती, वहां से सोना वापस से रिबाउंड हुआ। अब ऐसी स्थिति में ये तेजी का क्या कारक है और कच्चे तेल की कीमतों में वो किस करवट लेती हुई नजर आएगी फिलहाल की परिस्थितियों में?
1: देखिए, मैं संक्षेप में कहूंगा, कच्चे तेल की कीमतों में तो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन सोने में आपने सही कहा, ये अनुमान मेरा भी है कि अब जो गति सोने ने, धीमी गति जो सोने ने पकड़ी है, मुझे लगता है वो धीमी गति से बढ़ोतरी जारी रहेगी। उस गति, वो गति बहुत तेज ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बढ़ोतरी जो है ये धीरे धीरे धीरे धीरे जरूर जारी रहेगी।
2: विशाल, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। और चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
0: थैंक यू अमित। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन मार्जिनली, सेंसेक्स ड्रॉप्स 71 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,366। इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 9.78% इन जुलाई दिस ईयर एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। फॉर नाउ, गुड बाय।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नालसा, न्याय सबके लिए। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं

संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 69 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला
खाताधारक शामिल हैं।

80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार के अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण
रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में सम्पन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारे गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा

सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुष्योलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ आवर कंट्री विल विटनेस द ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ द 80th ईयर सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। ऑल इंडियंस लिविंग इन द कंट्री एंड अब्रॉड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ ग्रेट जॉय। आवर ट्राइकलर इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम। We unfurl it with immense pride. On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sports persons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in the private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers, and all Safai Mitra who are frontline workers of the Swachhata Abhiyan are all playing an important role in the nation's progress. Numerous citizens engaged in various other activities, and every citizen who faithfully discharges the fundamental duties enshrined in our constitution are active partners in our nation building process. I wholeheartedly appreciate each one of them. I especially commend the devotion of our soldiers in the three armed forces, armed police forces, and all police personnel for their unwavering dedication to duty. I also praise the Indian diaspora and the officials serving in our embassies who enhance India's prestige and honor on the global stage. My dear fellow citizens, we are moving ahead towards building Viksit Bharat by the centenary year of our independence in 2047. Guided by the spirit of Antodaya, it is our resolve to ensure that the fruits of development reach every individual. Embracing our rich heritage and the ideals of the freedom movement, we march ahead on the path of modern development. The Vedavakya, Vayam Rashtre Jagrayamo, inspire us to always remain ready to serve the nation. During our freedom struggle, people with diverse ideologies were united by one common goal, India's independence. During the Swadeshi movement, the song Vande Mataram became a song of the masses. Countless Indians plunged themselves into our freedom struggle under the leadership of the father of the nation, Mahatma Gandhi. Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar embodied the highest ideals of social reforms and patriotism. I humbly bow to all those great sons and daughters of the Bharat Mata whose ideals guided our country to its freedom and its progress thereafter. Today, on the 14th of August, we observe Vibhajan Vibhishika Smriti Divas. We solemnly remember those lakhs of Indians who lost their lives in the violence resulting from the partition. Or we are forced to endure the tragedy of displacement. Lakhs of people had to become refugees due to communal violence and endure the horrors of partition. Yet, they did not give up their identity. At the time of our independence, along with the grave consequences of partition, was the extraordinary challenge of unifying more than 550 princely states with a newly independent India. Sardar Patel put an end to the system of kingdoms and integrated the princely states into our independent democracy. On behalf of a grateful nation, I pay my respectful tributes to the
सक्रिय।

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: दशकों की गंभीर चुनौती नक्सलवाद का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति मुर्मू ने देश की डिजिटल अवसंरचना को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है। जन भागीदारी की भावना लोकतंत्र की जननी भारत भूमि में सदैव रही है और देशवासी नई ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण

0: पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पाराव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। राष्ट्रपति ने कहा कि समस्त भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने ये बात कही।
2: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
1: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1,057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हुआ है 8:10:55। मधुरमा की महफिल सज चुकी है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री लेकर के महफिल मधुरमा। इसमें हम बात करेंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित आज विशेष रूप से देशभक्ति के गीतों की।
1: नफरत

जी हाँ, देश प्रेम का संदेश देती हुई ये फिल्म 1982 में आई थी, जिसका नाम था देश प्रेमी। और इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने, और इसका संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में ये गीत आपने सुना। इसका राग जो था वो राग यमन कल्याण थाट की ये मधुर धुनों पर आधारित है ये गीत, जिसका आपने अभी आनंद लिया। कल हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, और

0: इसी उपलक्ष्य में हम आज उन रागों की बात करेंगे जिन रागों में हमारे देशभक्ति के गीत को पिरोया गया है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर आगे आपसे और बात करते हैं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना।
6: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, ये प्रसिद्ध देशभक्ति गीत हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, फिल्म कर्मा से हमने आपको सुनवाया। 1986 में ये फिल्म आई थी और ये मुख्य रूप से राग भैरवी के थाट और उसके कोमल स्वरों, कोमल रे गा धा नी पर आधारित है। फिल्म संगीत में इसे स्वतंत्र शास्त्रीय राग की बजाय भैरवी अंग या हल्के शास्त्रीय मिश्रण के रूप में तैयार किया गया। तो ये गीत आपने सुना और कल, जैसा कि हम आपसे जिक्र कर चुके हैं कि कल स्वतंत्र भारत, यानी भारत को आज़ाद हुए कल 79 ईयर्स, यानी 79 साल पूरे हो जाएंगे, 80वें वर्ष में हम प्रवेश कर जाएंगे। और अगर इस पर्व के आप साक्षी बनना चाहते हैं और लाल किले पर जाकर के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का आनंद भी लेना चाहते हैं, तो कल सुबह 4 बजे से दिल्ली मेट्रो की सर्विस शुरू हो जाएंगी। आप जाकर के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। फिलहाल संजीव को दीजिए इजाजत ये प्रोग्राम मधुरिमा यहीं पर संपन्न करने की, और एक बार आप सभी को फिर से स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजीव को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया, कहा राष्ट्रमंडल खेलों में बेटियों ने देश का मान बढ़ाया। इगा स्वायतेक और बेन शेल्टन ने कनाडा ओपन टेनिस का खिताब जीता। डुरंट कप फुटबॉल में शिलोंग लाजोंग एफसी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जमशेदपुर एफसी और बोडोलैंड एफसी ने भी अपने अपने मुकाबले जीते। भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में कल भारतीय पुरुष टीम का सामना नीदरलैंड से होगा और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सिंकफील्ड कप के चौथे दौर में जॉर्डन वन फॉरेस्ट को हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में देश के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं।
1: इन द रिसेंटली कंक्लूडेड कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो वुमेन हैव ओन 8 आउट ऑफ इंडियंस टोटल टैली ऑफ 13 गोल्ड मेडल्स।
0: अब बात कनाडा ओपन पर करते हैं। इगा स्वायतेक और बेन शेल्टन ने कनाडा ओपन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में इगा स्वायतेक ने एलिना रिबाकिना को 6-2 6-3 से हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में बेन शेल्टन ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: टोरंटो में खेले गए फाइनल में स्वायतेक ने कैनेडियन टूर्नामेंट में जारी अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए पहले सेट में ही बढ़त बना ली। दूसरे सेट में दो मिस बैकहैंड ने स्वायतेक को एक और ब्रेक दिया। रिबाकिना एक चैंपियनशिप पॉइंट बचाने में कामयाब रही, लेकिन स्वायतेक ने पिछले सितंबर के बाद से अपना पहला खिताब हासिल करने के लिए

0: दूसरे मौके को भुना लिया। यूएस ओपन के मद्देनजर स्वेतेक के लिए ये जीत बहुत अहम है। अमेरिका के बेन शेल्टन ने लगातार दूसरी बार कैनेडियन ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में शेल्टन ने अपने ही देश की पांचवी वरीयता प्राप्त ब्रेंडन नाकाशिमा को 6-3, 7-6 से हराया। शेल्टन का ये दूसरा एटीपी मास्टर्स खिताब है। बेन शेल्टन खिताबी जीत के साथ ही इस सदी में एंडी मरे, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के बाद अपने कैनेडा ओपन खिताब को सफलतापूर्वक बचाने में सफल रहने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। शेल्टन ने बिना कोई सेट गवाए इस सीजन का चौथा खिताब जीता। इससे पहले 2026 में डेलास, म्यूनिक और स्टुटगार्ड में वे जीत हासिल कर चुके हैं। अमरीकी खिलाड़ी के नाम अब 7 एटीपी टूर खिताब हैं। नाकाशिमा अपने पहले मास्टर्स फाइनल में हिस्सा ले रहे थे और अपना दूसरा एटीपी टूर टाइटल जीतने की कोशिश कर रहे थे। नाकाशिमा ने अपना पहला खिताब 2022 में सैन डिएगो में जीता था। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है खिलाड़ियों ने। इगा स्वायते की बात कर ली या बेन शेल्टन की, लेकिन मेंस डबल्स और वुमेन्स डबल्स में क्या कुछ रिजल्ट रहा आज?
2: देखिए प्रशांत, अगर मेंस डबल्स की बात करें तो राफेल मेटोस और ओरलैंडो लूस की जोड़ी ने मैट पाविक और मार्लेलो ओरेविलो की जोड़ी को 5-7, 6-4, 10-6 से हराया। इसके अलावा अगर वुमेन्स डबल्स की बात करें तो कैटरीना सिनिकोमावा और झांग सुजाई ने सारा ईरानी और नरोलो मार्टिनेज को 6-3, 6-4 से हराया। इन दोनों मुकाबलों की बात अगर हटाएं तो एक ब्रेंडन नकाशिमा ने जो अपने पहले 1000 मास्टर्स फाइनल में हिस्सा ले रहे थे और वो अपने दूसरा टाइटल जीतने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपना जो पहला टाइटल है वो 2022 में जीता था। हालांकि वो इस प्रयास में असफल रहे, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके सभी को प्रभावित किया।
1: डूरंट का फुटबॉल टूर्नामेंट में शिलोंग लाजोंग एफसी ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: शिलोंग लाजोंग एफसी की इस जीत से ईस्ट बंगाल और जमशेदपुर एफसी की क्वार्टर फाइनल में जगह भी पक्की हो गई है। मुकाबले के 26वें मिनट में जोटा ने विपक्षी टीम के डिफेंस को भेदते हुए गोल किया। 4 मिनट बाद शिलोंग लाजोंग ने अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। दूसरे हाफ की शुरुआत में लैंगसनिंग के मुखिम ने 49वें मिनट में गोल करके अंतर को आधा कर दिया। 63वें मिनट में वाडाजीद ने शानदार हेडर मारकर स्कोर बराबर कर दिया। 82वें मिनट में शिलोंग लाजोंग को सफलता मिली। सना के हेडर ने लिंगदो को छकाते हुए गोल किया। लैंगसनिंग की ओर से अहमद ने हेडर से गोल किया और मैच बराबरी पर ला दिया। इसके बाद ये मुकाबला 3-3 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। वहीं ग्रुप सी के आखिरी मैच में जमशेदपुर एफसी ने इंडियन एयरफोर्स एफटी को 6-0 से खरारी शिकस्त दी। इस शानदार जीत में 17 वर्षीय लामसांग ज्वाला की 25 मिनट में लगाई गई हैट्रिक और अमन सीके के बेहतरीन खेल का अहम योगदान रहा। मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने अपना दबदबा बनाते हुए 4th मिनट में बढ़त हासिल कर ली। हाफ टाइम तक जमशेदपुर 1-0 से आगे रही। 55वें मिनट में लोमसांग ज्वाला ने गोल करके जमशेदपुर की बढ़त को दोगुना कर दिया। 64वें मिनट में लोमसांग ज्वाला ने जमशेदपुर को तीसरी सफलता दिलाई। अमन सीके ने आखिरकार 71वें मिनट में गोल करके अपना नाम स्कोर शीट पर दर्ज कराया। 80वें मिनट में लोमसांग ज्वाला ने अपनी हैट्रिक पूरी की। 17वें सब्स्टिट्यूट रियान ने 84वें मिनट में छठा गोल किया। ग्रुप एफ के अपने आखिरी मैच में कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी को 6-0 से शिकस्त दी। हलीचरण नार्जरी ने बोडोलैंड एफसी के लिए 4 गोल दागने के साथ 2 गोल में असिस्ट भी किया। भले ही बोडोलैंड ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन टॉप 2 रहने वाली टीमों में से एक के तौर पर नॉकआउट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। इस मैच में हलीचरण नार्जरी ने दोनों हाफ में 2-2 गोल दागे, जबकि ब्रेक के बाद कौशिक दैमारी और गुआगुआमसार गयारी ने भी गोल करके बोडोलैंड एफसी की शानदार जीत सुनिश्चित कर दी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: टूर्नामेंट में लगातार टीमों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। जमशेदपुर एफसी और बोडोलैंड एफसी ने भी अपने अपने मुकाबले जीतकर अपनी उम्मीदें बनाए रखी है। मैदान की ओर, भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल गोल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को कायम रखना चाहेगी।

0: भारतीय टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सलामी बल्लेबाज की कमान संभालेंगे। वहीं साई सुदर्शन की टीम से बाहर होने के बाद देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं। देवदत्त ने अभ्यास मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शतकीय पारी खेली थी। अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम की बल्लेबाजी को सुदृढ़ करेंगे। वहीं ध्रुव जुरेल भी पहले से ही स्क्वाड का हिस्सा है। टीम में सरफराज खान की वापसी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल के मुकाबले में इन दोनों में से किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है। अनुभवी रविंदर जडेजा लोअर डाउन दी ऑर्डर में भारतीय टीम को बल्लेबाजी में मजबूती देंगे। उनके साथ साथ मानव सुथार और सारांश जैन ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे। वहीं गेंदबाजों में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और आकिब नबी को स्क्वाड में शामिल किया गया है। भारतीय WTC की पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 5वें स्थान पर है। मुकाबले से पहले कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि टीम को WTC के फाइनल में जगह बनाना है।
1: वेरी कंफर्टेबल विद द रोल एंड आई थिंक द काइंड ऑफ वे वी हैव बीन यू नो प्रोग्रेसिंग इन द पास्ट 1 ईयर हैज बीन वेरी प्लीजिंग टू सी इन माय पर्सपेक्टिव एंड आई थिंक वी आर टेकिंग ऑल द राइट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन एंड ऑब्वियसली द मेन गोल इज टू प्ले द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल व्हिच इज नेक्स्ट ईयर एंड वी हैव गॉट अबाउट 9 टेस्ट एंड आई थिंक वी हैव टू विन अराउंड 6 or 7 टू बी एबल टू हैव अ गुड चांस एट क्वालिफाइंग। सो इन टर्म्स ऑफ दैट आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर अस एंड वी हैव हैड द राइट काइंड ऑफ प्रिपरेशन लीडिंग अप टू द सीरीज।
0: कप्तान शुभमन गिल ने वार्म अप मैच में शतकीय के लिए वाले देवदत्त पडिक्कल की प्रशंसा की। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका टीम घरेलू मैदान पर जीत दर्ज कर WTC की उम्मीदें बरकरार रखना चाहेगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
2: लगातार विशेष इधर टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मुकाबले भी खेले जा रहे हैं। कैसा रहा आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मुकाबलों का हाल?
3: ये प्रशांत, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। आज 2 दिन का खेल समाप्त हो चुका है और बांग्लादेश 153 रनों की लीड के साथ मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198 रन बनाए थे और उनकी तरफ से सबसे ज्यादा योगदान जो है स्टीव स्मिथ ने दिया था। 109 गेंदों पर 71 रन बनाए थे। स्टीव स्मिथ के अलावा कोई भी बल्लेबाज जो है 50 का आंकड़ा नहीं छू पाया था। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें हम बांग्लादेश की, तो हसन महमूद ने सबसे ज्यादा 6 विकेट चटकाकर बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया था। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बल्लेबाजी की बात करें तो तंजीद हसन तमीम ने 101 रन बनाकर बहुत ही मजबूत शुरुआत दिलाई थी बांग्लादेश को। उसके बाद मोमिनुल और नजमुल हुसैन सांतो और मुशफिकुर रहीम ने 49, 84, 36 रन के योगदान देकर टीम के जो लीड है उसमें अहम भूमिका निभाई। और अंतिम बल्लेबाजों की श्रेणी में मेहंदी हसन मिराज ने भी 32 रनों का योगदान दिया।
2: जी, और श्रोताओं आपको बता दें कि बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। विशेष अगर हम इस श्रृंखला की बात की जाए तो आज दूसरा ही दिन है और न जाने कितने रिकॉर्ड बने हैं और कितने ध्वस्त हो गए। कौन कौन से रिकॉर्ड बने हैं इस सीरीज में अब तक?
3: प्रशांत, ये सीरीज काफी ऐतिहासिक है क्योंकि 23 साल बाद जो है बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर कोई टेस्ट मुकाबला खेलने जा रही है। अगर हम पहले रिकॉर्ड की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 433 जो विकेट थे रंगना हैरत के, उसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड से विकेट लेने के लिए जो है उन्होंने अपने नाम कर लिया है रिकॉर्ड। वहीं तंजीद हसन पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने जिन्होंने शतक लगाया है ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में, तो ये काफी ऐतिहासिक है और ये सीरीज सभी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।
2: अगर विशेष बात की जाए तो दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और बांग्लादेश जो है 153 रन की लीड ले चुका है और कल से भारत और श्रीलंका की टेस्ट श्रृंखला भी शुरू हो रही है और WTC में जैसा कि शुभमन गिल ने भी बताया कि वो फाइनल खेलना चाहते हैं, तो अगर बांग्लादेश ये मुकाबला जीतता है तो किस तरीके से ये भारत के पक्ष में जाएगा?
3: प्रशांत, अगर बांग्लादेश ये मुकाबला और साथ ही साथ ये सीरीज जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया जो पहले स्थान पर मौजूद है 87.5 अंकों के साथ उनके अंकों में काफी गिरावट आएगी और भारत के लिए ये बहुत ही बेहतर संकेत होंगे। सिर्फ भारत को अपने मुकाबलों पर ध्यान देना है और दूसरे जो प्रतिद्वंदी हैं उनको भी क्या बोलते हैं कि पछाड़ना चाहिए।
2: जी, और चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। हॉकी विश्व कप कल से नीदरलैंड्स में शुरू हो रहा है। भारतीय पुरुष टीम कल नीदरलैंड्स के एम्स्टेलविन में वेल्स से मुकाबला करेगी। वहीं महिला टीम रविवार को चीन से खेलेगी।
4: लगातार 2 ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम कल वेल्स के खिलाफ जीत के साथ शुरुआत कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर उपहार देना चाहेगी। 8 बार के ओलंपिक चैंपियन भारत ने एकमात्र विश्व कप 1975 में क्वालालंपुर में पाकिस्तान को हराकर जीता था। इससे पहले

0: 1971 में कांस और 1973 में रजत पदक अपने नाम किया था, लेकिन पिछले 51 साल में पोडियम पर जगह बनाने में भारतीय टीम नाकाम रही है। भारत इंग्लैंड से 17 अगस्त को और पाकिस्तान से 19 अगस्त को लीग चरण में खेलेगा। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि टीम उसी मानसिकता और तैयारी के साथ उतरेगी जो पिछले 2 ओलंपिक में थी।
1: वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। वर्ल्ड कप का प्रेशर एक अलग होता है, इंडिया से बाहर हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, जो भी टारगेट हमारे सामने है, वैसे हम टीम उसको लें और ऐसे टीम उसको फेस करें। डेफिनेटली आई थिंक कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बट उसके लिए आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो डेफिनेटली वो चीज वहां पे रहेगी। एंड वी बिलीव के जो हमने ट्रेनिंग की है, जो हमने लास्ट मैचेस खेले हैं, उसको लेकर आई थिंक टीम बहुत पूरे कॉन्फिडेंस में है एंड आई बिलीव के हम।
0: वहीं भारतीय महिला टीम को स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे की कप्तानी से बहुत उम्मीदें हैं। सविता पूनिया और बिचू देवी टीम में गोलकीपर हैं। ब्रैक फ्लिकर दीपिका सहरावत पर गोल करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने जून में नेशंस कप में शानदार प्रदर्शन किया था। नवनीत कौर और युवा मिडफील्डर साक्षी राणा पर भी सबकी नजरें रहेंगी। भारतीय टीम 16 अगस्त को चीन से, 18 को दक्षिण अफ्रीका से और 20 अगस्त को इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। नए प्रारूप वाले इस विश्व कप में खेल प्रशंसकों को भारतीय टीम से शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीदें हैं। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो शतरंज पर भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने पिछले दौर में हार के बाद शानदार वापसी करते हुए सिंगफील्ड कप के चौथे दौर में नीदरलैंड्स के जॉर्डन वान फॉरेस्ट को हराया और संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले सेना के खिलाड़ियों से बातचीत की। सेना के खिलाड़ियों ने इस बार 8 स्वर्ण, 7 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते थे। रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में देश को गौरवान्वित करने के लिए भारतीय रक्षा के मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास की सराहना की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
5: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
4: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
5: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
4: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
5: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
4: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
5: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
4: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
5: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
4: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
6: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का

0: सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेषक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
2: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
3: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है।

0: अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
1: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व के सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुड़जाड़ा अप्पाराव के एक गीत का उल्लेख किया, जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों के यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। छात्रों ने कहा कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रूपये से अधिक खर्च कर रही है। जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day this evening, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
1: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
2: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said today the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
1: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bostar Olympics and many artists showcased their talent in Bostar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
2: The President said that students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
1: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth.
2: Speaking about the country's young population, the President said 65% of the country's population is below the age of 35, which is the most valuable asset. She said many of our youth are embracing the culture of job creation as they pursue the path of self-employment. President Murmu said India is moving ahead towards building a Viksit Bharat by the centenary year of independence in 2047. The nation will celebrate its 80th Independence Day tomorrow with Prime Minister Narendra Modi leading the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. As part of the celebrations, two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force will shower flower petals at the venue. The unfurling of the national flag will be synchronized with the 21st

0: मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों और सीमा पार आतंकवाद पर चिंता जताई। भारत ने भूकंप प्रभावित कोलंबिया के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। बांग्लादेश में शिप ब्रेकिंग यार्ड में गैस रिसाव से 8 लोगों की मौत। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच कल से खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की विदेश नीति देश हित पर आधारित है तथा शांति, सहयोग, संवाद और वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने अनेक देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है।
1: आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो।
0: भारत ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसका अभिन्न अंग है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे अत्याचारों और सीमा पार आतंकवाद के लिए क्षेत्र के इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए।
2: Let me say that the whole of पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता का विषय ये होना चाहिए

0: कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस समय लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।
1: फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म,
2: श्री जायसवाल ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में भारत और अफगानिस्तान के बीच कई बार बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के कई मंत्रियों के भारत दौरों से विकास, सहयोग, व्यापार और आवाजाही के क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ भारत के पुराने संबंध हैं और वह इन संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद करता है। बांग्लादेश में ऊर्जा संकट के बीच भारत से अतिरिक्त डीजल की मांग पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति के लिए पहले से ही व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि डीजल की अतिरिक्त मांग पर भारत की अपनी जरूरतों, रिफाइनिंग क्षमता और देश में डीजल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को द्विपक्षीय यात्रा के लिए निमंत्रण भेजा है। उन्हें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के लिए भी भारत आने का निमंत्रण दिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, कथित हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए कथित प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 100 लोगों की मौत हो गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज बांग्लादेश में एक शिप ब्रेकिंग यार्ड में संदिग्ध गैस रिसाव के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की मौत जहाज से निकली जहरीली गैस के कारण हुई। अधिकारी गैस रिसाव के कारण की जांच कर रहे हैं। चीन के हुनान प्रांत के लियान युआन में एक कोयला खदान में गैस का रिसाव हुआ है, जिसमें 7 लोग लापता हैं और एक व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना के समय 52 लोग खदान के नीचे काम कर रहे थे, जबकि 44 लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकल आए हैं। बचाव अभियान जारी है और दुर्घटना के कारणों की जांच अभी भी चल रही है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में कौशल विकास पर भारत जापान हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस विचार विमर्श का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कौशल विकास सहयोग और कार्यबल की आवाजाही बढ़ाना है। परामर्श के दौरान मुख्य रूप से भारत जापान मानव संसाधन आदान प्रदान और सहयोग कार्य योजना को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। यह कार्य योजना पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच 15वें शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त रूप से जारी की गई थी। जापान में रोजगार अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को तैयार करने और दोनों देशों की संस्थाओं के बीच निकट समन्वय पर भी विचार हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे पहल से पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
3: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
2: भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट खेलने उतरेगी। सुनते हैं वैष्णवी की रिपोर्ट।
4: शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ अपने शानदार रिकॉर्ड को कायम रखना चाहेगी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सलामी बल्लेबाज की कमान संभालेंगे। वहीं साई सुदर्शन की टीम से बाहर होने के बाद देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं। टीम में सरफराज खान की वापसी हुई है। अनुभवी रविंदर जडेजा लोअर डाउन दी ऑर्डर में भारतीय टीम को बल्लेबाजी में मजबूती देंगे। उनके साथ साथ मानव सुथार और सारांश जैन ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे। वहीं गेंदबाजों में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और आकिब नबी को स्क्वाड में शामिल किया गया है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक समुदाय के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों और सीमा पार आतंकवाद पर चिंता जताई। भारत ने भूकंप प्रभावित कोलंबिया के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। बांग्लादेश में शिप ब्रेकिंग यार्ड में गैस रिसाव से 8 लोगों की मौत। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच कल से खेला जाएगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani. I'm Akhila with the World News. The headlines. President Draupadi Murmu reaffirms India's commitment to rules-based international order, calls for appropriate representation to global community at United Nations. New Delhi expresses concern over atrocities committed by Pakistani forces in POJK and the use of occupied territory for cross-border terrorism. India dispatches the first tranche of 20 metric ton relief supplies to earthquake-hit Colombia. 8 people killed in suspected gas leak at ship breaking yard in Bangladesh. First test of 2-match series between India and host Sri Lanka to begin tomorrow in Galle. President Draupadi Murmu has said India believes in a rules-based international order and her endeavour is to ensure that the global community receives appropriate representation in the United Nations and other multilateral organisations. She said this endeavour has been getting strong support from many countries. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day, the President noted that the national interest is the foundation of India's foreign policy and peace, cooperation, dialogue and the ideal of Vasudeva Kutumbakam are the pillars of its foreign policy.
6: We have entered into free trade agreements with many countries to enhance economic cooperation and strengthen mutual relations. We are playing a leading role among the countries of the Global South. We believe in a rules-based international order. Our endeavor is to ensure that the global community receives appropriate representation in the United Nations and other multilateral organizations.
5: The President highlighted that according to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate. The President highlighted that India has achieved some of the Sustainable Development Goals 2030 ahead of the schedule. She also said India has entered into a free trade agreement with many countries to enhance economic cooperation and strengthen mutual relations. The President said that India is playing a leading role among the countries of the Global South and the country has grown in stature on the global stage. On Operation Sindhu, President Draupadi Murmu said that the historic operation against terrorism demonstrated the capability of the Indian Armed Forces to act with precision. She said the operation sent a clear and firm message to terrorists and those who support them that no matter what they hide, they will have to face the consequences of their actions.
6: Historic operation against terrorism sent a clear and firm message to terrorists and those who support them that no matter where they hide, they will have to face the consequences of their actions. Suspension of the Indus Waters Treaty with the country that harbors terrorism is a decisive step in the interest of our nation.
5: Speaking about the country's digital infrastructure, President Draupadi Murmu said that India has developed the world's largest and best digital infrastructure and more than half of the world's real-time digital transactions take place in India. President Murmu said India is moving ahead towards building Viksit Bharat by the centenary year of independence in 2047. New Delhi today reiterated that Jammu and Kashmir and Ladakh are an inalienable and integral part of India. Briefing media in the national capital this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the issues that should concern the international

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, बड़ा ही प्यारा ख्याल है कि हम सब मुसाफिर हैं। किसी की जिंदगी में कुछ पल के लिए आते हैं, कुछ यादें छोड़ जाते हैं और फिर अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं। बस आज यही अंदाज लिए स्टूडियो से मैं रोहिणी एक बार फिर साथ हूँ आपके, लेकर आपका पसंदीदा हर सिंगार। आपकी यादों में बसे सदाबहार गीतों से सजी आज के हर सिंगार का आगाज आइए करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जो कि है जमीर फिल्म से। इस गीत को रचा है साहिर लुधियानवी साहब ने और संगीतबद्ध किया है सपन चक्रवर्ती जी ने, और आवाज आप मधुरमय आवाज पहचानिए और आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का, हर सिंगार का।

दोस्तों, अक्सर लेखक मुश्किल बातों को, मुश्किल एहसासों को बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे अल्फाजों में बयां करते हैं। बहुत खूब लिखा है कि जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूं मैं, बहुत मजबूत रिश्ते थे मेरे बहुत कमजोर लोगों के साथ। जीवन में कुछ रिश्ते चुनने का मौका ईश्वर आपको जरूर देता है दोस्त, लेकिन कुछ रिश्ते, कुछ नाते हमें कार्मिक मिलना करते हैं। जिंदगी के रंग रूप इसी ताने बाने से बुने नजर आते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा ये गीत है और संगीत है आरडी बमन साहब का। फिल्म है बड़े दिल वाला। आइए सुनते हैं ये प्यारी आवाज में सजा ये प्यारा गीत।

दोस्तों, जीवन के बड़े फलसफे हैं जिन्हें समझना भी कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं किसी की मदद उतनी ही कीजिए जितनी की वो एहसान के रूप में महसूस कर पाए। कहते हैं जरूरत से ज्यादा मदद अक्सर आदत बन जाती है और आदत जब टूटती है तो लोग नाराज हो जाते हैं। इसीलिए मदद दिल से कीजिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि सामने वाला उसे अपना हक समझ बैठे। सच्ची मदद दोस्त वही है जो इंसान को मजबूत बनाए। निर्भर नहीं, जिंदगी गंभीरता से नहीं बल्कि समझदारी से जीने में ही समझदारी है। आइए अगला गीत सुनते हैं कस्मे वादे फिल्म से। इस गीत को आवाज दी है किशोर जी, आशा जी और रफी साहब ने। जी अपनी कलम से इस गीत को सजाया है गुलशन बावरा जी ने और संगीत किया है आदि बर्मन जी ने।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: सौ 100.1 MHz पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हर सिंगार और ये अगला गीत आदमी और इंसान फिल्म से आप तक पहुंच रहा है। महेंद्र कपूर और जोगिंदर एस बलबीर जी की आवाज में इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और संगीतबद्ध किया है रवि जी ने।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं हर्ष सिंगार और इस गीत को सुनकर, इस गीत की महक को सुनकर या महसूस कर आप शायद याद आ गया होगा कि कल का दिन बहुत खास होने वाला है। जी हां, स्वतंत्रता दिवस की खुशबू में एक बार फिर आप डूबने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि किससे बलिदानों के भुलाए नहीं जाते, ये वो खुशबू है जिससे दामन महकाए जाते हैं। जी हाँ, सदियों सदियों हम इस एहसास को, इस खुशबू को महसूस करते रहेंगे। और वो कहते हैं ना कि वक्त है और वक्त की पाबंदियां कई बार हमें ये कहती हैं कि हमें कौन सा मोड़ लेना है जीवन में। वक्त की चाल जिसे कोई थाम ना सका दोस्त, वो कहते हैं ना, हमारी खामोशी से अगर किसी को अपनी जीत का वहम है तो रहने दो। कुछ गलत फहमियां वक्त ही दूर करता है और वक्त कभी गलत फैसला नहीं करता। वक्त का इशारा हमारी तरफ भी आ रहा है कि आज के हर श्रृंगार को यहीं समेटे और आप को यही गुजारिश यही करें कि FM गोल्ड के साथ आप जुड़े रहें 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये अगला गीत जो आप सुनेंगे गोलमाल फिल्म से, ये गीत है किशोर जी की आवाज में और इस गीत को लिखा है गुलजार साहब ने, संगीत से सजाया है आरडी बर्मन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। फिलहाल आज के हर श्रृंगार को यहीं समेटती हूँ, फिर मिलूंगी 11:40 पर। लेकिन उससे पहले 11:10 पर मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट सुनना ना भूले। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाटा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। यह सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अनुभव.
0: थैंक यू अमित. Benchmark domestic indices decline marginally. Sensex drops 71 points. Nifty settles at 24,366. India's wholesale inflation eases to 9.78% in July this year. And global crude oil prices rise.
1: आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट. सेंसेक्स में 71 अंक का नुकसान. निफ्टी 24,366 के स्तर पर बंद. थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति जुलाई के दौरान मामूली गिरावट से 9.78% दर्ज. और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त.

0: And as always, before we start the program, here is an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। सप्ताह के अंतिम कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मामूली गिरावट से 71 अंक गिरकर 78,009 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 30 अंक के नुकसान से 24,366 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 0.5% और एनएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% की गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर कारोबार की शुरुआत दबाव से हुई और पहले सत्र में दोनों सूचकांक मंदी के दबाव में बने रहे। हालांकि बाद में गिरावट में थोड़ी कमी आई और कारोबार के अंत में सूचकांक गिरावट के साथ ही बंद हुए।
0: Benchmark domestic equity indices ended marginally lower on the last trading day of the week. The Sensex dropped 71 points to close at 78,009. The Nifty dipped 30 points to settle at 24,366. The broader market also remained under pressure. The Nifty Mid-Cap 100 index declined 0.5%, while the Nifty Small-Cap 100 index slipped 0.7%. The markets opened on a weak note amid uncertain geopolitical conditions. Both benchmark indices remained under pressure during the first half of the session. However, in the latter half, the indices pared some of their intraday losses before closing in negative territory.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 23 कंपनियों में गिरावट रही। गिरावट वाले शेयरों में एशियन पेंट्स 1.7%, इंडिगो 1.4% और एनटीपीसी 1.2% के नुकसान से बंद हुए। हालांकि भारतीय एयरटेल 2.5%, अडानी पोर्ट 1.8% और आईसीआईसीआई बैंक 0.6% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे।
0: In the sectoral indices on the BSE, 23 out of 28 sectors ended in the negative zone. Among the top losers, housing finance declined 1.4%, mid-small private banks' quality tilt dropped 0.6%, and energy as well as oil and gas.

0: fell nearly 0.5%. In contrast, hospitals increased 1.5%, telecommunication gained 0.9%, and insurance added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,393 companies declined, shares of 1,896 companies advanced, while shares of 213 companies remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली बढ़त से 95.43 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. विशाल, क्या नजर आता है बाजार में, ट्रिगर क्यों नहीं आ पा रहा, या बाजार में कौन सा दबाव है जो बाजार को अभी भी तेजी बढ़ाने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहा है? बाजार दबाव में खुलते हैं, कुछ उसमें सुधार आता है, लेकिन अंत में दबाव ही हावी रह जाता है.
2: देखिए, आपने सही कहा, अगर आज के बाजार पर नजर डालें तो जो शुरुआत हुई वो बड़े दबाव में हुई, लेकिन दोपहर बाद वो जो दबाव जब अपनी पीक पर पहुंचा तो उसके बाद एक बार फिर से खरीद शुरू हुई शेयरों की और थोड़ी सी रिकवरी जरूर हुई. इस तरह का पैटर्न केवल आज की बात नहीं है. मोटे तौर पर अगर निफ्टी को देखें तो लगभग पिछले 8 या 9 सेशन में ही पैटर्न रहा है. इस पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट लगभग 0.8 और 0.6% के आसपास की गिरावट रही है. कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन एक एंथुजियाज्म की कमी है जिसे आप कहें मार्केट में, और वो कमी एंथुजियाज्म की कई फैक्टर्स के कारण है. कुछ फैक्टर्स इंट्रा मार्केट कहे जा सकते हैं, यानी कि जो एक एक करके जो नतीजे आ रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, यानी कि जिनको सेक्टोरल लीडर्स कहा जाता है, वो उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतर रहे हैं. मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ खास तौर पर उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतर रहे हैं जितने होने चाहिए थे. पहली बात तो ये, और दूसरा बाजार हमेशा थोड़ा सा इंटरनेशनल फैक्टर्स की तरफ भी उसकी नजर जाती है. तो जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, खासतौर पर मिडल ईस्ट की बात करें, यानी कि ईरान बनाम अमेरिका जो तनाव जारी है, उसमें उम्मीद जरूर जगी थी अब से 10-15 दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, कि इसका समाधान निकल रहा है, इसका समाधान हो जाएगा. लेकिन पिछले लगभग 8 से 10 दिन में उस तस्वीर में जो बदलाव हुआ है उसका असर बाजारों पे ज्यादा देखने को मिल रहा है, बनिस्बत जो जैसे हम तेल की कीमतों की बात करें, क्योंकि वो सेंटिमेंट नहीं उभर के सामने आ रहा है. यानी कि निवेशकों को ये लग रहा है कि शायद अभी इसमें समाधान थोड़ा और समय लगेगा, तो थोड़ा सा और कॉशियस रहने की जरूरत है. इसीलिए जो एफआईआई की बिकवाली है वो भी जारी है. हालांकि आंकड़ा आज का देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग अगर मैं गलत नहीं तो शायद 500 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है जो बिकवाली एफआईआईज ने की है. लेकिन मोटे तौर पर जो बड़ी पिक्चर उभर के आती है उसमें फिर हम बाजार की तरफ देखते हैं कि आज घटा या बढ़ा
3: जी.
2: तो वो घटा ही है. अगर वो 0.8% भी घटा है तो वो घटा ही माना जाएगा, अगर वो 0.1% घटा है तो भी घटा ही माना जाएगा. लेकिन मेरा मानना है कि एक सस्टेन्ड एफर्ट मार्केट में जरूर है कि इसको ये जो ट्रेंड है इसको किस तरीके से कंट्रोल में रखा जाए, काबू में रखा जाए. और एक कोई इंडिकेटर का इंतजार है, किसी एक इंडिकेटर का इंतजार, और मुझे लगता है कि वो स्पर जो है बाजार में देखने को मिल सकता है आने वाले समय.
0: सो विशाल, यू आर सेइंग दैट टिल द टाइम द मार्केट सीज सम काइंड ऑफ अ स्पर, अ काइंड ऑफ ट्रिगर, basically what is going to happen is that the geopolitical conditions, the geopolitical scenario, the way it is what is going to weigh on the minds of investors till there is a clearer picture. And not just a clearer picture which stays clear for over a long period of time, over a sustained period of time, for markets to take their cues and get back.
2: Yeah, it's like there's a trust factor as well when it comes to bigger international push and pull or triggers as well. Now in this scenario, the ongoing tensions in the Middle East, I think trust factor plays a very important role. Nothing seems to be fixed and finalized, because for the past 2-3 months, what is happening is a decision is taken, then that decision is renegated upon from either side or from the both sides as well, or there is some other factor which comes into play. So it's going, it's sort of a pendulum effect. It's going to and fro, too much happening. By the time the markets try to, you know, recover from a particular event which has happened, something else comes across.
0: Yes.
2: So that is why we've seen this subdued kind of, you know, sentiment in the markets over the past 5 to 7 sessions.

0: And that is not only the factor, but yes, that is a major factor as well.
1: विशाल, अगर सेक्टोरल इंडाइसिस की बात करें, अभी भी पीछे कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि मेटल सेक्टर काफी बेहतर कर रहा था, अब वो भी दबाव में आता हुआ नजर आ रहा है. ये कौन से दबाव हैं जो इस तरीके की चीजों को अभी रोक रहे हैं, या सिर्फ जो आपने शुरुआत में बात करी कि सिर्फ इंटरनेशनल फैक्टर हैं जो बाजार को दिशा देने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहे हैं?
0: देखिए, कई सेक्टोरल इंडाइसिस की जब हम बात करते हैं, हमें तो उसमें हमें ये भी देखना है कि उस सेक्टर पे ज्यादा प्रभाव किस चीज का है. आपने मेटल सेक्टर की बात की, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां किस तरह से चल रही हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो बड़े अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका इस सेक्टर से संबंधित पॉलिसीज में क्या बदलाव आया है, उसका असर, या फिर फ्यूचर में किस तरह की इंडिकेशन आ रही है, उसका असर सीधे पड़ता है. लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको लगेगा कि ये जैसे कहा जाए मुसीबत के समय के हीरो कहा जा सकता है. जैसे कि अगर आज ही का बाजार हम देख लें तो निफ्टी की तरफ देखें तो मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, और मेरे ख्याल से बीएससी की तरफ देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. अब ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनपे जो इंटरनल स्टैंडर्ड्स हैं जो या इंटरनल मूवमेंट्स हैं उनका काफी असर रहता है. उनका प्रदर्शन ठीक रहता है, उनकी उनके जो सेक्टोरल लीडर्स हैं, अगर उनके क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो अच्छे आ रहे हैं, और कोई ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है जिसका नेगेटिव असर पड़े, तो वो धीरे से जो नुकसान बाजार में होता दिखाई हो रहा है उसे कवर अप भी कर लेते हैं. तो सेक्टोरल इंडाइसिस को समझना है तो फिर ये भी समझना पड़ेगा कि उनके ऊपर जिन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है वो क्या डोमेस्टिक है फैक्टर्स, या वो इंटरनेशनल ज्यादा है, या वो दोनों का कोई एक मिक्स है. और अगर वो मिक्स है तो आपको वैसा ही मिश्रित रिएक्शन जो है उस सेक्टर की तरफ से भी देखने को.
1: क्या ये माना जाए कि निवेशक अभी उतने सतर्क हैं कि उनको लगता है कि अगर पिछले दिनों से और आज के दिनों में कहीं उस पर्टिकुलर सेक्टर में उनको मुनाफे की गुंजाइश नजर आती है तो वो लंबे समय को छोड़ के अल्प अवधि में अपना कहीं ना कहीं जो बैलेंस शीट है उसको मजबूत कर रहे हैं या उसको ठीक ठाक करने पे?
0: बिल्कुल, आपने सही कहा. इस वक्त जिन्हें कहा जाए कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के जो इन्वेस्टर हैं वो शायद इस वक्त बहुत तेज गति से अपने मैं कहूंगा इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक लंबी दूरी का खिलाड़ी होता है. और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने कहीं अपने अपना धन निवेश किया है तो बहुत सोच समझ कर किया होगा. हालांकि मैं जरूर कहूंगा कि बीच बीच में उसको उस इन्वेस्टर को उस सेक्टर की पॉलिसीज, उस सेक्टर के जो लीडर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, जिस कंपनी में उन्होंने निवेश किया है उसकी परफॉर्मेंस, उस सब पे नजर जरूर रखनी चाहिए. लेकिन ये जो समय होता है जब उठा पटक चल रही है बाजार में, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो उसमें जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फायदा भी है और कहीं कहीं नुकसान भी.
1: बहुत संक्षेप में एक चीज ये जानना चाहूंगा, क्योंकि भारत की जो घरेलू परिस्थितियां हैं और सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो एमएसएमई को सपोर्ट देने से इनिशिएटिव ईसीजीएलएस थोड़े दिन पहले ही सरकार ने दिया है, और इंफ्रा पे भारी मात्रा में निवेश है जो बरकरार है, ये सारी स्थितियां हमारे बाजार को कितना स्थायित्व देने की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाती हैं?
0: इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो आज ही की बाजार की परफॉर्मेंस है. मैंने कहा कि निफ्टी की अगर अपनी तरफ देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर था उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, उसने थोड़ा सा शॉक को एब्जॉर्ब किया. और देखिए, जहां तक पॉलिसीज की बात है उनमें कंसिस्टेंसी की कोई कमी नहीं है, लेकिन केवल पॉलिसीज बाजार की दिशा तय नहीं करती हैं. बहुत सारी और भी सेंटिमेंट्स हैं जिनसे बाजार की दशा और दिशा तय होती है, जिनमें डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होते हैं. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से वो मोमेंटम बन रहा है बाजार
1: में. चलिए खबरों के कुछ और अच्छी खबरों पर नजर डालते हैं. जुलाई के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 9.87% से घटकर 9.78% रह गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के दौरान वार्षिक महंगाई दर के मुख्य कारक खनिज तेल, खाद्य पदार्थ, धातुएं, गैर खाद्य उत्पाद और रासायनिक उत्पाद रहे. मासिक आधार पर मुद्रास्फीति में कमी का मुख्य कारण ईंधन और ऊर्जा की महंगाई दरों में कमी आना है. थोक महंगाई दरों में मामूली कमी के बावजूद लगातार तीसरे माह महंगाई दर 9% से ऊपर बनी हुई है. उत्पादक मूल्य सूचकांक में वार्षिक आधार पर 9.57% की बढ़ोतरी हुई, जबकि मासिक आधार पर यह लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा. थोक मूल्य पर आधारित खाद्य सूचकांक जून के 6.14% से बढ़कर जुलाई में 6.65% हो गया. थोक मूल्य सूचकांक में शामिल प्रमुख घटकों में प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर 7% से बढ़कर 8.5% रही, निर्मित वस्तुओं की महंगाई दर 7.5% से बढ़कर 8.3% रही, हालांकि ईंधन और ऊर्जा समूह की महंगाई दर जून के

0: And the international crude oil prices, the effect we can see on the foreign exchange reserves that are here.
1: That and combined with the recent move by the government and the RBI for the
0: FCNR.
1: FCNA, yeah, the OCIs and
0: Yes.
1: POIs, wherein they can invest,
0: Yes.
1: their money in a particular scheme. Now that has contributed a lot, and I can see, although those figures are not here, but I can see, I'm pretty sure that that would be a significant part of the contribution. But yes, of course, again, what is saved on one end, if you don't spend it there, then of course it can be considered as a saving, and that is why, the exchange reserves, foreign exchange reserves, are a good indicator of how exactly how wisely are we spending our money, and what is the international scenario. So as of now, it looks to be in our favor, to be very honest.
2: बहुत संक्षेप में, एक लाइन में, अगर साप्ताहिक आधार पर सरकार की जेब में विदेशी मुद्रा बचती है, इसके संकेत कितने अच्छे नजर आते हैं।
1: देखिए, मैं वही कहूंगा जो मैंने पहले कहा था अमित जी, के अगर
2: जेब में पैसे आ रहे हैं
1: साप्ताहिक आधार पर जेब में पैसे बच रहे हैं, तो वो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगले ही सप्ताह उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर भरता है, तो अब देखना पड़ेगा कि सरकार इन पैसों का इस्तेमाल, या ये जो धन संचय हुआ है, ये किस स्कीम पे होता है, किस सेक्टर पे होता है, किस तरह सरकार उसको खर्च करती है।
2: मोटे तौर पर राहत की बात तो है।
1: मैं बिल्कुल
2: जी। चलिए नजर डालते हैं एशियाई बाजार पर। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2.4% और जापान के निके में लगभग 0.6% की बढ़त दर्ज हुई। विशाल, अगर इसके साथ एशिया के प्रमुख बाजारों के भी हम चर्चा करें, वहां पर ठीक है, नुकसान तो नहीं है, और जैसा कि पहले कहा जाता था, अब पूरा विश्व एक वैश्विक बाजार बन चुका है, क्या ये माना जाए, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी बहुत सारे जो संकेत हैं वो उतने उत्साहजनक नहीं है, जिस जो बाजार में ट्रिगर की आप बात कर रहे थे वो भारतीय बाजार में आ पा रहे, क्या यही एक कारण है, या सभी बाजार निवेशक अभी देखो और सतर्क रहो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, जिस तरह से आपने भी बताया, सब उसी के प्रति चिंतित हैं, या इसके अलावा और भी कोई कारक है?
1: देखिए, केवल मिडिल ईस्ट की बात नहीं है। अगर हम दूसरे कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो यूरोपीय देशों की बात करें, उनके बाजारों की बात करें, तो उनपे रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है उसका सीधा असर पड़ता है।
2: एक खबर इसमें बीच में यह भी आई थी, क्योंकि यूक्रेन से, चूंकि वो बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादक था, वहां उसके दामों में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, कमी भी आई है।
1: जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस अर्थव्यवस्था के आसपास का इलाका जो है, वहां अगर किसी तरह का जियोपॉलिटिकल तनाव है, तो उसका सीधा असर वहां भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ तनाव ऐसे होते हैं जिनकी ग्लोबल इम्प्लीकेशन है। रशिया और यूक्रेन के बीच जो तनाव है, उसकी भी ग्लोबल इम्प्लीकेशन थी, क्योंकि उसको उसके चलते रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ते हैं, और अगर इन दोनों के बीच तनाव बढ़ते हैं, तो उसका असर बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर देखने को मिलता है। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, उसका सीधा असर फ्यूल प्राइसेस पे और उसका सीधा असर एनर्जी सेक्टर पे पड़ता है, जिसका असर इन टर्न पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर पड़ा, और हमने देखा भी कितना किस तरह से पड़ा। फिर कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। कुछ सेक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर हो, और उसका असर भी देखने को मिलता है। और फिर कुछ इंटरनल पॉलिसीज जो हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में, लगभग 2 से 3 साल में, हम सब लोगों ने देखा है कि कई सारी अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको और इंटरनली बाउंड कर दिया है, तो उसका कितना असर बाहर पड़ेगा, किस तरह से वो प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो ये सब फैक्टर्स मिला के एक एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, जिसमें मार्केट ढूंढती है कि कोई स्पर तो मिले, कोई कोई कोई एक स्पार्क तो मिले। अब वो उसी का इंतजार शायद हो रहा है।
0: लेट्स मूव ऑन टू कमोडिटीज। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रेटन्ड एन इनडेफिनिट नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरान। ब्रेंट crude was trading 0.1% up at $87.11 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.3% up at $81.50 per barrel when reports last came in.
2: घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.5% के नुकसान से 1,52,363 रुपए प्रति 10 ग्राम पे रहा, जबकि चांदी 0.2% की कमजोरी से 2,33,842 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई। विशाल, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे कच्चे तेल में एक खबर आती है, थोड़ी सी उसकी कीमतें वापस से दबाव में आती, बढ़त की तौर पर करती हैं, लेकिन पिछले अगर एक सप्ताह की बात, मैं सिर्फ सोने चांदी के ऊपर केंद्रित करूं, सोना वहां से काफी लंबा सफर तय कर चुका है, जहां पहले लग रहा था कि नहीं सोने में अभी और गिरावट रखती, वहां से सोना वापस से रिबाउंड हुआ। अब ऐसी स्थिति में ये तेजी का क्या कारण

0: है और कच्चे तेल की कीमतों में वो किस करवट लेती हुई नजर आएगी फिलहाल की परिस्थितियों में?
1: मैं संक्षेप में कहूंगा, कच्चे तेल की कीमतों में तो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन सोने में आपने सही कहा, ये अनुमान मेरा भी है कि अब जो गति सोने ने, धीमी गति जो सोने ने पकड़ी है, मुझे लगता है वो धीमी गति से बढ़ोतरी जारी रहेगी। उस गति, वो गति बहुत तेज ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बढ़ोतरी जो है ये धीरे धीरे धीरे धीरे जरूर जारी रहेगी।
0: विशाल कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। और चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
2: थैंक यू अमित। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन मार्जिनली, सेंसेक्स ड्रॉप्स 71 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,366। इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 9.78% इन जुलाई दिस ईयर एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र। फॉर नाउ गुड बाय।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मन मीत लेकर साथ हूं मैं रोहिणी। दोस्तों कहते हैं कि कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करते हैं वही आप डिजर्व भी करते हैं। जीवन का यही फलसफा हमें लोगों की पहचान में कराता है और आप अपने कर्माज लिखते जाते हैं। आइए गीत मेरे मनमीत में प्यार के प्यारे एहसास को सदाबहार गीतों के साथ महसूस करें। इस आगाज करते हैं आज के गीत मेरे मनमीत का इस प्यारे से गीत के साथ, जो कि है हम फिल्म से। जी हाँ, आपको बता दूं इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडकर, उदित नारायण और अलका याग्निक ने। वहीं साथ ही इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी जी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

101.1 MHz पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत मेरे मन बीत। और श्रोताओं, कहते हैं कि समय सबको बदल देता है, किसी को पहले तो किसी को बाद में, तो समय पर भरोसा रखिए और उसके साथ ताल से ताल मिलाकर चलिए। जी हाँ, ये कदम जब समय के साथ मिलकर चलते हैं ना, तो वाकई में कामयाबी का आंचल आप जरूर थामते हैं। अगला गीत संगम फिल्म से आप तक पहुंच रहा है, मुकेश जी और महेंद्र कपूर साहब की आवाज में। इस गीत को लिखा है शंकर जयकिशन जी ने और संगीत बद किया है शैलेंद्र जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज़।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में। कहते हैं सफर लंबा हो या छोटा, साथ चलने वाला इंसान सही होना चाहिए। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया आप कभी कभी करते हैं जिंदगी का, क्योंकि संभलने का हुनर तभी आता है। आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि है, आपको बता दें, आन मिलो सजना फिल्म से ये गीत है, लता जी और किशोर जी की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी जी ने और संगीत बद किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। अच्छा।

100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं श्रोताओं गीत मेरे मन में। और ये अंदाज फिलहाल यहीं रोकती हूँ, यानी कि गीत मेरे मन में को आज यहीं समेटती हूँ और आपसे लेती हूँ इजाजत। ये एहसास जो आप कल बेहद खूबसूरत अंदाज में महसूस करेंगे, जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है, अपने खून से जिस जमीन को सींचा उन बहादुरों को सलाम है। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और फिलहाल आपको छोड़े जाती हूं शहीद फिल्म से इस गीत के साथ रफी साहब की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए लाइटर म्यूनिशन प्रणाली खरीदने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और निबे प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1,500 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर कल हस्ताक्षर किए। ये समझौते कल नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हुए। यह प्रणाली आर्टिलरी रेजिमेंट की क्षमता बढ़ाएगी और सेना की ऑपरेशनल क्षमता मजबूत करेगी। अमेरिका के कई राज्यों में 15 अगस्त 2026 को इंडिया डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी नेताओं ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान की भी सराहना की। सिएटल में इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फेडरल रिजर्व बिल्डिंग पर भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा। समारोह में अमेरिकी नेताओं के साथ भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

रेडियो की इस आत्मीय तरंग पर आज हम उस स्वाधीन चेतना को नमन करें जिसने भारत की मिट्टी को अपने त्याग और साहस से गौरव दिया। आजादी केवल पराधीनता से मुक्ति का नाम नहीं, बल्कि अपने विवेक से सही चुनने और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का अवसर भी है। हमारे पूर्वजों ने जिस भविष्य का स्वप्न देखा था, उसकी सुंदरता हमारे आज के आचरण से तय होती है। आइए देश प्रेम को केवल नारों तक सीमित ना रखकर अपने व्यवहार, अपनी ईमानदारी और अपने कर्मों में उतारें। भाषा, प्रांत, परंपरा और विचारों की विविधता के बीच भारत की आत्मा हमें साथ चलना सिखाती है। हम ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ आगे बढ़ सके और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे सके। तिरंगे को नमन करते हुए यही संकल्प हो कि हमारे कर्म भारत की स्वतंत्रता की गरिमा को और ऊंचा करें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

कुछ मिलन दिनों की गिनती नहीं करते, कुछ मिलन दिनों की गिनती नहीं करते। वे भीतर एक ऐसी ऋतु छोड़ जाते हैं जो मौसम बदलने पर भी अपने रंग नहीं बदलती। आज उसी ऋतु को अपने साथ लिए मैं लौट आई हूँ। पीछे एक नगर था, सामने दूसरा, बीच में फैली हुई लंबी सड़क, जैसे पृथ्वी ने हमारे लिए दो अलग दिशाएं चुन ली हों। पर जाने क्यों मुझे लगा दिशाएं अलग हो सकती हैं, नियति नहीं। उस अंतिम क्षण में जब आंखें अपना संचित जल छिपा नहीं सकी, हमने कोई वादा नहीं गढ़ा, बस एक दूसरे को इतना भर महसूस किया कि अगली भेंट तक यह संबंध अपनी धूप बचाए रखेगा। अगली भेंट तक यह संबंध अपनी धूप बचाए रखेगा। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है शक्ति।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत आवाज है मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम है कश्मीर की गली।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और आज थोड़ी सी बातें मन की करते हैं। पता है, मन के मौसम का सबसे सुंदर जो पहलू है वो ये है कि मन का मौसम हमें बदलने का मौका देता है। वो बताता है कि हमारी जो संवेदनाएं हैं वो हमारी कमजोरी नहीं है। किसी के लिए महसूस करना हमारे होने का सबसे सुंदर प्रमाण है। अपनी भूल को देख पाना भी अपने भीतर की मैच्योरिटी या कहें कि परिपक्वता है। दूसरों के दर्द को समझ लेना संबंधों की गहराई बताता है और बीती हुई बातों को पूरी गरिमा के साथ पीछे छोड़ देना संबंधों की गहराई के साथ साथ हमें ये बताता है कि हमने जीने का सलीका सीख लिया है। हर स्मृति को साथ लेकर चलना मन बताता है कि जरूरी नहीं है, और हर रिश्ते को कोई अंतिम नाम देना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी मन को जानने के लिए मन के भीतर लौटना जरूरी होता है, और वहीं से जब हम अपने मन के भीतर लौटते हैं तो हम मन के मौसम में अगली तैयारी यानी अगले मौसम की तैयारी करने लग जाते हैं। समझना थोड़ा सा कठिन है, पर ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान सी बात है कि मन का मौसम हमें बदलने का बार बार मौका देता है, इसलिए ये मौसम सबसे खूबसूरत मौसम होता है। सुन रहे हैं आप निशिगंधा और अगला गीत फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से, आवाज है आशा भोसले की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिलने के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया। मंत्रालय ने कहा कि ज्यादातर पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है, जबकि कुछ मामलों में केवल प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं बाकी हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत केन नदी का अतिरिक्त पानी बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। इससे बुंदेलखंड में सिंचाई, पेयजल और बिजली की सुविधा बढ़ेगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में कौशल विकास पर भारत जापान हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस विचार विमर्श का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कौशल विकास सहयोग और कार्यबल की आवाजाही बढ़ाना है। परामर्श के दौरान मुख्य रूप से भारत जापान मानव संसाधन आदान प्रदान और सहयोग कार्य योजना को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ। जापान में रोजगार अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को तैयार करने और दोनों देशों की संस्थाओं के बीच निकटतम समन्वय पर भी विचार हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म नया दौर से आप सभी के लिए।

प्रकृति का एक बहुत सुंदर एक नियम है, एक उदाहरण है कि धरती जब कठोर होने लग जाती है तो बारिश की बूंदें बरसकर उस धरती में नमी पैदा कर देती है और नम धरती पौधों को जीवन देने लग जाती है। ठीक उसी तरह से मन जब भीगता है तो भीतर की जो कठोरताएं होती हैं वो कम होने लगती हैं और हम दूसरों की परिस्थितियों को अधिक सहजता से समझने लग जाते हैं। क्षमा का अर्थ पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देता है और रिश्तों में अपेक्षा से अधिक आत्मीयता दिखाई देने लगती है। पुरानी शिकायतें अपना प्रभाव खोने लगती हैं और अपने प्रति भी दृष्टि थोड़ी कोमल हो जाती है। मन समझता है कि हर बात का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं, कुछ अनुभव समय के साथ अपना अर्थ बताते हैं। कुछ संबंध भी बिना नाम के भी महत्वपूर्ण रहते हैं और भीगा हुआ मन अक्सर भीतर से अधिक परिपक्व होकर निकलता है। कितनी सुंदर बात है, बस समझने की जरूरत है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म यकीन से हम आपके लिए लेकर आए।

आपको पता है, किसी भी संबंध में, किसी भी रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी होती है? कभी कभी किसी संबंध में, किसी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात वही होती है जो कही नहीं गई होती है। वह किसी आग्रह की तरह मन में आती है और फिर सामने जो परिस्थितियां होती है ना, उन परिस्थितियों के सामने वो रुक जाती है। हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा होता है उससे हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर उसकी आंखों में अपनी बात का असर जब पहले ही पढ़ लेते हैं तो हम रुक जाते हैं, फिर शब्द भी लौट जाते हैं और बातचीत किसी सामान्य से विषय पर चली जाती है, लेकिन भीतर ही भीतर एक अलग संवाद चलता रहता है, बिना रुके, बिना कुछ कहे। वहां कोई सफाई नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, केवल अपने जीवन के अनुभव की एक सच्चाई होती है। और इसी ऊहापोह की स्थिति में कभी कभी लगता है कि सामने वाला समझ गया होगा जो हमने कहा नहीं, और कभी कभी लगता है कि जो कहा गया शायद उसने वो भी नहीं समझा। और इसी अनिश्चितता में कई संबंध अपनी असली कहानी जीते चले जाते हैं। कुछ निकटताएं इसलिए गहरी होती हैं कि उनमें हर बात कहनी नहीं पड़ती, और कुछ दूरियां इसलिए बढ़ती हैं कि आवश्यक बात समय पर कही नहीं जाती। और हमारी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो बहुत कुछ महसूस कर सकता है, कह सकता है, वो अपनी फीलिंग को, अपनी अनुभूति को शब्द नहीं दे पाता, और फिर भीतर ही भीतर जो जीवन का सच होता है, या यूं कहूं कि जो खामोशी होती है, वो अपना रास्ता खोजती रहती है, कभी किसी पुराने प्रसंग में, कभी किसी

साधारण वाक्य में, और तब समझ आता है कि अनकहे में भी कई बार जीवन का पूरा अध्याय सिमटा होता है ना। जरूरी और ध्यान देने वाली बात। सुन रहे हैं आप निशिगंधा, और निशिगंधा में अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला।

0: एक ऐसा शब्द जो हम सबके आसपास घूमता रहता है। हम बातें तो बहुत करते हैं उस विषय पर जब वो हमारे जीवन में वो चीजें आती हैं, तो हम उसको समझ नहीं पाते या यूं कहें अप्लाई नहीं कर पाते। वो है अधूरा संवाद, यानी अधूरी बातचीत। क्या होता है कि कुछ कुछ बातचीत ऐसी होती है जो कभी पूरी नहीं होती। उसका एक हिस्सा शब्दों में रहता है और दूसरा व्यक्ति के खुद के भीतर। हमने जो कहा उसका अर्थ सामने वाले ने समझा नहीं या क्या समझा, इस पर तो हमारा कोई वश नहीं होता। पर कभी कभी कहते हैं ना कि कहने वाले का एक साधारण सा वाक्य भी सुनने वाले के लिए बहुत गहरा अर्थ लेकर उस तक पहुंचता है। और कभी कभी हम बहुत लंबा बोलते हैं, बहुत बातों की पूरी व्याख्या कर देते हैं, पर जो हमें सुन रहा होता है उसकी भावना को हम छू भी नहीं पाते। और जिसे हम व्यक्त करना चाहते थे उसके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं थे। यही कारण है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जो रिश्ते होते हैं ना, रिश्तों में बोलना पर्याप्त नहीं होता। जी हाँ, बोलना सिर्फ पर्याप्त नहीं है, सुनना, समझना और महसूस करना भी जरूरी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को देखकर त्वरित निर्णय बना लेते हैं, तुरंत एक विचार खुद के अंदर बना लेते हैं कि सामने वाला जो है वो बहुत कठोर हृदय का है, उसे बातें समझ नहीं आती और वो जो है हमारी बातों को समझ नहीं पा रहा है। जनाब, क्या होता है ना कि कभी कभी इंसान जो ऊपर से कठोर दिखता है वो भीतर से उतना ही प्यार करने वाला होता है। बस अंतर इतना होता है कि वो अपने अंदर की पीड़ा को शब्द नहीं दे पाता, सही भाषा नहीं दे पाता। और कई बार जो वो दूरी बनाकर रखता है ना, उसमें कोई उपेक्षा नहीं होती बल्कि असमर्थता होती है। इसलिए राय बनाने से पहले एक बार जरूर सोचें। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है सच्चा झूठा।
1: यूं ही तुम मुझसे

और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है अनपढ़, आवाज है लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है मेरे लाल, आवाज है लता मंगेशकर की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू होगी। यात्री जामा मस्जिद, लाल किला और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, कथित हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए कथित प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की भी मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और मंत्री पी नारायण के खिलाफ अमरावती विकास योजना में कथित अनियमितताओं से संबंधित आपराधिक मामलों को रद्द करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में आपराधिक कार्यवाही एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कहने पर शुरू की गई थी और कोई भी किसान शिकायत लेकर आगे नहीं आया। पीठ ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां अदालतों में नहीं लड़ी जानी चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

ये काम किया।

¡Vamos!

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है तुम सा नहीं देखा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ।

मैंने पूछा किस वन से लाते हो, मैंने पूछा किस वन से लाते हो ये अनकहे राग, किस मिट्टी से चुनते हो इतनी गहरी प्यास। जब तुम्हारी बांसुरी दूर कहीं बजती है, मेरे भीतर कोई पुरानी नदी करवट लेती है। मैंने कहा ये कैसा जादू है जिसे छूती नहीं उंगलियां, फिर भी मन के कोने कोने में फैल जाती हैं लहरियां। वह हंसा नहीं, बस इतना कहा, राग मेरा कहां जिसे सुनती हो, वह तो तुम्हारे हृदय की अनंत पुकार है। मैंने आंखें झुका ली, बात वही अधूरी रही, जैसे किसी अधलिखे पत्र में सबसे जरूरी पंक्ति बची रही, जैसे किसी अधलिखे पत्र में सबसे जरूरी पंक्ति बची रही। मैंने पूछा किस वन से लाते हो ये अनकहे राग, किस मिट्टी से चुनते हो इतनी गहरी प्यास। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है लव स्टोरी, आवाज है अमित कुमार और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

मैंने पूछा यदि किसी दिन मैं तुमसे नाराज हो जाऊं, अपनी सारी राहें बदलकर किसी अनजान दिशा में चली जाऊं। उसने कहा, तब भी कोई शिकायत न होगी, रागिनी अपनी गति से बहेगी। प्रेम अगर सचमुच प्रेम है तो दूरी से उसकी जड़ न ढहेगी। मैंने कहा, और यदि मैं तुम्हारे संगीत से भी अपना रिश्ता तोड़ लूं? उसने धीरे से उत्तर दिया, तब मैं बांसुरी रख दूंगा, पर तुम्हारे लिए जन्मे राग को कहां रख पाऊंगा। उस क्षण लगा प्रेम शायद पाने का नाम नहीं किसी को बांध कर रखने का कोई अधिकार नहीं। प्रेम तो वह दीप है जिसकी लौ किसी मुट्ठी की बंधक नहीं होती, फिर भी उसकी एक किरण दूर बैठे मन तक पहुंचती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है बेताब, आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दे कि से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और उसके बाद फिरोज होंगे आपके साथ। पर चलते चलते एक सुंदर सा संदेश आप सभी के लिए। आजादी हमारे लिए केवल इतिहास का गौरव नहीं बल्कि वर्तमान को बेहतर बनाने का सतत दायित्व भी है। इस पावन अवसर पर उन सभी ज्ञात अज्ञात वीरों को नमन जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। उनके त्याग ने हमें केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं दिया बल्कि अपने सपनों को दिशा देने का अधिकार भी दिया। आइए हम ऐसी स्वतंत्रता को सार्थक करें जिसमें विचारों में उदारता, आचरण में ईमानदारी और हृदय में देश के प्रति सच्चा सम्मान हो। हमारी विविधता हमारी शक्ति बने और एकता हमारी पहचान। देश की प्रगति केवल बड़े परिवर्तनों से नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के छोटे छोटे जिम्मेदार कर्मों से निर्मित होती है। आज तिरंगे को नमन करते हुए अपने भीतर यह संकल्प जगाएं कि भारत की गरिमा हमारे व्यवहार में दिखाई दे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा भारत सदैव समृद्ध, सशक्त और गौरवशाली रहे। जय हिंद। और अब फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहेगी अनुमति, छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, आवाज है उदित नारायण की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान करने का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए गए। इस कार्यक्रम को अपार जन समर्थन मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की भी मांग की। सरकार ने टीवी चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा। मंत्रालय के अनुसार टीवी प्रसारण में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि के नियमों की समीक्षा की गई है। वर्ष 2006 में जब यह सीमा लागू की गई थी तब देश में 62 टीवी चैनल थे, अब इनकी संख्या 900 से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में डिजिटल बदलाव के बाद दर्शकों के पास अब चैनलों के ज्यादा विकल्प उपलब्ध हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा पुनर्वास नहीं मिलने के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the president highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
3: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
2: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement, as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said, yesterday the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
3: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bastar Olympics and many artists showcased their talent in Bastar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
2: The president said that the students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
3: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth.
2: Speaking about the country's young population, the president said 65% of the country's population is below the age of 35, which is the most valuable asset. She said, many of our youth are embracing the culture of job creation as they pursue the path of self-employment. President Murmu said, India is moving ahead towards building a Viksit Bharat by the centenary year of independence in 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the President has given a powerful and inspiring message on the eve of Independence Day, reflecting the aspirations of a confident, growing and vibrant India. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that the President's address offered a broad vision of a stronger and more prosperous nation by touching upon the hopes of youth, strength and contribution of women and the country's economic progress. The Vice President said that the President's words served as a call to every citizen to contribute wholeheartedly to nation building. The nation will celebrate its 80th Independence Day today, with Prime Minister Narendra Modi leading the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. As part of the celebrations, two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force will shower flower petals at the venue. The unfurling of the national flag will be synchronized with the 21-gun salute. Following the showering of flower petals, Prime Minister Narendra Modi will address the nation from the ramparts of the Red Fort. Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. today on Independence Day to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public. The services will operate at a 30-minute frequency on all lines until the commencement of regular revenue services as per the scheduled timetable for the day. And the government has decided to remove the 12-minute advertisement duration cap for television channels. Information and Broadcasting Ministry said in a statement that the decision shall come into effect from the date of notification of the amendment in the Cable Television Network Rules 1994. And that is the end of this news bulletin.

ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा आज के इस प्रोग्राम के आगाज में हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों कहते हैं कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। ऐसे ही एक लाजवाब और दिलनशी नगमे की बात करने जा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत और फख्र की एक नई रोशनी जगा देता है। फिल्म उपकार का ये सदाबहार गीत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो इसलिए क्योंकि वक्त भी है और ये वक्त की नज़ाकत भी और उसकी मांग भी। आज हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इसी उपलक्ष में इसी नगमे के साथ आज के सफर का आगाज करेंगे। हमारे किसानों की मेहनत, हमारी मिट्टी की बरकत और देश के प्रति अटूट प्रेम का खूबसूरत पैगाम है इस नगमे में। जब भी ये गीत बजता है ऐसा लगता है मानो खेतों की हरियाली, मिट्टी की खुशबू और तिरंगे की शान एक साथ दिल को छू जाती है। इस गीत के बोल हमें याद दिलाते हैं कि हमारा मुल्क सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारी सबसे बड़ी दौलत है।

मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। यकीनन मेरे देश की धरती सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसमें हम सब के खून शामिल है। और हमारे देश के वीरों ने इस धरती को बचाने के लिए, इस धरती के लिए, रक्षा के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। हमारे वीरों ने, हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की मिट्टी को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, तब जाकर हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:20:50। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस महफिल में मैं हूं आज आपका हमराही, आपका दोस्त फिरोज। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम भी बेहद पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, कहते हैं कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो सुनते ही होठों पर मुस्कान और दिल में रौनक ले आते हैं। आज अगला ये नगमा हम कुछ ऐसा ही आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसा ही शानदार और दिलकश गीत जिसे दर्शकों ने अपनी ताजगी और कशिश हमेशा उसको सुनने में बरकरार रखी। फिल्म नया दौर का ये सदाबहार नगमा उड़े जब जब जुल्फे तेरी अपनी चुलबुली धुन, दिलचस्प बोल और बेहतरीन अदायगी के लिए आज भी उतना ही मकबूल है।

जितना पहले था। इस गीत को अपनी खूबसूरत आवाज़ों से सजाया है सुरों के दो बेमिसाल फनकारों ने, मोहम्मद रफ़ी साहब और हम सब की प्यारी आशा जी ने। गीत की मस्ती, दोनों गायकों की शानदार जुगलबंदी और उसका खुशनुमा अंदाज हर बार सुनने वालों का दिल जीत लेता है। यही वजह है कि यह नगमा आज भी हर संगीत प्रेमी की प्लेलिस्ट में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। तो आइए यादों की इस हसीन महफिल को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म नया दौर का वही सदाबहार नगमा, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल है। स्वागत है आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में, और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं हूँ आपके साथ, आपका हमराही फेरोज। और हम और आप मिलकर चल रहे हैं एक बेहद खूबसूरत सफर पर, गीतों के, नगमों के और बेहद खूबसूरत संगीत के सफर पर, जिसमें हम अब बढ़ेंगे एक बेहद खूबसूरत फिल्म के गीत की तरफ। और वो नगमा है नासिर हुसैन साहब के निर्माण और निर्देशन में आई फिल्म तुमसा नहीं देखा से। ये फिल्म आई थी 1957 में। दोस्तों, पुराने हिंदी सिनेमा का जिक्र हो और मस्ती, शरारत और दिलकश अंदाज वाले गीतों की बात न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो आइए, आपके लिए जो नगमा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी धुन सुनते ही चेहरे पर मुस्कान और कदमों में थिरकने का एक नया जज्बा लेकर आगे बढ़ेगा।

और नगमा है फिल्म तुमसा नहीं देखा का, एक ऐसा गीत है जो अपनी चुलबुली अदाओं, जिंदा दिल लय और खूबसूरत शब्दों के लिए आज भी उतना ही मकबूल है। इस गीत को अपनी जादुई आवाजों से सजाया है सुरों के दो बेमिसाल फनकारों ने, मोहम्मद रफ़ी साहब और एक बार फिर से आशा जी ने। इसकी दिलनशी बोल लिखे हैं मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, जबकि इसकी यादगार धुन तैयार की संगीत के उस्ताद ओपी नैयर साहब ने, जिनका अंदाज आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में खास मकाम रखता है। तो आइए उसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ आगे बढ़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

फिल्म तुमसा नहीं देखा गया बेहद खूबसूरत नगमा था मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और वक्त हो चुका है आगे बढ़ने का अगले एक बेहद खूबसूरत नगमे के साथ, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते हुए आगे बढ़ें कि आप भी चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं अपने पैगाम के जरिए, अपने ही मेल्स के जरिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हमराही का यह सफ़र आपको कैसा लग रहा है, हमें ज़रूर बताइएगा। तरीका बहुत ही आसान है, आपको मेल करना है और उसके लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgold@gmail.com fmgold@gmail.com। तो देर न करें और आप अपना पैगाम हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और रात के इस हम सफ़र में आप का हम सफर मैं हूं फिरोज, आप भी हमारे साथ जुड़िए इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ। और अगला जो नगमा है वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म का है। बात अगर क्लासिक दौर की हो तो इस फिल्म के नगमे को बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। और ये नगमा है फिल्म श्री 420 का। आवाजें हैं लता जी, मोहम्मद रफी साहब और मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है हम सबके बेहद जाने पहचाने संगीतकार ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म श्री 420 का ये बहुत ही प्यारा नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

फिल्म श्री 420 का ये नगमा था आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आवाजें थी लता जी, रफी साहब और मुकेश साहब की। और अगला नगमा ऐसे ही एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से। दोस्तों कहते हैं कि पुराने फिल्मी गीतों की खासियत यही है कि वे सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि अपने अल्फाज, धुन और एहसास से सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एक बेहद दिलनशी और रूहानी गीत है फिल्म गुमराह का। साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म गुमराह अपने संजीदा कथानक और लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। इस गीत को अपनी असरदार आवाजों से सजाया है महेंद्र कपूर साहब और आशा भोसले ने। दोनों की गायकी में भावनाओं की जो नजाकत और कशिश सुनाई देती है वही इस गीत को यादगार बना देती है। गीत के अल्फाज लिखे हैं उर्दू शायरी के बेमिसाल नाम बेमिसाल शायर साहिर लुधियानवी ने। उनके लिखे बोल मोहब्बत, तड़प और इंतजार के जज्बात को बड़ी ही खूबसूरती से बयां करते हैं। वहीं इस गीत को अपनी मधुर और सदाबहार धुन से सजाया है संगीतकार रवि ने, जिनकी धुनें आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में एक खास मकाम रखती है। तो आइए सुनते हैं वही बेहद खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

महेंद्र कपूर साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में नगमा था फिल्म गुमराह से। यह फिल्म आई थी 1963 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही में आज हूँ मैं आपका हमराही फिरोज, और आप हम सब मिलकर चल रहे हैं इस बेहद खूबसूरत सफर पर। और अगला नगमा हमराही की इस महफिल में फिल्म किस्मत से। ये फिल्म आई थी 1968 में। मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में बेहद खूबसूरत अभिनय किया था विश्वजीत, बबीता, हेलेन, हरीश उदासानी, हीरालाल, टुनटुन, मुराद, एमबी शेट्टी वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है एसएच बिहारी ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है ओपी नैयर साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत नगमा कह लें या कव्वाली कह लें हम आपको सुनवाते हैं आशा जी और शमशाद बेगम की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

किस्मत फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए हमराही से इजाजत। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा ठीक 4:10 पर अरुणिमा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है।

0: आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूरे समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। आज सेवा सवेरे 4 बजे से शुरू हो गई है। यात्री लाल किला पहुंचने के लिए मेट्रो सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम को अपार जन समर्थन मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मौलिक अधिकारों, हत्याओं के लिए जवाबदेही और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 लोगों की हत्या कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पहले के प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए जवाबदेही की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की भी मांग की। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में कौशल विकास पर भारत जापान हितधारक परामर्श का आयोजन किया। इस विचार विमर्श का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कौशल विकास सहयोग को कार्यबल की आवाजाही बढ़ाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
3: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
2: President Draupadi Murmu highlighted that making the country naxal-free is a major achievement, as for decades, naxalism posed a serious challenge to the nation. She said, "Yesterday, the areas once affected by naxalism are filled with enthusiasm today."
3: For decades, naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bastar Olympics.

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 8 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और आज की ये नई सुबह बेहद खास है, और खास इसलिए क्योंकि आज हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं या मना रहे हैं। और ये दिन हमारे लिए बेहद अहम है, बेहद खास है। ये वो दिन है जब

कि उनका हक हम हमेशा यूं ही अदा करते रहेंगे, उनको याद करके, उनको नमन करके। हमारे लिए ये दिन बेहद ख़ास है, बहुत ही अहम है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बलि देकर इस देश को सींचा, इस देश को आज़ाद कराया, जहाँ पर आज हम खुली हवा में सांसें ले पा रहे हैं, खुले सपने अपने आँखों में सजाए घूम रहे हैं और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कोशिश कि बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी द्वेष के, हम अपने देश, अपने वतन, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। तो आइए उसी स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर आज के इस सफर का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ, और ये नगमा है फिल्म सिकंदर आजम से, आवाज है मोहम्मद रफी साहब और साथियों की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा, और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी का सफर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। कभी कामयाबी की धूप मिलती है तो कभी मुश्किलों की छांव। लेकिन जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता और आगे बढ़ते रहता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसी खूबसूरत पैगाम को बेहद सादगी और खुशनुमा अंदाज में पेश करता है अगला ये बेहद खूबसूरत नगमा। इस गीत को अपनी जोशीली और दिलकश आवाजों से सजाया है सदाबहार गायक किशोर कुमार साहब और सुरों के बेहतरीन फनकार मनहर उदास साहब ने। दोनों की आवाजों की वो ताकत और वो सकारात्मक एहसास एक गीत को सुनने वाले के दिल में नई उमंग भर देते हैं। इस गीत का संदेश बहुत ही सीधा और असरदार है। जिंदगी चाहे जितनी भी इम्तहान ले, अपने हौसलों की धुन कभी मत टूटने दीजिए। मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और हर नए दिन का इस्तकबाल पूरे जज्बे के साथ कीजिए, क्योंकि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी अंधेरे रास्ते को रोशन कर सकती है। तो आइए इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ आगे बढ़ते हैं, और यह नगमा है फिल्म प्रोफेसर प्यारेलाल से।

एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान न करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान न करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा में। वक्त हो चुका है ठीक हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4:29:19। महफिल सजी है अरुणिमा की, जिसमें हम उन नगमों को लेकर आते हैं आपके लिए जो आपको एक सही रास्ता दिखाता है, मोटिवेट करता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करता है आपको जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब किसी न किसी मंजिल की तलाश में भाग रहे हैं। काम, जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की दौड़ में अक्सर हम अपने लिए दो पल की फुर्सत निकालना ही भूल जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सुकून भी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। इसी खूबसूरत एहसास को बेहद नफासत से बयां करता है फिल्म मौसम का ये बेहद खूबसूरत नगमा। ये फिल्म आई थी 1975 में। ये गीत हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते के हर लम्हे को महसूस करने का नाम भी है। कभी अपनों के साथ बैठना, पुरानी यादों पर मुस्कुराना, प्रकृति के बीच कुछ पल बिताना, यही छोटी छोटी बातें हमारे दिल को असली सुकून पहुंचाती है। इस अमर गीत को अपनी रूहानी आवाजों से सजाया है लता जी और भूपेंद्र सिंह ने। गीत के भाव को बहुत ही खूबसूरत धुनों में पिरोया है संगीतकार मदन मोहन साहब की जोड़ी ने, और इस गीत को लिखा है सलील चौधरी साहब ने। तो आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं इसी बेहद खूबसूरत कलाम के साथ। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में, जहाँ पर हम बातें करते हैं जिंदगी से जुड़ी हुई और जिंदगी को बड़े ही खूबसूरत से आगे बढ़ाने की। जिंदगी हमें कई रिश्ते देती है, कुछ रिश्ते उम्र भर साथ चलते हैं तो कुछ अपनी यादों की महक छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर जरूर जाता है। सब्र, समझदारी और आगे बढ़ने का हौसला इन्हीं गहरे जज्बात को बेहद खूबसूरती से समेटता है फिल्म आंधी का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा। ये गीत सिर्फ बिछड़ने की कहानी नहीं कहता, बल्कि ये सिखाता है कि जिंदगी में हर अनुभव की अपनी अहमियत होती है, हर तजर्बे की अपनी एक अलग अहमियत होती है। कभी कभी जो हमें नहीं मिलता वही हमें और बेहतर इंसान बनाने की तालीम दे जाता है। शिकायतों में उलझने के बजाय यादों को सम्मान देना और आगे बढ़ना ही असल कामयाबी है। इस अमर गीत को अपनी रूहानी आवाजों से सजाया है किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी ने। दोनों की गायकी में ऐसा अपनापन और ऐसी नजाकत है कि हर लफ्ज सीधे दिल में उतरता है। गीत के बेमिसाल बोल लिखे गुलजार साहब ने, जिनकी शायरी रिश्तों की बारीकियों को बड़ी ही सादगी और गहराई से बयान करती है। वहीं इसकी यादगार धुन रची है संगीत के जादूगर राहुल देव बर्मन साहब ने, जिन्होंने भावनाओं को सुरों में इस तरह पिरोया कि यह गीत समय की कसौटी पर आज भी उतना ही ताजा महसूस होता है जितना पहले था। फिल्म में यह गीत संजीव कुमार साहब और सुचित्रा सेन पर फिल्माया गया है। दोनों कलाकारों की संजीदा अदाकारी इस गीत के एहसास को और भी असरदार बना देती है।

0: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में। अरुणिमा वो महफिल जहां पर जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, जिंदगी को आगे बढ़ाने की बातें हम करते हैं। और जिंदगी में हर शाम हमें एक बात सिखाती है, हर ढलता हुआ दिन अपने साथ कुछ यादें ले जाता है, लेकिन हर अगली सुबह नई उम्मीद की किरण भी लेकर आती है। यही सोच इंसान को मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना और आगे बढ़ना सिखाती है। ऐसे ही खूबसूरत एहसास को अपने सुरों में समेटे हुए ये 1971 की बहुत ही एक खूबसूरत फिल्म आनंद का ये नगमा है। ये गीत सिर्फ तन्हाई या इंतजार की दास्तान नहीं है, बल्कि ये हमें अपने भीतर झांकने, सपनों को सजोने और उम्मीद का दामन थामे रहने का पैगाम भी देता है। कभी कभी मंजिल नजर नहीं आती, लेकिन सफर पर यकीन बनाए रखना ही असल हौसला होता है। इस गीत को अपनी दर्द भरी आवाज से और भी दिल को छू लेने वाला बना दिया है मुकेश साहब ने। उनकी गायकी की सादगी और गहराई हर सुनने वाले के दिल में एक अलग ही कशिश पैदा कर देती है। तो आइए फिल्म आनंद का वही बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मुकेश साहब की आवाज़ में यह नगमा था फिल्म आनंद का, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब अगला नगमा एक बेहद खूबसूरत फिल्म से, और फिल्म है प्यासा सावन, आवाज़ है लता जी की।

फिल्म प्यासा सावन के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को दीजिए अरुणिमा से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद मैं रहूँगा आपके साथ ठीक 5:10 पर लेकर भोर सुहानी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, माय भारत के उत्कृष्ट स्वयंसेवक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी और पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े स्ट्रीट वेंडर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। उन्होंने तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास

0: दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के संबोधन को प्रेरणादायक और प्रभावशाली बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के कई राज्यों में 15 अगस्त 2026 को इंडिया डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अमेरिकी नेताओं ने भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान की भी सराहना की। सिएटल में इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फेडरल रिजर्व बिल्डिंग पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। समारोह में अमेरिकी नेताओं के साथ भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रमुख लोग भी शामिल होंगे। दिल्ली मेट्रो की विस्तारित सेवा आज सुबह 4 बजे से शुरू हो गई है। ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day yesterday, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
0: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
2: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement, as for decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said, yesterday the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm today.
0: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bostar Olympics and many artists showcased their talent in Bostar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
2: The President said that students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
0: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। और भोर सुहानी में एक नई सुबह में हम सब कदम बढ़ा रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम सब अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है। और ये सब के लिए, न सिर्फ जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बल्कि इस देश के भविष्य बच्चों के लिए भी। और चाहे देश के किसी भी नागरिक के लिए आज का दिन बहुत ही अहम है, वो इसलिए क्योंकि हम आज एक नई सुबह में कदम इस तरीके से बढ़ा रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन हमारा देश आजाद भी हुआ था। गुलामी के उस जंजीर को तोड़कर फेंक कर देश एक नई हवा में सांस लेना शुरू किया था। दोस्तों कहते हैं कि उम्र चाहे छोटी हो

और समाज के लिए ईमानदारी से अपना फर्ज निभाए। इस प्रेरणादायक गीत को अपनी सादगी भरी आवाज में गाया है शांति माथुर ने, जबकि कोरस भी उनके साथ बेहद दमदार है। ये उत्साह रंग भर देने वाला नगमा, यही वजह है कि ये गीत आज भी स्कूलों, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शान बना हुआ है। तो आइए हम भी इसी नगमे के साथ आगे बढ़ते हैं और आज के इस सफर का आगाज करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान न करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों का मैं शानदार इस्तकबाल करता हूं भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में। वक्त हो चुका है ठीक 5:20 और 15 सेकेंड और भोर सुहानी में हम बात करते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने की, जिंदगी की तमाम मुश्किलात को दरकिनार करके अपने मंजिल तक पहुँचने की और जिंदगी में कामयाब बनने की। दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ सिर्फ सूरज की रोशनी ही नहीं बल्कि नई उम्मीदें, नए ख्वाब और एक नया आगाज भी लेकर आती है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन आपको फिर से मुस्कुराने, सीखने और आगे बढ़ने का एक और मौका देता है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी कामयाबी मिलती है तो कभी इम्तिहान, कभी रास्ते आसान लगते हैं तो कभी मंजिल धुंधली दिखाई देने लगती है। लेकिन जो इंसान हर हाल में अपने कदम आगे बढ़ाता रहता है वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसी खूबसूरत सोच को बेहद सादगी और गहराई से बयां करता है फिल्म शोर का ये बेहद खूबसूरत नगमा। यह हमें याद दिलाता है कि रुक जाना जिंदगी नहीं बल्कि हर चुनौती के बाद फिर से उठ खड़े होना ही असल जिंदगी है। ठोकरें हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर नई सुबह हमें यही पैगाम देती है कि अपने हौसलों को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए। अगर आज आपके सामने कोई मुश्किल है तो उससे अपने मंजिल का रास्ता समझिए, रुकावट नहीं। हौसला, सब्र और यकीन, ये तीनों अगर आपके साथ हैं तो कोई भी सपना दूर नहीं। तो आइए हम भी इसी उम्मीद के साथ आज के सफर को और आगे बढ़ाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में।

ग्राहक जागरूक उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर अब तमाम सुनने वालों का मैं फिरोज शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल भोर सुहानी में। और भोर सुहानी में बातें हो रही हैं जिंदगी से जुड़ी हुई और जिंदगी में आने वाले उन तमाम मुश्किलात को किस तरीके से पीछे करते हुए आगे बढ़ना है उसकी। दोस्तों कहते हैं हर सुबह हमें एक नया मौका देती है अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का, दिलों में मोहब्बत जगाने का और जिंदगी को मुस्कुराहट के साथ जीने का। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो है मोहब्बत, अपनापन और इंसानियत। जब हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच, अच्छे व्यवहार और दूसरों के लिए सम्मान के साथ करते हैं तो न सिर्फ हमारा दिन बेहतर बनता है बल्कि हमारे आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। एक प्यारी सी मुस्कान, एक सच्चा सलाम और किसी की मदद का छोटा सा जज्बा भी कई दिलों को रोशन कर सकता है। इसी खूबसूरत एहसास को बड़े ही मस्ती भरे अंदाज में पेश करता है फिल्म परवरिश का ये बेहद खूबसूरत नगमा।